मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 52 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश

0: पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, एनसी सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। बस कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
5: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ,
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
6: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से लीजिए सुनिए हमारा कार्यक्रम प्रातःकालीन ईश वंदन, मन को असीम शांति अथाह ऊर्जा और पूरे दिन के लिए उत्साह और उमंग से भर देता है। तो लीजिए इस भक्ति रचना के माध्यम से करते हैं ईश वंदन। स्वर है अनुराधा पौडवाल का।

कार्यक्रम आराधना अधरों पे मुरली और उर बैजंती माल। इस मनमोहक स्वरूप में हम भजते हैं ईश्वर के उस प्रेम पूर्ण स्वरूप को जो मन को आह्लादित कर प्रसन्नता से भर देता है। मुरली की तान के संग आइए आनंद लेते हैं पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में इस भक्ति रचना का।

ईश्वर के अनेक रूप हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार हम उनके उस रूप में आसक्ति दिखाते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है।

ये आकर्षण उस स्वरूप के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण का द्योतक होता है जो एक भक्त की पुकार में समाहित होता है। किशोरी अमोनकर के स्वर में अभी आपने सुनी थी ये भक्ति रचना। और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं साधना सरगम के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: अभी आपने आनंद लिया भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सामवेद से पाठ।
1: भारतीय आर्य यज्ञ में जिन प्रिय वचनों को मधुर स्वर में गा गा कर दैवी शक्ति को संतुष्ट व प्रसन्न करते थे, वे सब सामवेद में संग्रहित हैं। इस वेद के मंत्रों के गायन में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता रहा है। कहते हैं कि इसी वेद से गांधर्व वेद का उद्भव हुआ, जिससे हमें संगीत शास्त्र की विभिन्न राग रागनियों का परिचय प्राप्त होता है। लीजिए, प्रस्तुत है इस वेद के गीतात्मक कुछ मंत्र।
2: अगस्त्यस्य यामिके द्वे द्वयोः अगस्त्यः त्रिष्टुप् सोमः सूर्यो वा

अभी आपने आनंद लिया सामवेद से कुछ छंदों का। कार्यक्रम था गौरव ग्रंथों से। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई आज सुने डॉक्टर अमित मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। बातचीत का विषय है स्टीविया की खेती कैसे करें।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे ना, उन आज जो उन बातचीत के विषय बा वो स्टीविया के बारे में है को जानकारी दे खातिर आज कार्यक्रम आए बाटन डॉक्टर अमित कुमार मौर्य जी जौन की इस सब के जानकार बाटन। डॉक्टर अमित कुमार मौर्य जी आप बताओ हमारे किसान भाई की स्टीविया जौन हो तो उकर अगर खेती करे चाहते किसान भाई तो वैज्ञानिक विधि के हिसाब से कैसे करें बताओ आप।
2: स्टीविया एक औषधीय पौधा है
1: जी,
2: मीठी तुलसी कहा जाता है।
1: अच्छा, मीठी तुलसी।
2: मीठी तुलसी होता है, विकल्प बनता जा रहा है चीनी का। और इतना नहीं, जैसे उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, इसको बैलेंस करता है, हमारे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर को, और इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल और इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टी होने के कारण।
1: अच्छा,
2: इसमें क्या है कि दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: ये तो भाई नीक बात बात है,
2: तो इनके लिए भी है। इतना ही नहीं, औषधीय गुण तो है ही है इसमें, लेकिन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसका व्यवसायिक व्यापार भी बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। और अच्छा, ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।
1: यानी अगर किसान भाई अगर खेती कर रही तो फायदा ज्यादा हो सकता
2: जी।
1: तब करे बारे में बताओ भैया कि अगर खेती करे चाहते हैं तो कैसे करें, का का तरीका अपनाएं बताओ आप।
2: ये अपने भारत देश में पूर्णतया तो मूलतया चीन, जापान, कोरिया में पाया जाता है, लेकिन अपने भारत में अभी इसकी खेती पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश किया जा रहा है प्रमुखता से।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: और इसके लिए जो जलवायु है, इसके लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है।
1: अच्छा,
2: या यूं कहें अर्ध उष्ण जलवायु की जरूरत होती है। 5 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है इसके लिए उपयुक्त माना जाता है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और इसकी खेती के लिए समुचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। और इसकी जो सबसे खास बात है, जिस तरह हम मिंट, पेपरमिंट को लगाते हैं,
1: हाँ हाँ,
2: बंड या मेढ़ों पे ही इसको हमें रोपाई करनी है।
1: मतलब डोड़ो ही बना,
2: डोड़ो ही बना के।
1: काहे
2: विदे कि अगर मेढ़ पे नहीं लगाएंगे तो बरसात के पानी हो या जल सिंचाई का पानी हो, इससे जल भरा होने से इसकी जड़ें गल सकती हैं और किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है।
1: तो भैया ये का पेड़ लगावा जाता, बेहन डाला जाता, कैसे बिया से हो था कुछ बताओ।
2: एक जड़ होते है, जड़ का नर्सरी में तैयार करते हैं।
1: दूसरा जड़ कहूं से लाई आवे
2: जी जी, जैसे अच्छा, पुदीना है और मिंट है, वैसे ही इसकी जड़ें होती हैं। और आजकल टिश्यू कल्चर का टाइम चल रहा है
1: जी जी,
2: तो किसान भाई ऐसे जगह से ले आए जहां टिश्यू कल्चर से इसको उत्पन्न किया जा रहा हो।
1: अच्छा अच्छा।
2: और अब तक की, और इसके लिए अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाना है खेत को अच्छे से, और उसका पीएच जो है 6 से 7 के बीच में होना जरूरी है।
1: खेत की तैयारी के बारे में कुछ बताओ
2: जी। पहले किस्मों के बारे में बता देते हैं।
1: हाँ,
2: इसकी करीब 90 प्रजातियां हैं जो खोजी
1: अच्छा,
2: जा चुकी हैं।
1: अच्छा,
2: लेकिन उनमें से 3 प्रजातियां हैं मुख्य जिसे प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है।
1: अपने यहाँ कौन से प्रजाति ज्यादा चलन में बांटी?
2: यहाँ पे जो है SRB 128 जो सबसे अच्छी पाई जाती है। इसमें ग्लूकोसाइड्स की मात्रा 12% होती है।
1: अच्छा,
2: जो इसका कहा जाए कि जो रासायनिक तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये साल भर में 5 कटाई की जाती है इसकी।
1: अच्छा, कटाई भी की जाती है भैया
2: जी।
1: अब पाती वही काटी जाती है
2: जी जी।
1: अच्छा,
2: अब खेत की तैयारी के बारे में, ये 5 वर्षीय पौधा है। एक बार लगाइए, 5 सालों तक इसमें आप उसका उत्पादन लेते रहे।
1: यानी काटत जाते हैं फिर हमें निकलता हुआ
2: निकलता हुआ जाता है।
1: अच्छा,
2: तो
1: अच्छा।
2: पहली बार एक बार क्या करेंगे कि जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय अच्छी गहरी जुताई और प्लस जुताई के साथ साथ 3 टन केचुआ के खाद,
1: वर्मी कंपोस्ट,
2: 6 टन कंपोस्ट खाद, उसके साथ ही साथ 120 किलोग्राम पाम जैविक खाद आता है।
1: अच्छा,
2: इनको
1: अच्छा,
2: अच्छे से मिला लेना चाहिए। लेकिन किसान भाई

0: चीज़ और ध्यान रखें कि अगर उनमें खेत में दीमक का प्रकोप ज़्यादा है तो
1: अच्छा अच्छा
0: दीमक के लिए बचने के लिए 150 से 2 किलोग्राम खली को पीस करके मिला देने
1: नीमी
0: से
1: खली
0: नीम की खली,
1: अच्छा अच्छा
0: तो उससे क्या है कि दीमक से बच सकते हैं,
1: यानी दीमक ना लगे,
0: दीमक ना लगे। अच्छे से तैयारी करने के बाद जो मेढ़ बनाएं, करीब 1 से 1.5 फीट ऊंचा मेढ़ बंडा जो बनाएं और उसकी जो चौड़ाई हो करीब 2 फीट हो,
1: अच्छा मेढ़ के
0: मेढ़ की
1: जोने पे लगावे की
0: लगावे की जोने से दोनों साइड में
1: फैले फैले,
0: हाँ फैल नहीं दोनों तरफ पौधा लगाना है
1: अच्छा।
0: जिससे वो अच्छे से फैल सके। अब आता है इसमें रोपाई की बात, तो जैसा कि हमने बताया है कि बंडों पे मेढ़ों पे इसकी रोपाई करनी है, तो इससे पौध से पौध की दूरी 6 से 9 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी।
1: अच्छा अच्छा
0: करीब 1 एकड़ में 30 से 40 हज़ार पौधे लगाए जाते हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: किसान भाई ये चीज ध्यान रखें, जब बहुत गर्मी होती है अप्रैल और मई का महीना तब इसकी रोपाई नहीं करते, या जब बहुत सर्दी होती है दिसंबर और जनवरी का महीना, उसको छोड़ करके बाकी पूरे वर्ष इसका रोपाई की जाए,
1: यानी बहुत गर्मी बहुत ठंडी छोड़ के बाकी बीच में
0: कभी लगाएं जैसे सितंबर से नवंबर का महीना तथा फरवरी से अप्रैल का महीना सबसे अच्छा माना जाता है।
1: अच्छा,
0: और इसमें अब सिंचाई की बात आती है, तो सिंचाई पूरे वर्ष भर की जाती है फसल को, और ध्यान रखना चाहिए कि इसमें जो प्रचलित है, हालांकि स्प्रिंकलर से पुराने जमाने से लेकर के अभी जब से प्रचलन में आया किया जाता है, लेकिन ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा होता है। अगर ड्रिप इरिगेशन करें
1: तो टपक विधि जो है,
0: हाँ टपक सिंचाई से।
1: अच्छा अच्छा,
0: और साथ ही साथ निराई गुड़ाई जहाँ तक की बात है, इसमें किसी भी प्रकार का मशीनरी नहीं यूज करना है।
1: अच्छा,
0: साधारण विधि से खरपतवार नियंत्रण करना है हाथों से, और उसके बाद में किसी भी प्रकार का रासायनिक उपयोग नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: अब खाद और उर्वरक की बात है, तो इसमें जो खाद शुरुआत में डाली जाती है उतनी डाली जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे कि जितनी बार कटाई करेंगे हर फसल के बाद,
1: कितना दिन बाद कटाई करें पड़त हो,
0: जो पहली कटाई है रोपाई के 4 महीने बाद की जाती है।
1: अच्छा,
0: लेकिन
1: अच्छा।
0: सबसे जो खास बात है वो यहीं पर है कि 4 महीने बाद कटाई होती है, लेकिन वो भी फूल आने से पहले करना है।
1: अच्छा,
0: अगर फूल आ गया तो हमारा जो गुणवत्ता है पत्तियों का वो कम हो जाएगा, और जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो भी कम हो जाएगा,
1: मिठास कम हो जाएगी
0: बिकने में अच्छा पैसा नहीं
1: तो
0: मिलेगा।
1: पाती बिक जाता है, कुछ बनावट
0: नहीं, पड़ता। पाती ही बिकता है, किसान भाई डायरेक्ट पाती बेचते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: और एक साल में करीब 5 कटाई की जाती है, प्रथम कटाई 4 महीने के उपरांत
1: जी,
0: और प्रथम कटाई के बाद 500 किलोग्राम केचुआ का खाद, 30-30 किलोग्राम पाम जैविक और कंपोस्ट खाद दोनों को मिलाना होता है।
1: अच्छा,
0: जिससे
1: अच्छा।
0: कि उसकी जो शक्ति है उर्वरा शक्ति बनी रहे और अच्छा हमारा क्रॉप मिले।
1: अच्छा अच्छा, कौनो रोग व्याधि भी लागत भैया?
0: नहीं, इसमें रोग व्याधि बहुत कम आती हैं। अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें रोग व्याधि की जरूरत बहुत ही कम आने की चांसेस होते हैं।
1: अच्छा अच्छा, और भैया कौन बात पे विशेष ध्यान?
0: अब विशेष ध्यान ये है कि पत्तियों को तोड़िए, तोड़ करके 3 से 4 दिन तक छाये में सुखाना है।
1: अच्छा,
0: जब पूर्णतया इसका नमी रहित हो जाए तो बोरों में भर के बिक्री के लिए ले जा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन दूसरा इसमें एक और भी है कि जो किसान भाई बहुत जागरूक हैं, जिनके पास संसाधन है, तो इसका पाउडर बना करके,
1: अच्छा अच्छा,
0: पाउडर के रूप में, दूसरा है इसका एक्सट्रैक्ट बना करके, मतलब इसको उसका वो निकाल करके,
1: मैंने उसमें जो रस निकाल के मशीन हो चाहिए।
0: और ज्यादातर जो सबसे ज्यादा किसान भाई हमारे सूखी पत्ती ही बेचते हैं।
1: हाँ, आसान रहा था
0: वो, आसान है। और उपज तक की, जो उपज की बात है, ये जैसा कि हमने पहले बताया कि ये बहुवर्षीय फसल है, एक बार अब लगाइए 5 सालों तक इसकी कटाई करते रहते हैं।
1: कितना हमें लागत लाभ हो जाता है कुछ के बारे में?
0: देखिए, लागत इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। अब आप बहुवर्षीय है, जो भी लागत है आपके एक बार लगेगा पौधे के।
1: अच्छा।
0: और जो आपका खाद है, केचुआ का खाद है, रासायनिक खाद का प्रयोग करना नहीं है बिल्कुल, तो पूरा ये जैविक तरीके से ही इसका खेती की जाती है। अब इसमें अगर अच्छे समय पर इसकी कटाई की जाए, अच्छी किस्म लगाई जाए और समय समय पर इसका रख रखाव ठीक से किया जाए, तो करीब 2 से लेकर 4 टन सूखी पत्ती प्राप्त होती है।
1: बढ़ के 4 बीघा हम भैया
0: एक साल में।
1: अच्छा,
0: एक हेक्टेयर में।
1: अच्छा अच्छा,
0: और उसके बाद में क्या है कि एक अगर औसतन देखा जाए, तो औसतन यह है कि करीब 2.5 से 3 क्विंटल जो

0: पत्ता है, 2.5 से 3 टन जो पत्ता है वो प्राप्त होता है एवरेज हर साल।
1: अच्छा, तो ये पत्ता बेच के भैया लाभ ले सकते
0: हैं। लाभ ले सकते हैं
1: भैया। डॉक्टर अमित कुमार जी, आप आयन और स्टीबिया के वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे किसान भाई करिए, आपका जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।

कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर अमित मौर्य से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। बातचीत का विषय था स्टीविया की खेती कैसे करें।

0: प्रसिद्ध कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं बच्चों में वायरल फीवर और होम्योपैथी, इस विषय पर डॉक्टर रंजीत कुमार की वार्ता।
1: बच्चों में वायरल बुखार, जब शरीर का तापमान सामान्य औसतन तापमान अर्थात 98.6 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है तो इस स्थिति को बुखार या ज्वर कहते हैं, जो किसी संक्रमण या बीमारी से लड़ने के लिए शरीर की सामान्य प्रक्रिया होती है। बच्चों में बुखार कई कारणों से हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख है संक्रमण, जो विभिन्न वायरस या जीवाणुओं के संक्रमण से होता है, जिसमें खास करके राइनो वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, एंटेरो वायरस और कोरोना वायरस प्रमुख हैं। दूसरा है मौसम में परिवर्तन, जिसमें वातावरण का तापमान अचानक गर्म से ठंडा या ठंडा से गर्म हो जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बच्चों में बुखार के लक्षण देखे जा सकते हैं। तीसरा है संचरण माध्यम, जिसमें वायरल बुखार से ग्रसित व्यक्तियों के संपर्क में आने से संक्रमण हो जाता है। इसमें मरीज के मुख, नाक या आँखों से होने वाले स्राव से संक्रमण फैलता है। बुखार के लक्षण में बच्चों में वायरल बुखार होने की स्थिति में शरीर का तापमान बढ़ जाना, ठंड लगना, थकान और पूरे शरीर में दर्द होना, तापमान हल्का, मध्यम या बहुत ज़्यादा रुक रुक कर या लगातार होना, पेशाब गाढ़ा होना, बच्चों के जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होना, त्वचा पर लाल चकते, चेहरे में सूजन, गर्दन क्षेत्र में सूजन, सिरदर्द और निर्जलीकरण की समस्या देखी जा सकती है। बच्चों में अधिक चिड़चिड़ापन या बिल्कुल शांत रहना, खाने और खेलने की इच्छा ना होना, सुस्त रहना, ज़्यादा रोना, उल्टी, दस्त और कमजोरी होना, खाने और सोने की आदत में बदलाव हो जाना, नाक बहना, आँखों से पानी आना, छींक और खांसी, गले में खराश, गला लाल और सूखा होना इत्यादि कई लक्षण देखे जा सकते हैं। देखभाल हेतु ध्यान देने योग्य बातें जो बच्चों के माता पिता को विशेष रूप से सजग रहना चाहिए, जिसमें बच्चों को शांत माहौल में रखें, तरल पदार्थ का सेवन जैसे सूप, पानी और फलों का रस जो विटामिन सी युक्त हो, नारियल पानी इत्यादि देना चाहिए। भोजन में सुपाच्य और हल्का भोजन दें, जैसे दलिया और खिचड़ी। दो दिन से ज़्यादा

0: बुखार होने पर, हाथ पैर ठंडा रहने पर, सामान्य असामान्य कंपकपी होने पर, शरीर पर दाने दिखाई देने पर, उल्टी और पेट दर्द की समस्या होने पर, खूनी या काला मल होने पर, अचानक चौंकने या घबरा जाने पर तुरंत किसी योग चिकित्सक से संपर्क कर सलाह लेना चाहिए। घर के आसपास वातावरण साफ और कमरे को हवादार रखना चाहिए। संक्रमण दोबारा ना हो इसके लिए बच्चों को स्वच्छता की आदत दिलवाना चाहिए। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ साफ पानी से धुलवाना चाहिए। मुंह में खिलौना डालने से रोकना, भीड़भाड़ वाले जगह स्थान से दूर रखना इत्यादि शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण है, उचित टीकाकरण करवाना चाहिए। बच्चों में वायरल फीवर की स्थिति में कुछ कारगर होम्योपैथिक औषधि बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, जिसमें पहली दवा है एकोनेटम नेप्लस। यह सबसे पहली दवा है जो किसी भी प्रकार के शारीरिक तापमान में वृद्धि होने पर तुरंत लेना चाहिए। इसमें बुखार की शुरुआत अचानक हो जाती है, साथ ही गले में दर्द, ठंड लगना, अत्यधिक प्यास लगना, बेचैनी आना, शरीर की त्वचा गर्म और शुष्क होना इत्यादि शामिल है। दूसरी कारगर औषधि है बेलाडोना। अगर बच्चों का चेहरा लाल हो, बुखार के साथ ठंड लगे, गले में दर्द, सिर में दर्द हो, मुंह सूखा, मल सख्त और पेशाब कम आए, इस स्थिति में बेलाडोना का सेवन करने से बच्चों को काफी लाभ मिलता है।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजीत कुमार की वार्ता, बच्चों में वायरल फीवर और होम्योपैथी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं आपको याद दिला दें, दिन में 11 बजे से आप सुन सकेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रेडियो प्रसारण मन की बात। रात 10 बजे सुनिएगा रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन और दोपहर 12:15 पर गीता बनर्जी का ख्याल गायन होगा। कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज सुनेगा रोज की ही तरह सुबह 8:45 पर। प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9 बजे, 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर, शाम 7:30 पर और रात 8:15 पर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर अंजू मुखर्जी से गजल और शाम 7:45 पर मुक्ति शर्मा से गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमात्री में सुबह 10:05 पर कलाकार होंगे रंजीत कुमार और आकांक्षा भारती और दोपहर 2:30 पर कलाकार होंगे शंकर लाल पाल और सरोज सिन्हा। दोपहर 1:15 अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपनी पसंद के फिल्मी गानों का आनंद लीजिएगा। कार्यक्रम होगा हेलो अनुरोध, प्रस्तुति मधु कुमार की।

शाम 5 बजे बाल गोपाल कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के बच्चे सुनेंगे डॉक्टर मेघना वशिष्ठ की वार्ता, जाने अपने शहर की धरोहरों के बारे में।

युवा साथी युवाणी कार्यक्रम में सुनेंगे विश्व पर्यटन दिवस पर क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी डॉक्टर अपराजिता सिंह से की गई बातचीत। कार्यक्रम का समय शाम 5:15। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे रामकृपाल यादव और साथियों से लोकगीत, साथ ही लोकभाषा कविता पाठ का भी आनंद उठाइएगा।

श्रोता अपने पत्रों के उत्तर सुनेंगे कार्यक्रम चिट्ठी आई है में रात 8 बजे। कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता से वंदना राठौर ने बातचीत की है। रात 8:30 पर कार्यक्रम आज इतवार है में सुनिएगा दिनेश भारती की लिखी झलकी संडे की सैर। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा होगा रात 9:30 पर। ये थी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आइए अब आनंद लेते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का।

पूरी अयोध्या नगरी में हर्षोल्लास छाया है। माता के आग्रह पर जगत के स्वामी ने बाल रूप के रुदन से जननी की शंकाएं दूर कर दी हैं। शिशु के रोने की अत्यंत प्रिय ध्वनि सुनकर अन्य रानियां तथा दास दासियां हर्षित हो दौड़ पड़ी। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर महाराज दशरथ को परम आनंद हुआ। राजप्रसाद वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि से गूंजने लगे। जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को सोना, गऊएं, मणिमाणिक आदि दान स्वरूप भेंट किए गए। जगह जगह तोरण द्वार आदि बने हैं। आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। स्त्रियां सोने के कलश तथा थाल में मंगल द्रव्य लेकर राजमहल में प्रवेश कर रही हैं। घर घर बधावे बज रहे हैं। कैकेयी तथा सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया है। पूरी नगरी इस प्रकार सजी धजी है जैसे सारे श्रृंगार करके रात्रि स्वामी से मिलने आई हो, किंतु सूर्य का प्रकाश देखकर लजा गई हो। राजमहल वेद पाठ की कोमल ध्वनि से गूंज रहा है।

सविता देवी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम फिल्मों से भजन, और ये पहला फिल्मी भजन हमने लिया है अमर प्रेम से। लता मंगेशकर का स्वर है, आनंद बख्शी की शब्द रचना, आर डी बर्मन का संगीत।

कार्यक्रम फिल्मों से भजन। अभी आपने सुना था अमर प्रेम फिल्म से भजन, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं सुबह फिल्म से ये भजन लता मंगेशकर के स्वर में। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है। सुधीर फड़के का संगीत है।

0: सुबह फिल्म गेज भजन के साथ ही फिल्मों से भजन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से।
1: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ विनोद कुमार सिंह। प्रदेश में तेज हवा के साथ भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में नदियां उफान पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस सुबह आकाशवाणी पर मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार, दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा यह कार्यक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज रविवार को भी खुले रहेंगे। कल से प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने की घोषणा। और एशियाई खेलों के 8वें दिन तक भारत ने जीते 2 स्वर्ण पदक। कबड्डी में पुरुष और महिला टीमों को मिली स्वर्णिम सफलता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिलों में गुरुवार से तेज हवा के साथ जारी भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रदेश के 63 जनपदों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। कल शाम अचानक हुई अतिवृष्टि से गोरखपुर सहित कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है। गोरखपुर में शाम 4:15 से 6 के बीच रिकॉर्ड 150 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश और तेज दबाव से हुई घटनाओं में कई जिलों में जनहानि की भी खबर है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद के अनुसार 2 दिनों की अतिवृष्टि एवं आंधी तूफान के कारण प्रदेश में 15 जनहानि, 4 पशुहानि तथा 117 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई है।
2: राहत आयुक्त ने बताया कि फरुखाबाद में सामान्य से 200 गुना, अर्थनगर में 160 गुना तथा कन्नौज, कानपुर देहात और हरदोई में 130 गुना अधिक वर्षा दर्ज की गई है। राहत आयुक्त ने बताया कि नेपाल में हो रही भारी वर्षा के दृष्टिगत सीमावर्ती जनपदों, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपदों में नदियों के जलस्तर के बढ़ने की आशंका को देखते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने अपील की है कि नागरिक अत्यंत आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले। प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए राहत हेल्पलाइन 1-0-7-0 पर संपर्क कर सूचना दें। समाचार कक्ष से राजेंद्र पाठक।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने और क्षेत्र में डटे रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनहानि और पशुहानि पर तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, साथ ही फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को यथाशीघ्र क्षतिपूर्ति वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी यूपी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कल से बारिश की तीव्रता थमने की संभावना है।
3: 22 सितंबर को ऑरेंज चढ़ने के साथ साथ प्रदेश के दक्षिणी और मध्यवर्ती इलाकों में वर्षा में प्रभावी तौर पर कमी आने, परंतु तराई इलाकों में 27 सितंबर को भी भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। तदुपरांत 28 सितंबर से इसकी तीव्रता समाप्त हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश

0: जारी भारी से भारी वर्षा का दौर कम जाने की संभावना है तथा बारिश जो है 28 सितंबर से प्रदेश के तराई इलाकों में 6 फुट वर्षा तक सीमित हो जाने की संभावना है।
1: प्रदेश के साथ ही नेपाल में भारी बारिश के चलते कुछ जिलों में नदियों के जलस्तर में वृद्धि गई। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रामघाट की दुकानें खाली करा ली गई है। नेपाल की पहाड़ियों में वर्षा होने और वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में गंडक नदी उफान पर आ गई है। लगातार बारिश के चलते कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। पीलीभीत में गन्ना धान और सब्जियों की फसलें क्षतिग्रस्त हो गई। एक रिपोर्ट।
2: भारी वर्षा से जलभराव हुआ है और तेज हवाएं चलने से फसलें खेतों में गिर गई हैं। इससे धान गन्ना व सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। पारदा और देवहार नदियों में बैराजों से काफी अधिक पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने को कहा है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।

0: गई हैं। इससे धान गन्ना व सब्जियों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। पारदा और देवहार नदियों में बैराजों से काफी अधिक पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बाढ़ चौकियों को सक्रिय करते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रभावित क्षेत्रों में कैंप करने को कहा है। सतीश मिश्र, आकाशवाणी समाचार, पीलीभीत।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर एक रिपोर्ट।
2: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम स्वनिधि के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए तय किस्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है।
3: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ।
2: जौनपुर के प्रभारी नीरज गुप्ता ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना से मिले ऋण ने उन्हें अपना कारोबार शुरू करने का अवसर दिया और आज उनका परिवार बेहतर तरीके से जीवन यापन कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चलाई गई स्वनिधि योजना है, एक छोटे मोटे रेडी पटरी वालों के लिए स्वनिधि एक पोस्टर काम करता है और ये उनके बिजनेस को बढ़ाने का काम किया। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रेडी पटरी वालों के लिए ऐसी योजनाओं को उन्होंने लाया जिससे गरीब लोगों का विकास हो सके।
2: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ यह कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। राहुल यादव, आकाशवाणी समाचार, जौनपुर।
1: सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। अवैध निर्माण से जुड़े पुराने निर्देशों का पालन न होने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में भी अवैध निर्माण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे दिन यूपी जर्नी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स लीडर टू AI एंड सेमीकंडक्टर पावर हाउस सत्र को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाना है। जापान एशियाई खेलों के 8वें दिन कल भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तेज हवा के साथ भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। कई जिलों में नदियां उफान पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, राहत कार्यों में लापरवाही

आश्वासन नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह आकाशवाणी पर मन की बात में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा ये कार्यक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज रविवार को भी खुले रहेंगे। कल से प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने की घोषणा। और एशियाई खेलों के आठवें दिन कल भारत ने जीते 2 स्वर्ण पदक। कबड्डी में पुरुष और महिला टीमों को मिली स्वर्णिम सफलता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार हफ्ते थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुनने जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन राग है भटियार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पूरन कुमार मिश्र। तो लीजिए सुनिए पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का राग भटियार में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित विद्याधर प्रसाद मिश्र का ख्याल गायन, राग था भटियार, और आपके साथ तबले पर संगत की थी पूरन कुमार मिश्र ने। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी में तैयार वाद्य वृंद रचना।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु देश के प्रमुख सुख

0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME हैं। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
3: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
5: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2,50,00,000 से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण

0: आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
2: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्टबोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
0: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है, पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई व तजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नज़र चार धाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3-1 रोजा बैन अलाक्वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने सभी फरीकी मुल्कों से जोर देकर कहा है कि वो जारी तनाजात के दरमियान तहमुल से काम लें, कशीदगी कम करने, शहरियों की हिफाजत और तिजारत और तवानाई की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाएं। कल रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि जंगों के असरात सिर्फ बराह रास्त शामिल मुल्कों तक ही महदूद नहीं रहते बल्कि उनकी सरहदों से बहुत दूर तक दीगर ममालिक के शहरियों को भी भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कशीदगी और तनाजात आलमी सलामती को गैर मुस्तहकम करते हैं, तरक्की की रफ्तार को सुस्त करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत सूरतेहाल को बेहतर बनाने के लिए खासतौर पर खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी के शोबों में सभी हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने के अपने हक का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि सरहद पार से हुकूमत की पुश्तपनाही में की जाने वाली दहशतगर्दी आलमी निज़ाम के लिए बराह रास्त चैलेंज है। वजीर खारजा ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हुकूमतों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और दहशतगर्दी की माली एयानत को बेनकाब करके उसका मौसर मुकाबला किया जाना चाहिए।
1: That this could be state-sponsored with cross-border purpose makes it a direct affront to the global order. Governments indulging in such practices must be held accountable. There must be no dilution in our zero-tolerance approach towards terrorism. Its financial aspects, in particular, should be exposed and should be countered.
0: रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत दिए जाने के भारत के मुतालबे की भरपूर हिमायत की है। कल रात न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए जनाब लावरोफ ने कहा कि रूस एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमरीका की नुमाइंदगी को वसी करने के हक में है। उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राज़ील की मुस्तकिल रुकनियत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है। उन्होंने आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के लिए अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मजीद नशिस्तें मुख्तस करने की वकालत की और भारत और ब्राज़ील की भरपूर हिमायत का इजहार किया। जनाब लावरोफ ने कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के तहत मगरबी ममालिक के लिए मजीद नशिस्तें मुख्तस नहीं की जानी चाहिए, खसूसन जर्मनी और जापान के लिए, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो अब अस्करियत पसंदी और माजी की ताकत व हैसियत की बहाली की कोशिशों की राह पर गामजन हैं। अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल UNSC के कुल 15 अरकान हैं। इनमें 5 मुस्तकिल अरकान शामिल हैं जिन्हें वीटो का इख्तियार हासिल है। ये 5 ममालिक चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमरीका हैं। इसके अलावा 10 गैर मुस्तकिल अरकान होते हैं जिन्हें 2 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब किया जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, TT न्यूज़, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। सरकारी सेक्टर के तमाम

0: खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: आज पूरी दुनिया में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे की सकाफत को जानने और इक्तिसादी तरक्की को तकवियत फराहम करने में सियाहत के नुमाया रोल को उजागर करता है। इस साल का मौजू है सियाहत को असर नौ वजा करने के लिए डिजिटल एजेंडा और मसनू जहानत। ये मौजू सियाहत के मुस्तकबिल का तयन करने में टेक्नोलॉजी के रोल को नुमाया करता है। आकाशवाणी खबरों के शोबे से बात करते हुए सियाहत के सेक्रेटरी भुवनेश कुमार ने कहा कि सियाहत का शोबा इक्तिसादी फरोग और रोजगार के मौके पैदा करने में नुमाया अहमियत का हामिल है। हमारे नामानिगार के मुताबिक स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद क्रूज सियाहत और सियाहत से वाबस्ता हुनरमंदी की तरक्की जैसे इकदाम से सियाहती मकामात को वसत हासिल हो रही है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भारत के सियाहत के शोबे का इक्तिसादी तरक्की रोजगार और जरिए माश के तौर पर मुल्क की GDP में 5% का हिस्सा है। घरेलू सियाहती दौरे 2025 में 428 करोड़ से ज्यादा रहे, जबकि गैर मुल्की सियाहती दौरों की तादाद 2.5 करोड़ रही। मरकजी हुकूमत के जरिए तकरीबात के हिस्से के तौर पर आज नई दिल्ली में सियाहत के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत मुल्क के सियाहत के इको निज़ाम और मरबूत सियाहती तरक्की की पायदार से मुतालिक अहम इकदाम पेश करेंगे। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
0: तमिलनाडु में बहुत छोटी छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतें MSMEs मुल्क के बड़े MSME इको निज़ाम में से एक हैं। रियासत में एक ऐसा वाहिद पोर्टल मौजूद है जिसके जरिए कारोबारी इदारे मुख्तलिफ महकमों से ज़रूरी मंजूरी का अमल एक ही जगह से मुकम्मल कर सकते हैं। रियासत में MSMEs की तरक्की के लिए एक अलग वजारत महकमा भी मौजूद है जिसका मकसद छोटे और दरमियाने कारोबार को बाख्तियार बनाना है। MSME का सेक्टर मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार GDP में तकरीबन 31% का ताउन करता है और यह ज़राअत के बाद रोज़गार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है। कोयम्बटूर में 80,000 से ज़्यादा सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड MSMEs और उद्योग आधार यूनिट्स मौजूद हैं। तमिलनाडु में मजमूई तौर पर 7,59,847 रजिस्टर्ड बहुत छोटी सनअतें, 1,01,861 छोटी सनअतें हैं। जुआई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान एक रोजा बैन अलाक्वामी 3 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। शुभम गिल इस ODI सीरीज में भारतीय टीम के कप्तान हैं, जबकि शाई होप वेस्टइंडीज टीम की कप्तानी कर रहे हैं। आईची नागोया में जारी एशियाई खेलों में आज भारत की मर्दों और खवातीन पर मुश्तमिल तीरंदाजी की टीम अपने अपने जुमरों के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने भारत खलीजी कौंसिल तजारती इजलास से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इजलास में तजारत और तवानाई में बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर जोर, वज़रा की मीटिंग में सरमायाकारी सिक्योरिटी और अवामी राबतों को मजबूत करने पर तबादला ख्याल। रोजनामा प्रताप ने BJP के कौमी सदर नितिन नवीन के मगरबी बंगाल दौरे की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी बनाई है, नितिन नवीन दो रोज़ा दौरे पर आज कोलकाता पहुंचेंगे और आला सतही तंजीमी जायजा मीटिंग करेंगे। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर ईरानी सदर के अक़्वामे मुत्तहिदा इजलास में शिरकत की खबर को शह सुर्खी बनाया है।
1: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर खारजा एस जयशंकर ने जंग में शामिल तमाम मुल्कों पर जोर दिया है कि वो जारी तनाजात के दौरान कशीदगी कम करें और तवानाई तजारती रास्ते को खुला रखें। रूस ने अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के दावे की भरपूर हिमायत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सरकारी सेक्टर के तमाम बैंक और इलाकाई देही बैंक आज ग्राहकों की सहूलत के लिए खुले रहेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के हालात के पेश नज़र आज चार धाम यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। और इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं को याद दिला दें, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। बस थोड़ी देर में आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। नमस्कार प्रयागराज श्रोताओं, कभी किसी शहर की पहचान उसकी इमारतों से होती है, कभी उसकी गलियों से, कभी उसके इतिहास से, और कभी किसी ऐसी नदी से जिसके किनारे सदियों से सभ्यताएं सांस लेती आई हों।

और फिर घर की उस दुनिया को याद कीजिए जहां एक बेटी को हंसी से आंगन खिल खिलाते देखा है, जहां उसके सपने परिवार की आंखों में भी चमकने लगते हैं। श्रोताओं, आज है 27 सितंबर 2026, एक ऐसी तारीख जिस पर तीन अलग अलग अवसर हमें तीन बेहद खूबसूरत संदेश देते हैं। दुनिया को जानने का संदेश, विश्व पर्यटन दिवस, बेटियों को सम्मान और अवसर देने का संदेश यानी डॉटर्स डे, और जीवनदायिनी नदियों के संरक्षण का संदेश यानी विश्व नदी दिवस। तीनों को ध्यान में रखते हुए अगर हम सोचें तो एक अद्भुत सूत्र दिखाई देता है। यात्रा हमें दुनिया से जोड़ती है, बेटियां हमें रिश्तों से जोड़ती हैं, और नदियां हमें प्रकृति तथा जीवन से जोड़ती हैं। तो आइए आकाशवाणी के अपने कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में मैं मोना पांडे आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी यात्रा पर जहाँ इतिहास है, भावनाएं हैं और संस्कृति भी है, और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संदेश भी। आज का ये कार्यक्रम केवल जानकारी नहीं है श्रोताओं, एक विचार यात्रा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस यात्रा से जो हमें अपने घर से दूर ले जाकर दुनिया के थोड़ा और करीब पहुंचा देती है।

जी श्रोता, हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इसकी पहली आधिकारिक शुरुआत 1980 में हुई और 27 सितंबर की तारीख 1970 में UNWTO के स्टैट्यूट्स को अपनाए जाने की 10वीं वर्षगांठ से जुड़ी थी। पर्यटन केवल छुट्टियां बिताने या नई जगह की तस्वीर लेने का नाम नहीं है श्रोताओं, ये अर्थव्यवस्था, रोजगार, संस्कृति, स्थानीय समुदायों और प्रकृति से जुड़ा एक बड़ा क्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पर्यटन दुनिया के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों में से है और लगभग हर 10 में से एक व्यक्ति के रोजगार से इसका सीधा संबंध है। 2026 का विश्व पर्यटन दिवस विशेष रूप से आधुनिक तकनीक की और हमारा ध्यान खींचता है और इस वर्ष का जो विषय है, जो थीम है, वो भी आपको बताने श्रोताओं, वो है डिजिटल एजेंडा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रीडिजाइन टूरिज्म। अर्थात डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से पर्यटन को एक नए रूप में देखना।

श्रोताओं, आज हम एआई और डिजिटल साधनों की मदद से यात्रा की योजना बना सकते हैं, रास्ते खोज सकते हैं, भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं और किसी स्थान के बारे में पल भर में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन तकनीक के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सभी की, साथ ही पर्यावरण की रक्षा और स्थानीय लोगों तथा छोटे व्यवसायों को सहयोग देना भी पर्यटन का एक अभिन्न हिस्सा है। और हम अगर अपने शहर यानी प्रयागराज की बात करें तो संगम, गंगा, यमुना, माघ मेला और कुंभ की परंपरा, आनंद भवन, खुसरू बाग और अपनी समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत के कारण एक बहुत ही जीवंत पर्यटन अनुभव है। कहा जाता है यात्राएं हमें केवल नई जगह पर नहीं लेके जाती बल्कि हमें एक नया दृष्टिकोण देती हैं। इसलिए इस पर्यटन दिवस पर हम संकल्प लें कि हम जहां भी जाएंगे वहां की संस्कृति और प्रकृति का सम्मान करें और पीछे केवल अच्छी यादें छोड़कर आएं।

और श्रोताओं, आइए अब हम अपने यात्रा से लौटते हैं और घर के आंगन में आते हैं, जहां एक बेटी की हंसी पूरे घर को रोशन कर देती है। सितंबर के चौथे रविवार को कई स्थानों पर डॉटर्स डे मनाया जाता है और 2026 में ये 27 सितंबर को पड़ रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो नहीं है, बल्कि बेटियों को समर्पित एक लोकप्रिय सामाजिक अवसर है श्रोताओं। और इस दिवस को मनाने का एक संदेश है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेटी को केवल प्यार नहीं, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा, आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर चाहिए। उसे ये कहना पर्याप्त नहीं कि तुम आगे बढ़ो, हमें उसके आगे बढ़ने के रास्ते में विश्वास और सहयोग भी देना होगा। आज बेटियां विज्ञान, खेल, सेना, प्रशासन, कला, साहित्य, चिकित्सा और तकनीक, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। और संस्कृत का प्रसिद्ध सुभाषित भी तो है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ शुभता का वास होता है। तो आज डॉटर्स डे पर केवल उपहार ही क्यों, अपनी बेटी से एक बार पूछिए, तुम क्या बनना चाहती हो, तुम्हारे सपने क्या हैं? क्योंकि शायद बेटी के लिए सबसे बड़ा उपहार कोई वस्तु नहीं होता, बल्कि ये विश्वास होगा कि तुम्हारे सपने

और श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको कार्यक्रम के शुरुआत में ही बताया था कि आज हम नदी दिवस भी मना रहे हैं, तो अब हमारी यात्रा पहुंचती है उस धारा तक जो मानव सभ्यता की प्राचीन साथी रही है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नदी की। सितंबर के चौथे रविवार को वर्ल्ड रिवर्स डे मनाया जाता है और वर्ष 2026 में ये 27 सितंबर को है। इसका उद्देश्य नदियों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी है। इसका वैश्विक आयोजन 2005 में विकसित हुआ था श्रोताओं, और नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं है, वे कृषि, जैव विविधता, पेयजल, आजीविका और सभ्यताओं से जुड़ी जीवन धाराएं हैं। लेकिन प्रदूषण, कचरा, जल का अत्यधिक दोहन और बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियां अनेक नदी तंत्रों के सामने चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। आज हमारे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती हो गई है कि कैसे हम नदियों का पानी स्वच्छ रखें। तो हमारी थोड़ी सी सावधानी श्रोताओं इस समस्या से हमें निजात दिला सकती है। और प्रयागराज की बात हो तो गंगा और यमुना का स्मरण स्वाभाविक है। संगम की धरती हमें एक सुंदर संदेश देती है, अलग अलग धाराएँ मिलकर भी एक बड़ी शक्तिशाली धारा बन सकती हैं। इसलिए नदी दिवस पर केवल नदी को नमन करना ही पर्याप्त नहीं है श्रोताओं, उसके प्रति जिम्मेदारी भी आवश्यक है। जल बचाना, कचरा नदी में ना डालना, प्लास्टिक कम करना और दूसरों को भी जागरूक करना, ये छोटे छोटे कदम बहुत मायने रखते हैं। याद रखिए श्रोताओं, नदी में केवल पानी नहीं बहता, उसमें जीवन बहता है।

तीन दिवस तीन संदेश। तो श्रोताओं, आज के तीनों दिवस हमें तीन सरल गहरे संदेश देते हैं, जानना चाहेंगे? तो लीजिए सुनिए। विश्व पर्यटन दिवस, दुनिया को देखिए, समझिए और जिम्मेदारी से यात्रा कीजिए। डॉटर्स डे यानी बेटियों को प्रेम के साथ समान अवसर और सम्मान दीजिए। विश्व नदी दिवस, नदियों को केवल प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल ना समझें, जीवन की धारा समझिए। और इन तीनों संदेशों को एक सूत्र में बांधे तो शायद बात इतनी सी है। यात्रा ऐसी हो जो संस्कृति बचाए, परवरिश ऐसी हो जो सपने बचाए, और विकास ऐसा हो जो नदियां बचाए। कभी कभी किसी विशेष दिवस को मनाने के लिए श्रोताओं बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं होती। एक जिम्मेदार यात्री बनना, एक बेटी के सपने पर विश्वास करना और नदी को गंदा होने से रोकने की एक छोटी सी कोशिश करना, यही किसी दिवस को सार्थक बनाता है।

सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। जी हाँ श्रोताओं, गाने जानकारियाँ इन सब के सफ़र पर हम आज थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज में। और हमेशा ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कोशिश करते हैं कि आप विविध रंगों में रंगें, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आज जब 27 सितंबर की शाम ढली होता हूँ तो हम अपने साथ 3 संकल्प लेकर जागे। दुनिया को जानेंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे और नदियों को बचाएंगे, क्योंकि यात्राएं हमें दुनिया से जोड़ती हैं, बेटियां हमें भविष्य से जोड़ती हैं और नदियां हमें जीवन से जोड़ती हैं। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं मोना पांडे आपसे लेती हूँ विदा। आप सुन रहे थे आकाशवाणी का अपना कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी और नए विचारों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखिए, सीखते रहिए, बेटियों पर विश्वास कीजिए, प्रकृति का सम्मान कीजिए।

0: श्रोताओं, अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ, 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और पहला गाना हमने लिया है लाइफ इन अ मेट्रो फिल्म से अदनान सामी का स्वर है, संदीप श्रीवास्तव ने इसे लिखा है और प्रीतम का संगीत है।

0: बनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम

मैं आइए अब आपको सुनवाती एक और खूबसूरत सा नगमा मेट्रो इन दिनों फिल्म से। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत है, अरिजीत सिंह का स्वर। लीजिए।

प्रशांत पांडे का लिखा, राम संपत का संगीतबद्ध किया हुआ अरिजीत सिंह की आवाज़ में लापता लेडीज़ फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं। और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा।
1: सामयिक चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर आज इस विशेष श्रृंखला सेवा संकल्प अभियान में आप सुनेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं तनवीर फातिमा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि बीते वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए नीतिगत कदमों और योजनाओं के बारे में। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा साहब। मोहसिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: मोहसिन जी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पिछले वर्षों में अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो इन सब के विकास के लिए काफी काम किया जा रहा है। किन का आप उल्लेख करना चाहेंगे, कौन से वो प्रमुख क्षेत्र हैं जिसमें आपको लगता है कि बीते वर्षों में काफी बदलाव देखने को मिला है?
3: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा है, मेरा मानना यह है कि सभी समाज के लिए और खासकर के माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए जो उन्होंने मुख्य धारा से जोड़ने की जो बात की, उसको लेकर जो काम किए हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय हैं। आप एजुकेशन पर बात कर लें, शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प। ऐसे ही तमाम बहुत सी योजनाएं जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से मिलकर की गई तमाम योजनाएं, जिसमें काफी हुनर के नाम से और जो यहाँ पे मदरसा मॉडर्नाइजेशन हुआ पूरे देश में, उसको लेकर, क्योंकि शिक्षा का स्तर जब बेहतर होगा तभी अल्पसंख्यक समाज आगे बढ़ सकता है। और जो गरीब हमारे भाई बहन हैं, उनको लेकर जो प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला, जिससे कि गरीबों के सर पर छत आई। ऐसे ही कई और सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर रोजगार की दिशा में रोजगार मेले लगाए गए अल्पसंख्यक कल्याण भारत सरकार की तरफ से। उसमें तमाम लोग जो अपने अपने जगह पर उनके स्पेशलाइजेशन होते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो बहुत सारे अलग अलग जनपद हैं, चाहे सहारनपुर हो, वाराणसी हो, वाराणसी की साड़ी को लेकर उन्होंने बहुत काम किया, बरेली में जो बांस की बनते हैं सोफे और केन के, उसका भी काम है। तो इस तरह से हमारे छोटे व्यापारी हैं जिनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की बात की है, और उसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में भी अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लिया, वो बहुत बड़े पैमाने पे, उस पे सबसे ज्यादा अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की आप बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश के मुसलमान जो हैं वही उसमें ज्यादा उस फायदेमंद हुए हैं, उनको लाभ पहुंचा है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने दिया। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, बनारस से सांसद हैं, तो बनारस की साड़ी और तमाम हथकरघा और जो हैंडलूम का काम है, पावर लूम, उसको लेकर बहुत काम किया उन्होंने।
2: जी, जिस तरह से आपने बताया कि मदरसों में जो पारंपरिक शिक्षा थी उसमें बदलाव लाई है सरकार, इसमें गणित विज्ञान या कंप्यूटर साइंस जैसी चीजें लाई गई हैं जिससे कि जो शिक्षा का स्तर है वो अपग्रेड हो सके, और इससे क्या आपको लगता है कि किस तरह का बदलाव आ रहा है?
3: सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे समाज में मदरसा मॉडर्नाइजेशन करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान का नारा दिया, ये हमारे खासकर के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए, और भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि हमें उनसे भी सीख लेना चाहिए, चाहे वो सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि हम कहीं पिछड़ रहे थे उसमें सरकार ने, और खासकर के माननीय प्रधानमंत्री ने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने, खासकर योगी जी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ कर हम लोगों को किया, उनको मदद करने का काम किया। तो मदरसा मॉडर्नाइजेशन ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, आने वाले समय में जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां वहां पढ़ रही हैं, शिक्षा ले रही हैं, उनको मॉडर्न एजुकेशन में, अब जैसे आपने कहा गणित है, हिंदी है, ये सब साइंस है, तो अंग्रेजी है, ये पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब हम मदरसे में धार्मिक शिक्षा ले रहे हैं तो धार्मिक शिक्षा से आप मुख्य धारा में नहीं

0: नहीं जोड़ सकते। आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या कोई और शोबे में जाना चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर आपको एक सामाजिक शिक्षा नहीं है, आपके पास में मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, आज टेक्नोलॉजी से भी नहीं जुड़े हैं आप। तो वो सारी चीजों का काम जो है उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी में बहुत तेजी से योगी सरकार ने किया, और देश में अलग अलग राज्यों में आदरणीय मोदी सरकार कर रही है, तो उसका फायदा मुस्लिम समाज को सीधी तौर पर मिल रहा है। अब हमारे समाज के बच्चे, ठीक है, जो लोग काम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, जिनके पास में अपने हाथ का हुनर है, तो हुनर को भी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। उनके हुनर के नाम से भी बहुत लोगों को उस्ताद, हुनर, ये सब स्कीम है माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उसको आगे बढ़ाते हुए अब उनके बच्चे, उनके पास हुनर के साथ साथ एजुकेशन भी हो। जब एजुकेशन होगी उनके पास, तो बट नेचुरल है कि अभी किसी एक हुनरमंद आदमी का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा तो पूरे समाज के अंदर एक बदलाव लाने का काम करेगा वो।
1: मोहसिन जी, एक बहुत माइलस्टोन डिसीजन जिसको कहा जाए, 3 तलाक का जो कानून है मुस्लिम महिलाओं के लिए, उस पर जो कानून लाया गया और उसके गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने का काम किया है सरकार ने, आपको क्या लगता है कि उससे कितना बड़ा बदलाव आया है और कितनी सशक्त हुई है महिलाएं?
0: देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत काम किया है, और उत्तर प्रदेश में भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे योगी सरकार भी। और जहां तक बात की जाए ट्रिपल तलाक को लेकर जो कानून बनाया गया उसके खिलाफ, क्योंकि ये है ही नहीं, क्योंकि जो चीज इस्लाम का पार्ट नहीं है उसको जबरदस्ती, हमारे वही वाली बात कि जब हमारा शिक्षा का स्तर बहुत लोअर स्टैंडर्ड पे था या है, और जब तक कि हम उसको शिक्षित नहीं करेंगे, लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी लोगों में, उनको बताएंगे नहीं, जागरूक नहीं करेंगे, तो जब तक जागरूकता नहीं आएगी तो उनको हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए ये और भी 21-22 देशों में तो नहीं चलती थी, खाली भारत में ही चल रही थी ट्रिपल तलाक। तो उसको लेकर जब कानून लाए तो बहुत सारा रायशुमारी की गई पूरे देश के अंदर, तो सबका ये मैंडेट निकल कर आया, सबकी ये बात निकल कर आई कि नहीं साहब, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा जुल्म है, क्योंकि किसी को भी आप ट्रिपल तलाक में एक 3 तलाक कह दिया और खत्म, उसका जीवन ही खत्म है एक तरीके से। तो ये जो अवेयरनेस लाने का काम किया आदरणीय मोदी सरकार ने और इस कानून को लाए, उससे कम अब जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा आता था ट्रिपल तलाक का, वो कम, और धीरे धीरे लोगों में अब उस बात को लेकर, खास करके हमारी बहनों में, हमारी जो बहनें हैं वो भी इस बात को लेकर आगे बढ़ रही हैं कि नहीं, अब हमारे लिए जो मोदी सरकार ये फैसला लेकर आई है, ये हमको इस अधिकार प्रदान करता है, हमको सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे यहाँ कुरान में साफ तौर पर लिखा है कि अगर कोई का तलाक हो रहा होता है तो सबसे ज्यादा अगर बुरी कोई बात लगती है अल्लाह को, कोई तो यही लगती है कि दो लोग जो खुशी से रह रहे थे आज वो अलग हो रहे हैं अपनी जरा सी नादानियों के तहत, तो उस बात से परवरदिगार जो है अल्लाह जो है वो नाराज होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सबको शुक्रगुजार रहना चाहिए आदरणीय मोदी सरकार का, हमारे समाज को, हमारी बहनों को, कि उन्होंने कम से कम उनके अधिकारों को सुरक्षित किया और उनके साथ हो रहे उत्पीड़न को भी रोकने का काम किया, इससे उत्पीड़न भी बहुत हुआ उनका। तो अब इससे ये माइलस्टोन की जो बात आपने की, ये वाकई में एक मील का पत्थर साबित हो गया, क्योंकि तो पूरे देश में इस लागू करके ये बहनों को अधिकार दे दिए गए कि अब आप सुरक्षित हैं।
1: और इसमें जो और कई क्लॉज दिए सरकार ने कि आप जो गुजारा भत्ता मिलेगा या बच्चे हैं उनकी परवरिश का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी होगी जो हस्बैंड होगा, तो इस तरह के जो क्लॉजेज हैं इनसे भी आपको लगता है कि जहां पर अगर कहीं तलाक की नौबत आ भी रही है तो उससे भी महिलाओं को एक मजबूत?
0: नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा उनके अधिकारों को सुरक्षित किया है, इसकी जो नियमावली है, जो इसके कायदे कानून है, उसमें ये सब चीजों का प्रोविजन है कि अगर किसी ने, मान लीजिए कोई फैमिली ऐसी है जो नहीं साथ में रह सकती है, तो उनके साथ अगर बच्चे हैं तो उनका भविष्य नहीं खराब होना चाहिए। अगर कोई बहन है, अब वो मान लीजिए इस एज में नहीं है कि वो शादी कर सके, तो उसको उसके अधिकार दिलाने के लिए भी एक प्रोविजन दिया गया है इस एक्ट में, जो ट्रिपल तलाक का कानून।
1: इसके अलावा मोहसिन जी, जो वक्फ संपत्तियों को लेकर एक कानून लाई सरकार, वक्फ कानून में संशोधन किया गया, वक्फ संपत्तियों को लेकर काफी इस तरह की खबरें रहती हैं कि गलत तरीके से क्लेम कर ली गई हैं या लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेकर एक कानून आया, इससे आपको क्या लगता है कि कितना मजबूती मिली है और किस तरह से वक्फ की जो संपत्तियां हैं उनको प्रोटेक्ट करके और उनको सही इस्तेमाल में लाने की ओर जो कदम उठाया गया है उससे क्या फर्क पड़ा?
0: देखिए, आप एक जमाने से वक्फ को लेकर तमाम आवाजें उठ रही थी, जिस तरह से गड़बड़ियां थी उसको लेकर हमारी सरकार जब आई तो हम लोगों ने लगातार वक्फ की संपत्तियों के संरक्षण के लिए काम किया, और ये सारी चीजें जो आपने कहा अमेंडमेंट लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो 2013 का अमेंडमेंट था वो इतना बोगस था कि उसके चलते वक्फ बोर्डों को पूरे अधिकार दे दिए गए थे। वो किसी की संपत्ति, मान लीजिए अलल औलाद वक्फ है, तो अलल औलाद जो वक्फ होता है वो किसी परिवार का हो, उसमें दूसरे आदमी को आप नहीं ला सकते, अगर कोई ने गड़बड़ किया है तो उसको हटाकर उसी परिवार का लाए।

लेकिन वक्फ बोर्डों ने क्या किया कि बेशकीमती संपत्तियों की वजह से अपने लोगों को वहां स्थापित किया और उस फैमिली को ही बाहर कर दिया, जो नहीं कर सकते आप। अल्तमश कबीर साहब का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें साफ उन्होंने कहा था कि वाकिफ की मंशा ही सुप्रीम, जो उसमें वक्फनामा है उसकी जो नियमावली है वही सुप्रीम मानी गई है। लेकिन ये सारी चीजें जब पिछली सरकारें रही तो उस दौरान वक्फ की संपत्तियां बहुत खुर्द बुर्द हुई, बहुत सी संपत्तियों में गलत सलत लोगों को अपॉइंट किया गया, और जो 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे वक्फ के, 2 लाख उत्तर प्रदेश में, आज की तारीख में वो 1,27,000 रह गए। जब हमारी सरकार आई 2017 में तो हम लोगों ने जब उसको CWC से मांगा तो पता चला कि साहब आपके यहाँ 2 लाख संपत्तियां थी और आज की तारीख में 1,27,000 बची हैं। तो 73,000 रजिस्ट्रेशन ही और उसमें जो आने वाली लाखों संपत्तियां थी उनका ही कोई लेखा जोखा नहीं है, कहां गई वो कि उसमें SIT की जांच होगी। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो की संपत्तियों को संरक्षित करे और ऑडिट कराए, उससे संरक्षण होगा और अब आमदनी भी बढ़ेगी। जब इसकी इनकम बढ़ी तो हमारी जो मुस्लिम समाज के लोग, दबे पिछड़े लोग हैं, खास करके जिनको आप पसमांदा बोल, उनके संरक्षण और उनके चैरिटी के लिए ही ये वक्त किए गए।

0: वाली लाखों संपत्तियां थी उनका ही कोई लेखा जोखा नहीं है, कहां गई वो कि उसमें एसआईटी की जांच होगी। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो की संपत्तियों को संरक्षित करे और ऑडिट कराए, उससे संरक्षण होगा और अब आमदनी भी बढ़ेगी। जब इसकी इनकम बढ़ी तो हमारी जो मुस्लिम समाज के लोग, दबे पिछड़े लोग हैं, खास करके जिनको आप पसमांदा बोल, उनके संरक्षण और उनके चैरिटी के लिए ही ये वक्फ किए गए थे। वक्फ की जब आमदनी बढ़ेगी तो उससे उनका कोई ना कोई कल्याण होगा, उनको उसका पैसा मिलेगा, बहुत सी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं उनको पढ़ने के लिए वहां से, बहुत सी बच्चियों की शादी है उसका अनुदान उनको मिलेगा, तो अनुदान सरकार भी देती है। लेकिन चूंकि ये उनका राइट, वक्फ बोर्ड से आने वाली आमदनी, लेकिन अगर आप दोनों वक्फ बोर्डों की बात हम करें आप, तो 25 साल का अगर आप रिकॉर्ड मांग लीजिए दोनों वक्फ बोर्ड के पास में एक नए पैसे की आमदनी नहीं है दोनों के पास, और ना ऑडिट कराया है कभी इन्होंने 25 साल में। और अगर ये अमेंडमेंट नहीं आता और ये कानून नहीं बनता तो मुझे लगता है कि 10-15 सालों में, 20 सालों में वक्फ खत्म ही हो जाता। तो वक्फ को संरक्षण देने के लिए और वक्फ को सुरक्षित करने के लिए ये आदरणीय मोदी सरकार का फैसला स्वागत योग्य फैसला है, हम लोग स्वागत करते हैं। और इससे खास करके उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार आगे जांच कराएंगे तो बहुत सी चीजें और निकल कर आएंगे, उस पर कोई डेवलपमेंट करेगी, क्योंकि अब जो नए बोर्ड बनेंगे वो सीधी तौर पर सरकार के संरक्षण में रहेंगे और सीधी तौर पर जवाबदेही उनकी तय होगी। तो ये एक अच्छा फैसला है जिससे कि हमारे मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि लाखों वक्फ की संपत्तियां हैं उत्तर प्रदेश में, अगर थोड़ा थोड़ा भी आएगा तो कितने करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से आएगा और उससे हमारे गरीब मुस्लिम समाज के ही लोगों को उसका फायदा पहुंचेगा।
1: जी, अगर अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें कि जो युवा हैं इसमें पारंपरिक कारीगरों की अभी आप बात कर रहे थे, जैसे कि ODOP से जुड़े हैं, इनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री जन विकास योजना चल रही है, इस तरह की और भी योजनाएं हैं, तो अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से आप लोग केंद्र की योजनाएं और प्लस स्टेट में भी किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए
0: कौशल विकास, जो कौशल विकास का जो कार्यक्रम चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, उसको उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार लगातार आगे बढ़ाने का काम करें, कौशल विकास से जोड़कर ही उसको देखा जाता है, क्योंकि जहां जहां जिनके पास में हुनर है उनको प्लेटफॉर्म देने का काम आदरणीय योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बखूबी कर रही है, और उससे बहुत बड़ी तादाद में आच्छादित हो रहे हैं लोग। पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपद की बात करता हूं, चाहे बनारस हो, भदोही हो, कालीन का काम हो, चाहे लकड़ी का काम हो, चाहे आपका साड़ी का काम हो, आपका चाहे चिकनकारी का काम लखनऊ में हो, चाहे फिरोजाबाद में चूड़ी का काम हो, तो इस तरह के जितने भी जगहें हैं, तो इन लोगों को बहुत बड़ी तादाद में एक प्लेटफॉर्म देने का काम अगर किसी ने किया है वो उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने कौशल विकास के जरिए किया। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लिए बहुत अच्छा एक अवसर प्रदान किया है आदरणीय मोदी सरकार ने।
1: जो तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं या जो फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लक्ष्य है विकसित भारत 2047, इसमें आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय की क्या भूमिका होगी और किस तरह से आगे बढ़ने का कुछ?
0: देखिए, विकसित भारत में जाहिर सी बात है पूरे देश के लोगों की, हर समाज के, हर वर्ग के लोगों की भूमिका है, और खास करके अगर बात किया जाए तो मुस्लिम समाज की भूमिका बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उनके पास में हुनर है और उनको अब शिक्षा की तरफ जोड़ा जा रहा है, रोजगार से बहुत आच्छादित किया गया है, और उनके ही रोजगार को बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर उनको प्लेटफॉर्म दिए गए, बड़े बड़ी समिट हो रही है, उस समिट के दौरान भी उनके जो काम है उसको प्लेटफॉर्म देकर विदेशों तक पहुंचाने का काम किया है। तो विकसित भारत जो 2047 का माननीय प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, उसमें अल्पसंख्यक समाज का भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, और उत्थान भी इनका और इनका कल्याण भी बहुत बड़ा होगा 2047 तक। हमें नहीं लगता कि जो अल्पसंख्यक समाज आज कहना चाहिए अनुदान वाली बात होती है, तो इनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आदरणीय मोदी सरकार ने दे दिया है देश में कि 2047 में ये खुद बहुत से लोगों को रोजगार देने की स्थिति में आ चुके होंगे। तो जो 2047 की विकसित भारत की आधारशिला है, उसकी बुनियाद में बहुत सारा जो है योगदान अल्पसंख्यक में, खासकर मुस्लिम समाज का भी होगा।
1: मुहसिन साहब, हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर आज इस विशेष श्रृंखला सेवा संकल्प अभियान में आपने सुना अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मोहसिन रजा से खास बातचीत। वार्ताकार थी तन्वीर फातिमा।
3: सामयिक चर्चा अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू प्रोग्राम। आकाशवाणी के लखनऊ मरकज की पेशकश के तहत आज आइए सुनते हैं खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम। मेजबानी की है सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान ने।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से आपका अपना प्रोग्राम खत के लिए शुक्रिया, जहां आपके लिखे हुए लफ्ज हम तक पहुंचते हैं और फिर उन्हीं लफ्जों से जन्म लेती है एक खूबसूरत गुफ्तगू। मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया खान।
2: और मैं हूं सुरेंद्र राजेश्वरी। और हमेशा की तरह आज भी हम आपके खतों, आपकी फरमाइशों, आपकी राय और आपकी मोहब्बतों के साथ इस खूबसूरत सफर पर रवाना होने वाले हैं। शाजिया खान साहिबा, सबसे पहले आपको आदाब। और इस प्रोग्राम को सुनने वाले तमाम जो हमारे सामेई हैं उनको भी बहुत बहुत आदाब।
1: जो हमारे तमाम सामेईन हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपका हर खत हमारे लिए महज कागज पर लिखी चंद सतरें नहीं है, बल्कि आपकी आवाज, आपके एहसासात और हमसे आपकी वाबस्तगी का एक खूबसूरत इजहार का जरिया है।
2: शाजी, मुझे लगता है कि पिछली मुलाकात हमारी काफी दिन हो गए, मुझे लगता है कि 25-26 दिन के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और जितनी शिद्दत से हम इंतजार कर रहे हैं, मुझे लगता है शाजी कि उससे कहीं ज्यादा हमारे सुनने वाले अपने खतों के जवाब का इंतजार करते हैं।
1: जी बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। जिस कदर आज हमारे पास, हमारे सामने खतों के ढेर लगे हुए हैं, आपने इसे बखूबी अंदाजा लगा लिया है।
2: हाँ, मुझे लग रहा है कि आप पूरे दिन भर आज अपने इनको समेटा है, पढ़ा है। ये भी बड़ी बड़ी खुशी की बात है शाजिया कि प्रोग्राम को लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं। आज की तारीख में बड़ा मुश्किल होता है वक्त निकालना खुद के लिए भी।
1: बिल्कुल।
2: और
1: बिल्कुल।
2: हमारे सामीन जो हैं वो बाकायदा तय वक्त पर रेडियो सेट पर या सेल फोन पर प्रोग्राम को सुनते हैं, उसके बाद फिर ईमेल भेजना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसको बहुत आसान करते हैं हमारे सुनने वाले। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपकी समातों का।
1: तो राजेश्वरी जी, मैं सबसे पहला खत लेती हूँ, बिला ताखीर हम आगाज कर ही देते हैं।
2: जी बिल्कुल।
1: पहला खत जो हमें मौसूल हुआ है वो है लखीमपुर खीरी से जनाब हनीफ साहब का, और ये लिखते हैं हमारे प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी के मुतालिक, और लिखते हैं 12 रबीउल नूर के हवाले से आपका रेडियो प्रोग्राम सुना, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की बरकत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से इंसानियत के परचम को बुलंद किया। इकबाल साहब और शम्सुल आरफीन साहब की ये पेशकश बहुत ही उम्दा खूबसूरत थी, इसके लिए दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।
2: हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके समातों का कि आपने ईद मिलादुन नबी पर मबनी ये खास प्रोग्राम सुना। हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी कोशिश भी थी कि इस पाकिज़ा मुकद्दस मौके पर आपको ये प्रोग्राम सुनाया जाए, और आपने वक्त निकाला, इस प्रोग्राम को सुना। हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
1: अब हमारे पास कुछ खत ऐसे भी हैं जो आकाशवाणी प्रोग्राम के मुतालिक हैं, उर्दू प्रोग्राम के मुतालिक हैं, तो वो सारे खत मैं एक साथ लेती हूँ यहाँ पर।
2: जी।
1: पहला खत है सलीम ताबिश साहब का, वो लिखते हैं, आकाशवाणी का उर्दू प्रोग्राम का सिलसिला काबिल तहसीन है, इसके जरिए उर्दू जबान को फरोग मिलेगी। मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम आसिफ इकबाल साहब और शम्सुल आरफीन साहब को। डॉक्टर नुजहत फातिमा जो कि लखनऊ से हैं, ये लिखती हैं, आसिफ साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह से आकाशवाणी रेडियो पर उर्दू अदब में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए से उर्दू को फरोग देने का काम कर रही है, वो काबिल तारीफ है। साथ ही शायर एहराज अरमान साहब लिखते हैं, आकाशवाणी रेडियो लोगों की पसंद बनता जा रहा है, क्योंकि आकाशवाणी रेडियो पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम और अलग अलग तरीके से आने लगे हैं। अब तो डेली का ये मामूल बन गया है कि आने वाले हर प्रोग्राम को सुना जा रहा है। ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हर हाथ में रेडियो होगा।
2: सलीम ताबी साहब और नुजहत फातिमा साहिबा और जनाब एहराज अरमान साहब, बेहद शुक्रिया आपका। और शाहजी, ये देखें कि एक जमाना था कि हर घर में रेडियो होता था।
1: जी।
2: लोग रेडियो के प्रोग्राम को सुनते थे, आकाशवाणी को सुनते थे, और मैं समझता हूँ कि वाहिद एक ऐसा इदारा है आकाशवाणी कि जो हर तरह के प्रोग्राम अपने सुनने वालों तक पहुंचाता है, हर तरह की उम्र के लोगों के लिए, चाहे वो अतफाल हो, खवातीन के लिए प्रोग्राम हो, वो चाहे कोई हेल्थ इश्यूज हो या मुआशरे में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, या कोई साइंस का प्रोग्राम हो, हर तरह के प्रोग्राम को सुनने वालों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है। खुशी इस बात की है कि सलीम ताबी साहब ने, एराज रहमान साहब ने, नुजहत फातिमा साहिबा ने तमाम तरह के प्रोग्राम सुने। ने केवल उर्दू प्रोग्राम का इन्होंने जिक्र किया है, पूरे ऑल इंडिया रेडियो, पूरे आकाशवाणी के प्रोग्राम का जिक्र किया है। आपका बेहद शुक्रिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि और भी बेहतर इसको कैसे बनाया जा सकता है, उस बारे में भी अगर वक्त मिलता है, मौका आपको, तो जरूर लिखेगा, ताकि आपके सर

0: इसके बाद शमीमा आजमी खान संत कबीर नगर से लिखती हैं, उर्दू प्रोग्राम में नशर होने वाली जासूसी सीरीज शय और माद की तीसरी और आखिरी किस्त मैं कौन हूँ सुनने का शर्फ हासिल हुआ। इस किस्त ने वाकई दिल जीत लिया। कहानी में मौजूद तजस्सुस और सनसनी ने आखिर तक सामईन को अपने साथ बांधे रखा। मैंने सीरीज की तमाम अकसाद बाकायदगी से सुनी और हर किस्त के बाद ये एहसास होता रहा कि अगली किस्त का इंतजार मुश्किल है। आज आखिरी किस्त सुनकर जहाँ कहानी के अख्तिताम की खुशी हुई, वहीं इस खूबसूरत सिलसिले के ख़त्म होने का अफसोस भी हुआ। इसी के साथ इसी प्रोग्राम के मुतालिक इमराना खातून बाग नगर बस्ती उत्तर प्रदेश से लिखती हैं कि उर्दू प्रोग्राम में नशर होने वाली जासूसी सीरीज शय और माद की तीसरी और आखिरी किस्त में मैं कौन हूँ सुनकर बहुत लुत्फ आया। ये सिलसिला इब्तिदा से ही दिलचस्पी का बाइस बना हुआ था। आखिरी किस्त ने भी सामईन को अपनी गिरफ्त में रखा। इस प्रोग्राम को सुनकर अंदाज़ा हुआ कि रेडियो आज भी अपनी मौसर आवाज़, मकालमों और तखय्युल की ताकत से सामईन को एक अलग दुनिया में ले जाने की सलाहियत रखता है। इस सीरीज के तमाम फनकारों ने बड़ी मेहनत और खूबसूरती से अपने अपने किरदार अदा किए।
1: ज़रगाम खान साहब, शमीमा अजमा खान साहिबा और इमरान खातून साहिबा, बहुत शुक्रिया आप सभी का कि शय और माद की आखिरी किस्त, हालांकि मैं समझता हूँ कि सारी किस्त आपको पसंद आई होंगी, पहले की जो दो किस्त थी, लेकिन ख़ास तौर से क्योंकि ये रुख्सती का एक आखिरी किस्त था, यहाँ से हमने रुख्सत ली थी इस सीरीज़ से, इस प्रोग्राम से, तो जाहिर सी बात है ये आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत बहुत टाइम भी लगा इसको तैयार करने में, क्योंकि आखिरी किस्त थी, सब कुछ उसी में सब शामिल था। लेकिन कमाल है शाजिया कि इतने प्यार से इस सीरीज को सुना गया। शुक्रिया भी मैं समझता हूँ कि रिवायतन तौर से करना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो शुक्रिया भी बहुत छोटा पड़ता।
0: सुना ही नहीं गया बल्कि बड़ी संजीदगी के साथ सुना,
1: बहुत संजीदगी के साथ सुना गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी शामिल हो, जिन्हें लखनऊ से लेके संत कबीर नगर से लेके बस्ती से तमाम जगह से लखीमपुर खीरी से मगरबन सब जगह से इसके बारे में खत आए, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका।
0: हमारा 14 सितम्बर को नशर होने वाला प्रोग्राम उर्दू और हिंदी दो बहने, इसमें जो मकाला निगार थी सायमा अंसारी, उनके मकाला के मुतालिक चंद खतूत शामिल कर लेती हूँ मैं। लिखने वाली हैं सूबिया सिद्दीकी लखनऊ से तकी जाफर साहब, मोहम्मद शहजाद और उमर हनीफ। इन तमाम लोगों ने ही मकाला निगार और साथ ही मकाले की बेहद तारीफें की हैं।
1: सूबिया सिद्दीकी साहिबा, तकी जाफर साहब, मोहम्मद शहजाद साहब, उमर हनीफ साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हिंदी के हवाले से ये प्रोग्राम सुना और आपके पसंद आए। वक्त बहुत कम है हमारे पास, काश आपके पूरे ख़त को हम पढ़ पाते और सामीन तक पहुंचा पाते। इंशाल्लाह इसको हमने महफूज रखा है, उससे हमको आगे के प्रोग्राम करने में हम और मदद मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब शाजिया खान साहब, एक बहुत ही अहम
0: पड़ाव है,
1: उसको भी निभाना बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है।
1: क्या है वो?
0: हम अपने सामीन से कहना चाहेंगे कि आप अपने खतूत हमें हमारे इस एड्रेस पे इरसाल कर सकते हैं, kklsurdu@gmail.com। और अब इतना ही नहीं, आप हमें व्हाट्सएप पे भी अपने मैसेजेस डायरेक्ट भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7991778157।
1: ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर खत जरूर इरसाल करें।
0: सामईन, वक्त अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और आज की ये खूबसूरत नशिस्त भी अब हमसे इजाज़त चाहती है। आपके खतूत, आपकी बातें और आपकी मोहब्बतें ही इस प्रोग्राम की असल खूबसूरती है। इसलिए लिखते रहिए, अपनी राय हम तक पहुंचाते रहिए और हमें बताते रहिए कि आकाशवाणी के प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं।
1: तो शाहजहाँ खान साहब, अब अलविदा कहने का वक्त है
0: जी।
1: इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए
0: आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपने खतूत हमें ज़रूर इरसाल करते रहें, इसी शिद्दत के साथ, इसी मोहब्बत के साथ। आदाब।
2: खत के लिए शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम पेशकश। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है सुगम संगीत सुनने का, तो आइए सुनते हैं इसके अंतर्गत अंजू मुखर्जी की गाई गजलें।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी एक छोटी

0: ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अंजू मुखर्जी की गाई गजलें। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को हैं, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं

में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन दोपहर में बलरामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में कई रेल परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री शाह साबरमती लोको शेड में नवनिर्मित WAG-12 लोकोमोटिव मेंटेनेंस शेड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह उच्च क्षमता वाले WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी रवाना करेंगे। इसके बाद श्री शाह साबरमती रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान वे देश की पहली तरल प्राकृतिक गैस LNG से चलने वाली डेमू रेलगाड़ी को भी रवाना करेंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से संबद्ध शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी भंडार को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मौजूदा संघर्ष के बीच सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल डॉक्टर जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्ष के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने को कहा। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताते हुए आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोफ ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए श्री लैवरोव ने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। उन्होंने रूस, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के अंतर्गत पश्चिमी देशों के लिए अतिरिक्त स्थायी सीट नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने का समर्थन किया। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह विषय पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर बल देती है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही वर्षा से आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में भी गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। उड़ीसा के कई हिस्सों में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। जापान एशियाई खेलों की स्क्वाश स्पर्धा में आज अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से एक जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी भारत को आज पदक मिल सकते हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

लोकगीतों के इस कार्यक्रम लोक माधुरी में आज हम आपको सुनवाएंगे रंजीत कुमार और साथी और आकांक्षा भारती और साथियों के स्वर में लोकगीत। पहले सुनिए रंजीत कुमार और साथियों के स्वर में देवी गीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम लोक माधुरी में आप सुन रहे थे रंजीत कुमार और साथियों के स्वर में देवी गीत और राष्ट्रीय गीत। और अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आकांक्षा भारती और साथियों के स्वर में लोकगीत। तो पहले सुनते हैं इनके स्वर में देवी गीत।

0: लोकगीतों में कार्यक्रम लोक माधुरी में आइए अब आपको सुनवाते हैं आकांक्षा भारती और साथियों के सुर में ये दादरा।
1: हाय स्वच्छता।

और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में मैं शालिनी दुबे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कहते हैं घर में बेटी का होना सिर्फ एक रिश्ते का होना नहीं है, ये घर में मुस्कान का होना है, उम्मीद का होना है और भविष्य के खूबसूरत सपनों का होना है। बेटी कभी माँ की सहेली बनकर साथ देती है, कभी पिता की आंखों का सपना बन जाती है, तो कभी अपने हौसलों से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करती है। जी हाँ, आज डॉटर्स डे के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटियों को समर्पित कुछ खास फिल्मी गीत। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जिसमें बेटी के प्रति माता पिता के स्नेह और उम्मीदों की खूबसूरत झलक मिलती है।

अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज के कलाकार थे रंजीत कुमार और साथी और आकांक्षा भारती और साथी। आपने सुने इनके स्वर में लोक गीत। ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी देर में सुनिएगा हमारा अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत।

बचपन की सबसे प्यारी यादों में बेटियों की खिलखिलाहट का अपना ही रंग होता है। वह छोटी सी गुड़िया कब बड़ी होकर घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगती है पता ही नहीं चलता, लेकिन उसके बचपन की वह मुस्कान हमेशा दिलों में बसी रहती है। आइए दिल में उस प्यारी सी मुस्कान को बसाए हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बेटी जब घर में आती है तो सिर्फ एक नया सदस्य घर में नहीं आता, वो अपने साथ ढेर सारी खुशियां, नन्हे नन्हे सपने और अनगिनत उम्मीदें लेकर आती है। एक पिता के लिए बेटी उसकी नन्ही परी होती है और एक माँ के लिए वह उसकी अपनी परछाई। आइए जीते हैं इस खूबसूरत एहसास को इस प्यारे से गीत में।

श्रोताओं, बेटी के जीवन में पिता का स्थान बहुत खास होता है। पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखने वाली वही बेटी एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर आसमान छूने लगती है। आज डॉटर्स डे पर हर उस पिता को सलाम जो अपनी बेटी के सपनों को अपने सपनों की तरह देखते हैं। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

इसके साथ ही आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए। हर बेटी को मिले प्यार, हर बेटी को मिले सम्मान, हर बेटी को मिले अपने सपनों को पूरा करने का अवसर, क्योंकि बेटियां बोझ नहीं भविष्य की उम्मीद हैं, बेटियां सिर्फ घर की रौनक नहीं समाज की ताकत हैं। डॉटर्स डे पर सभी बेटियों को ढेरों शुभकामनाएं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला विशेष प्रसारण मन की बात। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: The best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
3: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूं यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूं
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई डीएनडी ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
6: जी कॉलेज का टाइम याद है
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए अब कितनी बातें भूल गया हूँ तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है
7: कहाँ से पता चलेगा
6: उद्गम से RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ
4: आज ही सर्च करूंगा
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से
8: RBI कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा याद रखें समाधान आपके पास है टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है यहाँ आपकी बात सुनी जाती है समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है आप अकेले नहीं है मदद बस एक कॉल दूर है
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
12: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं देश की उपलब्धियों की बात करते हैं भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी एलओसी के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक

जो दर्द झेला था सर्जिकल स्ट्राइक, उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था, उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की यह तारीख

एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे आज उनका कोई वजूद भी नहीं है। और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढ़ेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम सोलर विलेज बन चुका है। मोढ़ेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढ़ेरा में पर्यटन

पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत के इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का यह एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है। कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह

ऐसे पिग्मी हॉग की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से
गांवों में नई हॉकी एस्ट्रो

टर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने आचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती हैं। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई हैं। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा, घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खान पान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा।

और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना, ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश

0: साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्ति भाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है, और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहां हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सेप्टेम्बर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहं देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मंचं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारत

मनीष भारती की लिखी झलकी हम आपको सुनवाएंगे संडे की सैर। 9:30 बजे कहकशा कार्यक्रम में फिल्मी गीतों पर आधारित गजलें सुनवाई जाएंगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचना। साहबलाल यादव सूचित करते हैं कि 3 अगस्त 2026 से सुमन देवी लापता हैं। सुमन देवी की उम्र है 35 वर्ष, चेहरा गोल है, ऊंचाई है 5 फीट, रंग सांवला है, इन्होंने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है। इनकी सूचना मिलने पर रमूल पुरवा साहबलाल यादव को सूचित करें, थाना कुंडा प्रतापगढ़। एक और सूचना सुनिए। गौरव कुमार पुत्र शिवलाल, ग्राम अदमपुर, थाना अनंत जनपद प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि काजल 4 अगस्त 2026 से लापता हैं। काजल की उम्र है 19 वर्ष, चेहरा मजबूत जिस्म है, चेहरा गोल है, रंग गोरा है और लगभग ऊंचाई है 4 फीट, हरे रंग की साड़ी और काले रंग का ब्लाउज इन्होंने पहना हुआ है। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 7459095152 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 7459095154। एक और सूचना सुनिए। पूनम पुत्री सुरेश कुमार, निवासी ग्राम बेला संडी, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि पूनम उम्र 18 वर्ष, एकहरा मजबूत जिस्म है, चेहरा गोल है, ऊंचाई है 5 फीट, रंग गोरा है और इन्होंने नीला लोवर और जीन्स की शर्ट पहनी हुई है। ये 2 अगस्त 2026 से 11 बजे से लापता हैं। इनकी सूचना मिलने पर मोबाइल नंबर 8795605795 पर सूचित करें। मोबाइल नंबर पुनः सुन लें, 8795605795। खोए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीता बनर्जी का ख्याल गायन, राग मिश्र पीलू में ठुमरी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीता बनर्जी का ख्याल गायन राग मिश्र पीलू में ठुमरी। इनके साथ तबले पर संगत की थी श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने, हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने और बोल थे कारे कारे बदरा। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। 29 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में आपकी थाली से पोषण की खुशहाली विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ प्रत्यक्षा कटियार। श्रोतागण, मोटापा, खून की कमी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों में उचित आहार विहार के बारे में अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर, कोड है 0532 और दूरभाष नंबर है 2970462 और 2423649 पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर पुनः सुन लीजिए, कोड है 0532, दूरभाष नंबर है 2970462 और 2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 800-4926-2520 पर भी भेज सकते हैं। ध्यान रखें, व्हाट्सएप पर सवाल के पहले हेलो पनघट अवश्य लिखें। सूचना समाप्त हुई।

अरे सांसों के जैसे होते हैं, लगातार हमारे साथ चलते हैं, है ना। लेकिन प्रकृति और परिवर्तन के क्रम के साथ जो कल बच्चे थे वो आज माँ पापा हैं, जो आज बच्चे हैं वो कल माँ पापा बनेंगे, और ये क्रम यूं ही चलता रहेगा। प्रकृति के इसी अनवरत क्रम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, अपने पूर्वजों, अपने पितरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमारी सनातन संस्कृति में पितृ पक्ष की धारणा दी गई है। दोस्तों, आज से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है, तो चलिए संगीत के माध्यम से हम सभी अपने पूर्वजों को याद करें और पवित्र भाव से अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत मेरे यानी साक्षी के साथ। दोस्तों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आज एक सवाल मन में आ रहा है। क्या कभी आपने कभी ये इमेजिन या कभी ये कल्पना भी की है कि आपकी शुरुआत आपके मम्मा पापा की आवाज़ के बिना हो रही हो? नहीं ना, ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे लिए तो हमारे माँ पापा हम

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम साथ साथ है का गीत ये तो सच है कि भगवान है, जिसको स्वर दिया था हरिहरन, घनश्याम, प्रतिमा राव व संतोष तिवारी ने। रचना थी रविंद्र रावल की और संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। संभव है दोस्तों इस संगीत के साथ आप थोड़े भावुक हो गए हों, संभव है, क्योंकि परिवार होता ही ऐसा है। दादा दादी, नाना नानी, मम्मा पापा, चाचा चाची, भाई बहनों से बना एक ऐसा गुलदस्ता होता है जिसमें फूल तो सारे अलग अलग हो सकते हैं, है ना, लेकिन एक साथ रहते हुए अपनी जो महक होती है उससे पूरे घर को महका जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं अपने प्रोग्राम का अगला संगीत जो आपको इसी महक से महका जाएगा, जिसके बोल हैं एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, फिल्म हम से, जिसे स्वर दिया है सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज व उदित नारायण ने। बोल हैं आनंद बख्शी के और स्वर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

श्रोताओं एक सूचना सुनिए। 29 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में आपकी थाली से पोषण की खुशहाली विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ प्रत्यक्षा कटियार। श्रोतागण, मोटापा, खून की कमी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों में उचित आहार विहार के बारे में अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर जिसका कोड है 0532, दूरभाष नंबर है 2970462 और 2423649 पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, कोड है 0532 और दूरभाष नंबर है 2970462 और 2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 800492625 पर भी भेज सकते हैं। ध्यान रखें, व्हाट्सएप पर सवाल के पहले हेलो पनघट अवश्य लिखें। सूचना समाप्त हुई। दोस्तों, अब अपने फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आज संडे है हम जान रहे हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान दिलाना आवश्यक है कि आज जो है वो है 4th Sunday ऑफ सितंबर, यानी कि सितंबर माह का आखिरी रविवार। और दोस्तों, इसे मनाया जाता है डॉटर्स डे के रूप में, है ना, कितनी अच्छी और कितनी प्यारी सी बात। और डॉटर्स यानी बेटियां तो अपने आप में इतनी प्यारी होती हैं, है ना, कि उनको ऐसे गोद में लो तो जैसे लगता है कि ईश्वर का साक्षात रूप हमने अपनी गोद में ले लिया है, पूरी जैसे जन्नत जो होती है वो गोद में हमारे समा गई है। बेटी जब हंसते तो लगता है कि चांद, सूरज, तारे, सितारे सब जगमगा उठे हैं, है ना, बेटियां होती हैं इतनी प्यारी। तो चलिए सुनते हैं प्रोग्राम का अपना अगला प्यारा सा संगीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे साधना सरगम के स्वर में अनाड़ी फिल्म का गीत छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी। बोल थे समीर के और संगीत था आनंद मिलन का। देखा ना दोस्तों गाना कितना प्यारा था, बेटियाँ छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी। लेकिन आज जब दौर इतना परिवर्तित हो रहा है, ऐसी ही बेटियाँ छोटी सी हो सकती हैं, नन्ही सी हो सकती हैं, प्यारी सी हो सकती हैं, लेकिन साथ ही साथ मजबूत भी हो सकती हैं और होती ही हैं। आज जो समाज है, जो हमारे चारों तरफ का माहौल है, वो भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से जहाँ बेटियाँ एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। वो सिर्फ बेटियों का जो शब्द है कि बेटी है वो बहुत कोमल सी होगी, बहुत नाजुक सी होगी, इससे बहुत आगे जा चुकी हैं। अब ये जो परिभाषा थी उनकी, ये बदल रही है। हमेशा जैसा होता ना कि हम जेंडराइज कर देते हैं कि कहीं पे हम मजबूती की बात कर रहे हैं तो बेटी का लड़की का ध्यान ही नहीं आएगा कि नहीं बेटियां कहाँ आ रही, वो तो

घर के कामों तक रहती हैं, बाहर जाके कहाँ कर पाएंगी, कहाँ देख पाएंगी, वो घर संभालने, बच्चों को संभालने, खाना पीना टाइम से दे दें, इतना बहुत है। बहुत ज़्यादा बोझ देंगे तो वो दब जाएंगी, कर नहीं पाएंगी। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया जा रहा है ना, इसके साथ बेटियां अपनी उपस्थिति एकदम झंडे गाड़ के दर्ज करवा रही हैं। बाहर निकलने की बात छोड़ दीजिए, वो जा रही हैं अब अंतरिक्ष तक, है ना। तो सिर्फ यही कि एक परिभाषा के आधार पर उन्हें परिभाषित कर देना, इस अवधारणा को बदलना होगा। जो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, हमें उनका साथ देना होगा, क्योंकि साथ तो ज़रूरी है ना समाज में आगे के चलने के लिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अकेले कहाँ कुछ कर पाएगा। अगर पूरा समाज किसी के विरोध में उतर जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा, नामुमकिन नहीं होगा, मुश्किल ज़रूर होगा। तो अपनी बेटियों का, अपने घर में अपनी बहनों का, अपनी माँ का ज़रूर साथ दीजिए, उनके सहायक बनिए, उनका उनके रास्ते का जो एक रोड़ा नहीं होता है कि अवरोधक, वो नहीं बनना है, साथ देना है उनके आगे बढ़ने का, उनके जीवन जीने का, सही मायने में अपने पंखों को फैला करके आकाश में उड़ने देने का। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और सुनते हैं ये अगला संगीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म का खामोशी का गीत आज मैं ऊपर, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू के युगल स्वरों में। इसकी रचना की थी मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। दोस्तों अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। श्रोताओं एक सूचना सुनिए, 29 सितंबर को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में आपकी थाली से पोषण की खुशहाली विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ प्रत्यक्षा कटियार। श्रोतागण, मोटापा, खून की कमी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों में उचित आहार विहार के बारे में अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए दोपहर 1:15 से 2 तक फोन नंबर जिसका कोड है 0532 और दूरभाष नंबर है 2970462 और 2423649 पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर पुनः सुन लीजिए, कोड है 0532 और दूरभाष नंबर है 2970462 और 2423649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। ध्यान रखें, व्हाट्सएप पर सवाल के पहले हेलो पनघट अवश्य लिखें। सूचना समाप्त हुई।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज

0: में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया, उन्होंने राम जन्म भूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। यह अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani today, Mr. Modi said that India is set to mark the 10th anniversary of the surgical strike tomorrow. He said the world was astonished to see the manner in which brave Indian soldiers crossed the line of control LOC to take action against terrorism. Prime Minister Modi said the surgical strike was India's decisive response to the long-standing pain the nation had endured due to terrorist attacks. He stated that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
0: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: On the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and UTs. Data from over 32 crore families has already been recorded. Mr. Modi emphasized that the census is a national responsibility for all. He added that the facility to self-register census details is very convenient, and people can register information about themselves and their families directly from their mobile phones. Along with Hindi, this facility is available in 16 languages. The Prime Minister said the entire process takes about 15 to 20 minutes. Prime Minister Modi noted that India began the year celebrating national pride through the Somnath Swabhiman Parv. He highlighted that despite Mahmud of Ghazni first demolishing the coastal Somnath temple a millennium ago in 1026 AD,

0: it still stands grandly, symbolizing India's immortality. Mr. Modi linked this to the Modera Sun Temple in Gujarat, which Ghazni also attacked and destroyed in 1026 AD, just a year after King Bhimdev I built it in 1025 AD. However, King Bhimdev I confronted Ghazni's forces and swiftly rebuilt the Modera Temple. Mr. Modi opined that it is because of this very resilience that the Somnath Temple too was repeatedly rebuilt after multiple destructions, including later devastation by Alauddin Khilji, emphasizing that Indians view the sun as a source of light, energy, science and continuity rather than just an architectural deity. The PM shared that Modera has evolved into the country's first Surya Gram solar village, running entirely on solar energy as a model of sustainability. Inviting people to witness this heritage, the Prime Minister also highlighted the Modera Dance Festival, which showcases India's classical dances every January following Makar Sankranti. The Prime Minister also mentioned Mahatma Gandhi's birth anniversary, which will be celebrated on the 2nd of October. He said cleanliness is one of the many guiding principles for life given by Bapu. Mr. Modi cited several examples of initiatives to maintain cleanliness by young people across the country. Concluding his address, Mr. Modi urged listeners to keep sharing inspiring stories. He added that learning about these efforts through Mann Ki Baat inspires people in other parts of the country as well. Defence Minister Rajnath Singh said that India is building capabilities, keeping in mind the nature of warfare over the next 10, 20 and 25 years as it moves towards creating self-reliant and future-oriented defence ecosystem. He made these remarks while speaking at an event today organised by Media House in New Delhi. Mr. Singh emphasized that the country should not merely focus on importing technology, but should strive to define and develop defense technologies. In Nepal, 10 people are missing after an avalanche struck the base camp of Himlung Himal in western part of the country near the Tibet border, said an expedition organizers today. A weather system over the Bay of Bengal has brought heavy snow to the mountains and persistent rain to Nepal's hills and plains, prompting tourism authorities to urge trackers and climbers to suspend activities. In men's cricket, first one international of the three-match series between India and West Indies will be played today at the Greenfield International Stadium in Thiruvananthapuram at 2 p.m. IST. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी लखनऊ है इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हिंदुस्तानी फौज की सर्जिकल स्ट्राइक ने हिंदुस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी पॉलिसी की दुनिया के लिए एक नई मिसाल कायम की। आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क कल 28 सितंबर को स्ट्राइक की 10वीं सालगिरह मनाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क तवील अरसे से दहशतगर्दाना हमलों की वजह से नुकसान उठा रहा था और सर्जिकल स्ट्राइक फैसला कुन रद्देअमल था। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता एक दहाई में बालाकोट फिजाई हमले से लेकर ऑपरेशन सिंध तक हिंदुस्तान ने 12 ये पैगाम दिया है कि दहशतगर्दाना हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मर्दमशुमारी के बारे में वजीर आजम ने कहा कि इसका पहला मरहला तकरीबन तमाम रियासतों में मुकम्मल हो चुका है और 320 मिलियन से ज्यादा खानदानों का डेटा रिकॉर्ड किया गया है। उन्होंने वाजे किया कि मर्दमशुमारी हर किसी की कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा,
2: अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है se.census.gov.in।
1: वजीर आजम ने कहा कि आज विश्व हिंदू परिषद के साबिक बैनुल अक्वामी सदर अशोक सिंघल की 100वीं यौमे पैदाइश है। उन्होंने कहा कि जनाब सिंघल ने अपनी पूरी जिंदगी सकाफत, समाज और कौम के लिए वक्फ कर दी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने अयोध्या में अजीमुशान मंदिर, राम जन्मभूमि तहरीक को जो सिमत और तवानाई दी, ये उसका नतीजा है। वजीर आजम ने कहा कि आंवला से हम सब वाकिफ हैं। हमारे बुजुर्ग नस्ल दर नस्ल आंवला की खूबी के बारे में बताते आ रहे हैं। वजीर आजम ने कहा,
2: साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर

0: लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही।
1: वजीर आजम ने कहा कि ऐसा ही एक ग्रुप सावित्री फूले सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जहां से वाबस्ता खवातीन आंवला से कैंडी, जैम और जूस बना रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमारे मुल्क का हर खित्ता कोई ना कोई खासियत रखता है, एक जिले एक मसनूआत इन खसूसियात को फरोग देने की मुहिम है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे देहात और छोटे शहरों की शिनाख्त सिर्फ मकामी बाजार तक महदूद ना रहे, ये मुल्क के दीगर हिस्सों और आलमी मंडियों तक पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल मुहिम को तकवीत मिलती है और मुल्क को खुद निसार बनने तरगीब मिलती है। उन्होंने कहा कि हमें आने वाले त्योहारों में वोकल फॉर लोकल के मंत्र को नहीं भूलना चाहिए। SIR पर अपोजिशन के इतराजात के दरमियान वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकारी रिहायशगाह पर मुनकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि SIR को लेकर अबहम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वजीर आला ने कहा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर पहले ही मीडिया से खिताब कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन के कामकाज और SIR को वाजे कर चुके हैं। लापता वोटर्स और फॉर्म 6 के हवाले से भी सूरत हाल वाजे कर दी गई है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुकदमे में डाला जा रहा है। वजीर आला के मुताबिक जिन वोटर्स के नाम SIR से खारिज किए गए थे, उन्हें फॉर्म भरने का काफी मौका दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉर्म 6 के हवाले से इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को बरकरार रखा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सियासी फायदे के लिए आईनी इदारों पर सवाल उठाने का यह रुझान जमहूरी इकदार और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत को कमजोर करता है। उत्तर प्रदेश के कई जिला में गुज़िश्ता चंद दिनों से मूसलाधार बारिश से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि बारिश से मुतल्लिका वाकयात में अब तक 15 अफराद के हलाक होने की इतला है।
2: जुमेरात से शुरू हुई शदीद बारिश रियासत के कई खित्तों में मुसलसल जारी है। राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत कई जिलों में बारिश के चलते लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। रियासत के 63 जिलों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके चलते जगह जगह पानी भर गया है। राहत कमिश्नर डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में मामूल से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। शदीद बारिश की वजह से दर्जाए हरारत में भी काफी कमी आई है और फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और मशरकी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: मरकजी वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि तमाम पब्लिक सेक्टर बैंक और इलाकाई देही बैंक आज इतवार को सार्फीन की सहूलत के लिए खुले हैं। यह फैसला बैंक मुलाजमीन की तंजीमों के मुश्तरक प्लेटफॉर्म यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से 28 से 30 सितंबर तक तजवीज करदा मुलगीर हड़ताल के पेश नजर लिया गया है। और आज सयाहत का आलमी दिन है। इस साल का थीम डिजिटल एजेंडा और मसनूई जहानत बराए सयाहत को असर नौ तश्कील देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो अनुरोध। प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: बांका जलालपुर पोस्ट मऊ है मैं, जिला प्रयागराज, सुरेंद्र यादव बोल रहा हूँ मैं। नमस्कार।
0: नमस्कार सुरेंद्र जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हीरो नंबर वन का इनका सुना दीजिए, टाइटल
0: सॉन्ग हीरो नंबर वन से। तो हीरो नंबर वन आपको पसंद है, यानी गोविंदा जी की बात हो रही है इस समय। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गाना हीरो नंबर वन फिल्म से।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: ये सुखराम सिंह मराई बोल रहा हूँ, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से।
0: जी सुखराम जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, दो दिन में ढल जाएगा, इसी को सुनना था मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे। राजेश खन्ना के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है, साथ में मुमताज भी थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो भाई आपकी पसंद को तो जरूर सुनवाएंगे, उससे पहले ये जानना चाहते हैं आप काम क्या करते हैं?
1: जी मैम, दिव्यांग हूँ मैम, तो घर में ही छोटा सा दुकान चलाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा तो ये हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी प्रयागराज के आपको कैसे लगते हैं?
1: इसका फोन इन कार्यक्रम ज्यादा से सुनता हूँ तो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, फोन इन कार्यक्रम आपको बेहद पसंद है।
1: हाँ जी, जैसे कि बात श्रोता लगते हैं तो उनका बातचीत।

0: उनके गाने फरमाए, बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुखराम जी, और आपने फरमाइश की है जिस गीत की उसे हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते जी।
0: रेखा यादव कुकुरहारी प्रयागराज।
1: जी रेखा जी, बताइए कौन सा गीत सुनेंगी?
0: खतरों का खिलाड़ी फिल्म का नाम है
1: जी,
0: और गाने का बोल रहे तुमसे बना मेरा जीवन कभी हमसे जुदा होना कभी हम।
1: भाई रेखा जी ने इस गीत की फरमाइश की है, तो रेखा जी जल्दी से नाम भी ले लीजिए।
0: मैम आप और सभी श्रोता को
1: जी,
0: और हमारे बच्चे आयुष अनन्या
1: जी जी,
0: और हमारे नाना नानी,
1: तो आपको सुनवाते हैं खतरों के खिलाड़ी फिल्म का ये
0: गाना। नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।

0: रंगदे तुम्हारे देवा तो राजे की देते है दुआ रंगदे तुम्हारे देवा।
1: अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में खूबसूरत सा गाना
2: जी बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो अनुरोध कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। हेलो, अपना नाम बताइए।
1: पोस्ट हंडिया, तहसील हंडिया, थाना हंडिया, गांव मुगरा, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं मैम। नमस्कार।
0: नमस्कार प्रेमचंद जी, बताइए आज कौन से गीत की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है दिलवाले।
0: दिलवाले, कौन सी वाली दिलवाले?
1: नई, शाहरुख खान और काजोल, वरुण धवन, कृति सरवन वाली।
0: अच्छा जी, उसका कौन सा गाना है?
1: और गाने के बोल हैं, दुनिया भुला

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम।
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर बुलरहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर भोजपुर, बाबा घुसननाथ धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं मैडम
0: जी। प्रभाकर जी, कौन सा गीत सुनेंगे
1: मैडम जी? फिल्म का नाम है लम्हे
0: जी।
1: गीत के बोल हैं, मोरनी बागों में बोले आज जा।
0: श्री देवी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना प्रभाकर जी ने पसंद किया है, तो प्रभाकर जी सुनवाएं आपको ये पसंद का गाना। जी जी बिल्कुल, तो सुनिए अपनी पसंद का लम्हे फिल्म का गीत। क्या कहना चाह रहे हैं प्रभाकर जी?
1: सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा, तो सारे कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी प्रयागराज के आप?
1: हाँ मैडम जी, हमारे यहाँ चलता रहता है ट्रांजिस्टर।
0: अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है,
1: अच्छा प्रोग्राम लगता है मैडम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, और हम सुनवाते हैं लम्हे फिल्म का ये गाना।
1: नमस्ते मैडम।

0: सरोजी,
1: जी काजल सरोज जी, बताइए कौन सा गाना सुनेंगी?
0: मैम
1: गाने के बोल याद हैं आपको?
0: जी मैम।
1: बताइए बोल क्या है उसके? अच्छा जी, तो चलिए काजल सरोज जी ने जिस गीत की फरमाइश की है गोपी किशन फिल्म की, उसे सुनवाया जाए। तो नाम तो नहीं लेने आपने किसी के?
0: भाई जी को नाम लेना चाहती
1: हूँ। जी बोलिए काजल जी।
0: सूरज सरोज, शेखर सरोज।
1: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो अनुरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: नमस्कार दीदी, मैं धीरज रबारी बात कर रहा हूँ गुजरात से।
0: जी बहुत बहुत स्वागत
1: जी। और मुझे गाना सुनना है फिल्म कभी कभी का।
0: जी
1: शीर्षक गाना है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे धीरज जी। आप गुजरात में बैठ के आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम सुनते हैं और हमें कॉल भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जानकर।
1: आपका कार्यक्रम इतना शानदार और लाजवाब होता है तो हमें फोन किए बिना नहीं रह सके, थोड़ा रुक के करते हैं लेकिन फोन जरूर करते हैं। और आपकी सर्वोत्तम होती है और कार्यक्रम भी सुनते हैं
0: जी,
1: हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आप इस तरह से कार्यक्रम सुनते रहिए और आपकी फरमाइशी गानों को हम सुनाते रहेंगे। अभी सुनवाने जा रहे हैं कभी कभी फिल्म का ये गाना।
1: धन्यवाद जी,
0: नमस्कार।

0: अवरोध कार्यक्रम, अपना नाम बताइए।
1: जी मैम नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: जी मैम हम बचन्ने सरोज बोल रहे हैं, ग्राम शुगर तूरी पोस्ट मचेया हरदोपट्टी तहसील कुंडा जिला प्रतापगढ़ से।
0: जी जी बताइए कौन सा गीत सुनेंगे।
1: जी मैम आज हमको गाना सुनना है, फिल्म का नाम है क्या बोलते हैं, फिल्म का नाम मालूम नहीं है बट गाने के बोल मालूम है, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए।
0: जंजीर फिल्म का ये गाना है और आपने पसंद किया है, तो इस गीत को तो हम सुनवाएंगे, लेकिन आप ये पूछना चाहेंगे आपसे कि आपको अपने मित्रों के नाम लेने हैं।
1: जी मैम
0: आपको अपने मित्रों के नाम लेने हैं।
1: जी मैम, जी मैम हम अपने मित्रों का नाम लेना चाहते हैं।
0: जी बताइए।
1: जी मैम हम ब्लाइंड हैं, वैसे घर में ही रहते हैं।
0: जी
1: जी मैम हमारी एक मित्र हैं जिनका नाम है आदरणीय सुनील कुमार यादव, ग्राम सुल्तानपुर के।
0: जी
1: और हमारे एक दोस्त हैं ननकुल्ले सरोज, अर्जुन पटेल, नन्हे भाई पटेल और मुन्ना लाल मौर्या।
0: तो आपको सुनवाने जा रहे हैं पसंद का गीत।
1: जी मैम हमारी हमारी वाइफ है, उनका नाम है करिश्मा।
0: अच्छा जी, तो
1: वो है परस्तम मलकिया के।
0: अच्छा जी, तो वो भी कार्यक्रम सुनती हैं।
1: जी मैम, जी मैम सुनती हैं। ये मैम कब सुनाया जाएगा।
0: हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: EON 11911511, the world number 26 Indian, was unable to match the number 18 Malaysian, who defended his Asian Games title with a commanding straight games victory. In women's singles squash, Anahat Singh also bagged silver as she played the final against Malaysian Sivasankari Subramaniam. Earlier, Ankush Fangal assured India of his first boxing medal at the Games after defeating Tajikistan's Nekruz Salimov 5-0 in the men's 80-kilogram quarterfinal today. India is now on the 11th position in the medals tally with a total of 32 medals, including 4 gold, 14 silver and 14 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says surgical strike and Operation Sindhu demonstrated new example of India's counter-terrorism policy to the world, sending message that terrorist attacks will be met with befitting response. Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program on Akashvani urges people to work together for Nasha Mukti Yuva. Prime Minister urges people to participate in census and use self-enumeration facility, says first phase of census nearly complete. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel flag off country's first LNG power train at Sabarmati. Anahat Singh red alert for heavy to very heavy rainfall issued of Uttarakhand and West Uttar Pradesh for today. And in Asian Games, Anahat Singh bagged a silver. Abhay Singh wins silver in men's singles squash. Boxer Ankush Fangal assures medal. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashvani se dopahar samachar ke saath main Farhat Naz. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926

0: को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
0: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ, यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं। जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
1: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
0: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
0: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए ट्रैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से

0: अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
1: थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिकुलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
3: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मेटरनल मोर्टालिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाएं। इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
2: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने

पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की।

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: जी, आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर लाल पाल और साथियों के स्वर में देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं शोभालाल और साथियों के स्वर में कहरवा।

इसके साथ ही लोकगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में ठीक 3 बजे हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। अगली सभा में शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, हमारे नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की

0: संध्याकालीन सभा। सभा के आरंभ में ग्रामीण बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल। ये आकाशवाणी प्रयागराज है। अब बच्चे सुने अपना कार्यक्रम बाल गोपाल।
1: लखनऊ जय हिंद। हम कहे मोहन भैया।
2: हाँ चंद्र भैया।
1: भैया देखा हो कही जाते ना कि भाई पढ़ाई लिखाई खेलकूद के साथ साथ थोड़ा सा भाई अगर घूमे टहले के मिले ना तो भाई उहू से जो न अपन विकास होत है ना, दिमाग के विकास होत है और ज्ञान जो होता है।
3: भैया हम कहीं देखा हो पहले ही रहा कि भाई घूमे टहरे से का हो, लेकिन अब तो देखा घूमे टहरे में भी संभावना बा।
1: हाँ सही, सही
3: भाई देखा आज तो बड़ा खास दिन बाटे अपने चुन्नू मुन्नू के लिए भाई पर्यटन दिवस बा।
1: हाँ विश्व पर्यटन दिवस।
3: तो हम कहीं भाई देखा पढ़ाई लिखाई जब चल तक चलत रहा था, अब जब छुट्टी परीक्षा के बाद जब छुट्टी हो था ना तो चुन्नू मुन्नू मन हो तो कहूँ चला घूम ही आवा जाए।
1: बिल्कुल भैया।
3: तो भाई देखा पर्यटन उनके मन में भाई एक नई ऊर्जा लेके आवा था। भाई कहूँ भी जात हैं तो हुआ अंदर के भाषा हुआ के संस्कृति रीति रिवाज तरह तरह की चीज भैया देखे के मिला था जो है।
1: बिल्कुल मोहन भैया, उसी उनकर तक ज्ञान तो वर्धन होबे करत है।
3: हाँ।
1: साथे साथे भैया एक तरह से वो कही जाते ना कि रिचार्ज हो जाते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
1: घूम के आए एकदम भैया फिर
3: तरोताजा हो गए बिल्कुल। हाँ तो एक बात यह होगा ना भैया कि ऐसे एक चीज़ ये भी होता है ना कि भाई अपने देश में अपने आसपास में कौन सी चीज़ कहाँ बाटे उसके बारे में जाने का मौका मिला था।
1: बिल्कुल
3: हो थका भाई कि देखा पढ़ाई लिखाई के समय में कौन चीज़ के बारे में और किताब में लिखा बा तो भाई सिर्फ पढ़ के ज्ञान लेता है। हाँ अगर वह चीज़ वह स्थान पर जा के अगर देखा था तो उसे का होता कि वो और अच्छे से जो नहाए ओकर प्रस्तुति बैठ जाता और ओकर प्रस्तुति जो नहाए होता। तो हम कहीं भाई देखा ये घूमने टहरे के भाई एक पर्यटन का तो भाई एक विषय भी बन के वो हो के बाटे और एक हम तो कही थी भाई आगे चल के चुन्नू मुन्नू वगैरह क्षेत्र में काम भी करे चाहिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ
1: जरूर, जरूर।
3: तो भाई एक आर्थिक भी अहमा बड़ी संभावना बाटे। तो हम कही भाई देखा बात बात कही होत रही बोला हम कही आज पर्यटन दिवस बा और यहीं पर जुड़ा भाई देखा आज एक वार्ता बा जाने अपने धरोहरों के बारे में। हाँ मेघना वशिष्ठ बहनी की बात है और पहले चुन्नू मुन्नू सुना दी फिर बातचीत होगी।
1: बिल्कुल भैया सुनाओ।
4: तीन नदियों के संगम पर स्थित प्रयागराज एक बेहद अद्भुत जगह है। प्रयागराज का आध्यात्मिक महत्व जितना अधिक है ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह उतना ही महत्व रखता है। त्रेता युग से पुराणों में प्रयागराज की महिमा का बखान है। मुगल शासन के दौरान अकबर ने प्रयाग के महत्व को महसूस किया और गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर किले के साथ इलाहाबाद नामक एक महत्वपूर्ण शहर का निर्माण किया। इसे ही आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज में ऐसे कई ऐतिहासिक स्थान हैं जो अपना एक अलग महत्व रखते हैं। अगर आप प्रयागराज में हैं तो आपको इन ऐतिहासिक जगहों पर जाना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद पार्क, मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान इसे अल्फ्रेड पार्क के रूप में जाना जाता था। राजकुमार अल्फ्रेड ड्यूक ऑफ एडिनबरा के प्रयागराज आगमन को यादगार बनाने हेतु इसका निर्माण किया गया था। आज इसी पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क या कंपनी गार्डन के रूप में पुकारते हैं। इस पार्क में अष्टकोणीय बैंड स्टैंड है। यहाँ अंग्रेजी सेना का बैंड बजाया जाता था। इस बैंड स्टैंड के इटालियन संगमरमर की बनी स्मारिका के नीचे पहले महारानी विक्टोरिया की भव्य मूर्ति थी जिसे 1957 में हटा दिया गया। इसी पार्क में उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और बड़ी ही जीवंत गॉथिक शैली में बनी पब्लिक लाइब्रेरी भी है। यहाँ ब्रिटिश युग के महत्वपूर्ण संसदीय कागजात रखे हुए हैं। पार्क के अंदर ही 1931 में इलाहाबाद महापालिका द्वारा स्थापित संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अपनी काफी वस्तुएं भेंट की थी। यह लाइब्रेरी पूरे राज्य की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी में 1,25,000 से अधिक पुस्तकों, कई अरबी मैन्युस्क्रिप्ट्स और कई सदियों पुराने प्रकाशनों और समाचार पत्रों का एक बेहतरीन कलेक्शन है। आनंद भवन, आनंद भवन जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का पूर्व निवास स्थल था, ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इससे संबंधित सभी कलाकृतियों और लेखन को सहेज कर इसी भवन पर प्रदर्शन के लिए रखा गया।

गया है। यह एक संग्रहालय है जहां प्रवेश करते ही आपके सामने इतिहास के पन्ने खुल जाएंगे जिनमें भारतीयों और विदेशियों के मध्य हुए संघर्ष की कहानियां बयां करने के लिए काफी साक्ष्य मौजूद हैं। तारामंडल। आनंद भवन के बगल में ही तारामंडल है। यहाँ पर आप चंद्रमा का मॉडल देख सकते हैं। यहाँ आकर आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि आप वास्तव में चंद्रमा और जुपिटर की सैर कर रहे हैं। संग्रहालय को जवाहर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का किला या इलाहाबाद किला। मुगल बादशाह अकबर के समय में निर्मित और अचंभित कर देने वाली कई वास्तुशिल्पों में से एक है इलाहाबाद किला। इसे मुगल साम्राज्य का सबसे विशाल किला माना जाता है। यह राजसी किला आज भी संगम किनारे बड़ी शान से खड़ा है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 1583 ईस्वी में किया गया था। इसमें तीन शानदार गलियारे हैं जो ऊंची ऊंची मीनारों से घिरे हुए हैं। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में इस जगह का दौरा किया था और वे इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यहाँ किले का निर्माण करवाया और इसका नाम इलाहाबाद या देवस्थान रखा। किला परिसर में जोधाबाई नामक एक महल स्थित है जो हिंदू और इस्लामी वास्तुकला शैलियों का अद्भुत संगम है। अशोक स्तंभ। प्रयागराज किले के अंदर 10.5 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ उन तीन आकर्षणों में से एक है जिन्हें पर्यटकों को देखने की अनुमति है। 232 ईसा पूर्व में निर्मित इस स्तंभ लेखों से यह पुष्टि होती है कि प्रयागराज शहर ने बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह भव्य स्तंभ पॉलिश किए हुए बलुआ पत्थर से बनी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यह अशोक स्तंभ प्राचीन कौशाम्बी में गढ़ा हुआ था जिसे बाद में वहां से प्रयागराज लाया गया। अशोक के लेखों के अतिरिक्त इस स्तंभ पर गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त और मुगल बादशाह जहांगीर के स्तंभ लेख भी हैं। हालांकि यह स्तंभ पर्यटकों के देखने के लिए सुलभ है लेकिन इसे देखने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। खुसरो बाग। प्रयागराज स्थित इस विशाल बाग में खुसरो, उसकी बहन और उनकी राजपूत माँ का मकबरा स्थित है। खुसरो सम्राट जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे। इस बाग का संबंध भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी है। प्रयागराज शहर के पश्चिम छोर पर स्थित खुसरो बाग मुगलकालीन इतिहास की एक अमिट धरोहर है। इस बाग को सम्राट जहांगीर ने अपनी आरामगाह बनाया था। जहांगीर के पुत्र खुसरो के नाम पर ही इसका नाम खुसरो बाग पड़ा। इस बाग में तीन मकबरे हैं। पहला मकबरा शहजादा खुसरो का है। खुसरो बाग में अमरूद के कई बगीचे हैं। यहाँ के अमरूदों को विदेश में निर्यात किया जाता है और यहाँ के मकबरे काव्य और कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देश का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो कि 1866 में आगरा में अवस्थित हुआ के 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित होने पर आगरा के तीन विख्यात एडवोकेट पंडित नंदलाल नेहरू, पंडित अयोध्यानाथ और मुंशी हनुमान प्रसाद भी इलाहाबाद आए और विधिक व्यवसाय की नींव डाली। मोतीलाल नेहरू इन्हीं पंडित नंदलाल नेहरू जी के बड़े भाई थे। कानपुर में वकालत आरंभ करने के बाद 1886 में मोतीलाल नेहरू वकालत करने इलाहाबाद चले आए और तभी से इलाहाबाद और नेहरू परिवार का एक अटूट रिश्ता आरंभ हुआ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सर सुंदरलाल, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू आदि ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का प्रथम सत्र समारोह इलाहाबाद के थॉर्न हिल मेमोरियल हॉल में 8 जनवरी 1886 को आयोजित किया गया था। कुंभ मेला। संगम तट पर लगने वाले कुंभ मेले के बिना प्रयागराज का इतिहास अधूरा है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। यह मेला अपने आप में एक लघु भारत का दर्शन करने के समान है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष लगने वाले माघ स्नान और कल्पवास का भी

0: आध्यात्मिक महत्व है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार माघ मास में 3,10,000 तीर्थ प्रयाग में एकत्र होते हैं और विधि विधान से यहाँ ध्यान और कल्पवास करने से मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। कौशाम्बी किसी समय प्रयाग का एक विशिष्ट अंग रहा, लेकिन अब एक पृथक जनपद के रूप में अवस्थित कौशाम्बी अपनी ही एक अलग इतिहास और पहचान रखता है। विभिन्न कालों में धर्म, साहित्य, व्यापार और राजनीति का केंद्र बिंदु रहे कौशाम्बी की स्थापना उद्दीन ने की थी। यहाँ 5वीं सदी के बौद्ध स्तूप और भिक्षु गृह हैं। वासव दत्ता के प्रेमी उद्यन की यह राजधानी थी। यहाँ की खुदाई से महाभारत काल की ऐतिहासिकता का भी पता लगता है। इलाहाबाद की ऐतिहासिकता अपने आप में अनूठी है। इस नगर का वर्णन सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि वेदों, पुराणों और उपनिषदों में भी बड़ी महत्वता के साथ किया गया है। यह सिर्फ नगर ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्था का केंद्र भी है। ऐसा माना जाता है कि प्रयाग की धरती पर प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। जैसा कि कहा गया है, प्रयागस्य पविषाद्व पापम नश्यति तक्षणात्।
1: हाँ भैया, देखा हो प्रयागराज में जौन तरह तरह के धरोहर बाटे ना, भाई देखा ओकर जौन है विधिवत बहनी जौन है पूरा फरियाई के बता दी।
2: बिल्कुल भाई, हम कहीं देखा इतनी बढ़िया जानकारी दे, निश्चय रूप से भाई हम तो कहीं भैया चैनल जौन है जिसे भाई अब अपने चुन मुन्नु है।
1: हाँ
2: भाई थोड़ा भी मौका मिले तो एक दिन अगर एक भी जगह पे जाए कर अगर अच्छा से अध्ययन करें करें तो भाई देखा उसे एक तरीके से उनके जो अंदर के बौद्धिक विकास बटे तो
1: बिल्कुल,
2: ज्ञानार्जन की भी क्षमता भी जो ना है तो एक भाई सार्थकता यह बाटे कि अगर पहले बाहर नहीं जाए पर तो कम से कम जो स्थानीय स्तर पे अपने चीजें यहाँ उन्हों से रूबरू हो चाहिए भैया। जो
1: कभो कभो देखा मोहन न कि अपने आसे पास भैया ऐसा धरोहर होत न ऐसा जानकारी चीज होते है कि लोग वो पे ध्यान ना देते, दूर दूर चीज है तो बहुत ध्यान देते हैं लेकिन अपने नजदीक के ढेर ऐसा धरोहर बाटी ओकरे विषय में ना देख पाते हैं ना जान पाते हैं तो भाई देखा ओका समझ बूझ के आसपास के जौन भी धरोहर बा ओकरे विषय में जाए के जानकारी ले जाए।
2: बिल्कुल भाई, एक बात यह कहा भाई हम कहीं देखा पिछले 2-3 दिन से ना जे तरह से बारिश भैया भाई हम तो कई दिनों में भैया जड़ाई लग रहा है
1: काहे ना काहे काहे ना हो
2: तो भाई से मैं भाई देखा धूपो आज दूसरी मीटिंग से भैया निकली बा तो भाई जब मौसम इस तरह से जब बदला था तो भाई देखा स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें भाई तुरंत परिवर्तित होती
1: है। बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल।
2: और अपने चुनो मुन्नो भैया वर्धवासी परीक्षा भी भैया शुरू होती है तो ऐसे में जरूरी बात है कि भाई शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे।
1: बिल्कुल भैया, ये जो कहना कि भाई मोहन बदलत मौसम जोन बाटे ने भाई वो आगे आवे वाले समय में ठंडी भी आए, हम समझते है कि अगर 4-6 दिन ऐसे और बना रह जाए तो समझा कि ठंडी की शुरुआत हुई है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो भाई ऐसा स्थिति में जब दुर्दशा मौसम बाटे तो चुन्नू मुन्नू के विशेष भाई अलर्ट रहे की जरूरत बाटे कि भैया वो अपन कपड़ा जौन है वो सही सलामत सही से पहने जोने से भैया उनका कोनो तरह के दुर्दशा मौसम के शरीर पर प्रभाव न पड़े।
2: बिल्कुल भाई, एक और कहा भाई हम कही भाई देखा यही समय भाई मच्छर मक्खी के भी तमाम तरह के
1: बहुत बहुत बहुत भैया
2: तो उसे भी बचे के बाद आसपास भाई साफ सफाई के विशेष ध्यान रखे बाटे जैसे भाई मच्छर जनित जौन बीमारी यहाँ मलेरिया है डेंगू है ऐसे भी दूर रहे जौन है। हम तो भाई इस तरह से जब बीमारी होते है ना तो भाई पहले पता नहीं लागत लेकिन अंदर अंदर शरीर पूरा तोड़ ही देते।
1: बिल्कुल भैया, और विशेष का जौन भाई नदी के किनारे वाले क्षेत्र बाटे वहाँ तो विशेष तौर पर सजग रहा की जरूरत होते कहे भाई जैसे पानी घटे न तो भाई मच्छरन का प्रकोप बढ़ जाता है।
2: बिल्कुल,
1: और जब
2: बिल्कुल।
1: मच्छर ज्यादा हुई भैया तो जब उन्हें बीमारी बताया ना कि मलेरिया बा डेंगू बा एक अलावा मस्तिष्क ज्वर बाटे इस तरह तरह के भाई बीमारी अपन जवन है एक तरह से प्रसार कर थी।
2: बिल्कुल, तो बिल्कुल।
1: जरूरत है बात को कि चेते रहे चले
2: हाँ? भाई हम कहीं देखा अपन चुन्नू मुन्नू है तरह के भाई छोटी छोटी जो सावधानी पर बरतें और स्वस्थ रहें अच्छे से लिखे पढ़े करें। अब समय होता है विदा लेने जाए तो कह दे लो
1: जय हिंद।
3: अभी ग्रामीण बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल गोपाल, प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

0: ये आकाशवाणी प्रयागराज है। कुछ ही पलों में युवा साथी से सुनेंगे युवा वाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: अब युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी।

कहते हैं दुनिया एक किताब है और जो यात्रा नहीं करते वे उसका एक पन्ना नहीं पढ़ पाते। हर साल 21 सितंबर को हम मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का आपके शो युववाणी में, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए ढेर सारी बातें और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे विश्व पर्यटन दिवस की, और जैसे कि हमारे इससे पहले वाले प्रोग्राम में भी हमारे कुछ साथी आपको बता रहे थे कि पर्यटन कितना महत्वपूर्ण है हमारे छोटे मोटे दोस्तों को, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि पर्यटन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी बात आती है घूमने फिरने की तो हमारे मन में एक अलग सी खुशी उमड़ पड़ती है। लगता है कि दुनिया देखने का बस यही वक्त है। तो बिल्कुल, दुनिया देखना भी ज़रूरी है और उसे जानना भी ज़रूरी है। पर्यटन सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों, पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह घूमने का नाम नहीं है, बल्कि ये अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं, खान पान और परंपराओं को करीब से जानने का एक खूबसूरत माध्यम है। जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं ना दोस्तों, तो सिर्फ वहाँ की खूबसूरत तस्वीरें नहीं लेते, वहाँ की यादें हम अपने साथ लेते हैं, वहाँ की कहानियाँ हम अपने साथ लेते हैं, नए अनुभव, नए नज़रिए लेकर अपने साथ लौटते हैं। और आज के युवाओं के लिए तो ट्रैवलिंग सीखने का भी एक बहुत शानदार तरीका है। कभी पहाड़ों की शांति, कभी समुद्र की लहरें, किसी ऐतिहासिक शहर की गलियाँ और कभी किसी छोटे से गाँव की सादगी। हर जगह हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। लेकिन पर्यटन का मतलब सिर्फ घूमना नहीं होता, जिम्मेदारी से भी घूमना होता है। जिस जगह की खूबसूरती हमें इतना आकर्षित कर रही है, उसे साफ रखना, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना और प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इस पर्यटन दिवस हम क्यों ना अगली ट्रिप जो प्लान करें उससे थोड़ा जिम्मेदारी से प्लान करें, और घूमने के साथ साथ वहाँ की यादें, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छा अनुभव अपने साथ लेके आएँ, ना कि सिर्फ बस ऐसे ही सैर सपाटा करके चले आएँ। क्योंकि सफ़र का असली मज़ा सिर्फ मंजिल तक पहुँचने में नहीं होता, बल्कि रास्ते में मिलने वाली एक नई दुनिया, उसे देखने का, समझने का मौका भी मिलता है। तो अभी तो हमने बात की पर्यटन की, लेकिन दोस्तों, आज की ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है ना, रंगीन भी है और थोड़ी सी उलझी हुई भी है। सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशन, मैसेज, सोशल मीडिया और ना जाने क्या क्या हमारे सामने होता है, और ऊपर से ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, लेकिन थकना मना है। किसी को कॉलेज पहुंचना है, किसी को ऑफिस पहुंचना है, किसी को एग्जाम की तैयारी करनी है, तो कोई अपने करियर को लेकर नए नए रास्ते तलाश रहा है। लेकिन इस तेज रफ्तार भरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात भी है दोस्तों, कि आज हमारे पास अपने सपनों को तलाशने के जो कई सारे मौके हमारे सामने हैं, हम कई तरफ जा सकते हैं, कई सारे अपॉर्चुनिटीज़

वो देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। आज अगर आपको गिटार बजाना सीखना है तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे। गाना सीखना है तो दुनिया भर के कलाकारों को हम सुन सकते हैं। पेंटिंग, फोटोग्राफी, डांस, थिएटर, लेखनी और कविता, फिल्म मेकिंग, डिजाइनिंग, न जाने कितनी सारी कला आज हमारे लिए सीखने के लिए कितनी आसान हो चुकी है। पहले जिस कला को हम उतना मूल्यवान नहीं समझते थे, वो आज कितनी वैल्यूएबल हो गई है हमारी सोसाइटी में। ये भी देखने वाली बात है कि हम कला की कितनी कद्र करने लगे हैं। और सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छी जगह है जहां हम अपने हुनर को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसमें अपने चैलेंजेस होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे सामने होते हैं। इस तरीके से हमें अपना कंटेंट फ़ोन के लिए रिकॉर्ड करना होता है, सोशल मीडिया के लिए रिकॉर्ड करना होता है कि लोग उसे सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे समझें और उसे सराहें और उससे कुछ सीखें। आज कोई भी अपने कमरे में बैठकर गाना रिकॉर्ड कर सकता है, कोई भी अपनी कविता हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, कोई भी अपनी पेंटिंग किसी डिजिटल गैलरी में पहुंचा सकता है, और कोई भी अपने डांस वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। यानी आज का दौर सिर्फ ये नहीं पूछता कि आप क्या पढ़ते हैं बल्कि ये भी पूछता है कि आप क्या-क्या जानते हैं। लेकिन दोस्तों, हर खूबसूरत चीज़ के साथ कुछ चुनौतियाँ भी तो आती हैं। आज हम कई बार अपनी पसंद को करियर बनाने से डरते हैं। मन में सवाल आता है, क्या इससे कमाई हो पाएगी? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? और कभी-कभी हम अपने पैशन को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि हमें लगता है ये तो प्रैक्टिकल सल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि इससे घर तो नहीं चलेगा ना। लेकिन शायद हमें पैशन और प्रोफेशन को एक दूसरे का अपोजिट समझना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी सपना सिर्फ प्रोफेशन नहीं होता। उसके पीछे मेहनत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, लगातार सीखने की ललक चाहिए और अपने टैलेंट को स्किल में बदलने की एक जो ललक होती है, एक जो आग होती है, वो होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, उसे जानेंगे नहीं, उसे एक्सप्लोर नहीं करेंगे और उसे उस स्टेज तक नहीं ले जा पाएंगे जहाँ पे लोग हमारी क्रिएटिविटी से कनेक्ट कर सकें, उसे उतनी वैल्यू दे सकें और उसे सराह सकें, तब तक शायद वो मेहनत किसी लायक नहीं होगी। तो आप अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने से मत डरिए। उस पे मेहनत कीजिए, उस पे लगन लगाइए और एक दिन हो सकता है आपके टैलेंट को लोग समझेंगे, जानेंगे और आपके हुनर को सलाम भी करेंगे। तो दोस्तों, आज है संडे। संडे को हमेशा मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आती हूँ, और जैसा कि हम कहते हैं कि हम लेकर आते हैं इन्फोटेनमेंट, तो इन्फॉर्मेशन हो गई, अब है एंटरटेनमेंट की बारी।

तो दोस्तों, गीत के बाद स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ साहित्य की, कुछ संगीत की और कुछ कला की। कहते हैं, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। यानी जिसके जीवन में साहित्य संगीत और कला का स्पर्श नहीं, उसका जीवन बिना पूंछ और सींग वाले पशु के समान माना गया है। थोड़ा कड़ा है ये कथन, लेकिन इसके पीछे एक खूबसूरत विचार भी है दोस्तों। कला सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कला इंसान को इंसान बनाती है। और आज हम बात कर रहे हैं इसी इंटरेस्टिंग विषय पे, जिसको हम कहेंगे संगीत कला और रचनात्मकता, पैशन टू प्रोफेशन। हम सब के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है दोस्तों। किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को स्केच बनाना अच्छा लगता है, किसी को कैमरे के पीछे रहना पसंद है और किसी को स्टेज पे परफॉर्म करना पसंद है। और कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन सा हुनर कैद है। बचपन में हम कितनी आसानी से चीज़ों को पसंद कर लेते थे। कोई बच्चा पूरे दिन गाना गाता रहता था, उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी आवाज़ कैसी है। हर कॉपी के पन्ने में वो किसी तरीके से कोई ना कोई ड्राइंग बना रहा होता था, घर में डांस करता रहता था। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हमारे आसपास कई सारे सवाल घूमने लगते हैं, इसे करियर कैसे बनाया जाए। और यही कई बार पैशन पीछे छूटता जाता है, जो हमारे अंदर का जो कलाकार होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पीछे रह जाता है। आज का समय कुछ मायने में अलग हो गया है दोस्तों। आज कला को प्रोफेशन बनाने के रास्ते पहले से ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमें पता है कि आज जिस चीज़ को हम अपना पैशन समझते हैं, वो हमारे लिए प्रोफेशन बन सकता है। और स्टार्टिंग में मैं इसी बारे में बात कर रही थी। एक सिंगर के लिए सिर्फ फिल्म में गाना गाना ही एक रास्ता नहीं है। आज लाइव परफॉर्मेंसेज होते हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिक होता है, म्यूजिक प्रोडक्शन है, टीचिंग है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं।

जहाँ हम अपनी कला को दूसरों के सामने रख सकते हैं। एक राइटर के लिए सिर्फ किताब लिखना ही एक रास्ता नहीं रह गया है। कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडवर्टाइजिंग और स्टोरी टेलिंग, जर्नलिज्म जैसे कई क्षेत्र हैं अब उसके सामने। एक डांसर के लिए स्टेज परफॉर्मेंस के साथ अब आ गए हैं कई सारे ऑप्शंस, जैसे कि कोरियोग्राफी, टीचिंग, वर्कशॉप्स और डिजिटल कंटेंट। एक फोटोग्राफर के लिए फैशन, वेडिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रेवल, प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसे कई रास्ते आ गए हैं। और आज कला और करियर

कंटेंट। एक फोटोग्राफर के लिए फैशन, वेडिंग, एडवर्टाइजिंग, ट्रेवल, प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसे कई रास्ते आ गए हैं, और आज कला और करियर के बीच की जो दूरी थी वो कम हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टैलेंट होना ही सफलता का एक रास्ता मिल जाना है। मान लीजिए किसी को बहुत अच्छा गाना गाना आता है, लेकिन अगर वो रियाज नहीं करता, अपनी आवाज़ पर काम नहीं करता, नई चीज़ों को सीखने की कोशिश नहीं करता, तो केवल वो टैलेंट काफ़ी नहीं है उसके लिए। इसी तरह अगर किसी को लिखना पसंद है लेकिन उसे लगातार पढ़ने की आदत नहीं है, अलग अलग विषयों को समझने की उसके अंदर वो हुनर नहीं है, अपनी भाषा और अपने एक्सप्रेशन पर काम करने की उसकी आदत नहीं है, तो उसका वो लिखना व्यर्थ हो जाएगा। यानी पैशन हमें तभी आगे ले जाने के लिए उसका वो एक अवसर मिलेगा, उसे प्रोफेशन बनाने का तभी उस पर हमें रास्ता मिलेगा जब हम उस पर प्रैक्टिस करने की आदत डालेंगे, जब हम उसे तराशने की कोशिश करेंगे। कहते हैं एक सुंदर मूर्ति तभी बनती है जब मूर्तिकार उसमें लगन लगाता है, उस पर मेहनत करता है और उसकी जो बारीकियां होती हैं, उसके जो एंगल्स होते हैं, उस पर काम करता है। तो हर पैशन को प्रोफेशन तक ले जाने के जो मंजिल है वो हमारे प्रैक्टिस के रास्ते से ही होके गुजरती है। और शायद यही सबसे ज़रूरी बात है, अपने प्रोफेशन की ओर जाने के लिए उसको सीरियस लेना पड़ता है। अगर कोई चीज़ है जो हमें सच में पसंद है तो उसके लिए ये मेरा शौक है कहकर छोड़ नहीं देना होता है, उसे सीखना होता है, उसे बेहतर बनाने के लिए काम करना होता है, छोटे स्तर से शुरुआत करनी होती है, क्योंकि हर प्रोफेशनल कभी ना कभी बिगनर हुआ करता था। जिस सिंगर को आज हम बड़े पर्दे पे गाते हुए देखते हैं, कभी ना कभी वो एक छोटा सा प्रैक्टिशनर हुआ करता था, कभी वो अपने कमरे में रियाज करता था, कभी बाथरूम सिंगर हुआ करता था, और आज वो हमें स्टेज पे गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने बड़े बड़े राइटर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है क्या ये जन्म से ही इतना खूबसूरत लिखना जानते थे, क्या इन्हें शब्दों का खेल हमेशा से आता था? तो नहीं दोस्तों, उन्होंने शब्दों पर काम किया, उन्होंने भाषा विज्ञान को समझा, उन्होंने उसके बारे में पढ़ा, उस इमोशंस को समझने की कोशिश की जो लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी था, और तब वो बने एक बेहतर राइटर। तो ऐसे काम किया जाता है अपने हुनर पर, अपने सोच पर, और उसे लेके जाया जाता है प्रोफेशन के रास्ते पर। क्रिएटिविटी की दुनिया में कोई जो कंपैरिजन हम करते हैं वो कभी मुमकिन ही नहीं है। वो हम अपने कला को, हमारे अंदर जो भी कला है उसको हम अपने तक रखने की कोशिश जो करते हैं वो शायद किसी भी हद तक सही नहीं है। हमें उस पर काम करना होता है, हमें उसे आगे बढ़ाना होता है, और तब जाके वो कहीं प्रोफेशन बनता है। आज हम किसी भी कलाकार को उसके हुनर को प्रोफेशन बनाते हुए देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसके लिए शायद ये सब बहुत आसान रहा होगा। तो नहीं दोस्तों, उसने उसके पीछे बहुत सारी रातें बर्बाद की हैं, उसमें उसने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे दिन उसने खाली छोटे छोटे काम करके, छोटे छोटे स्तर पे उस पर मेहनत करके ही आज उसे इतना बड़ा बनाया है। तो अगर आपको अपना प्रोफेशन पैशन को प्रोफेशन बनाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, थोड़ी और रातों तक जागना होगा, थोड़ा और उस पर काम करना होगा, रियाज करना होगा, तब जाके आप उसे बड़े स्तर पर ले जा पाएंगे। यही होता है दोस्तों कला को उसका असली हक देना। तो जब तक आप अपनी कला को निखारने के लिए मेहनत नहीं लगाएंगे तब तक शायद आपकी कला उसी स्तर पर रह जाएगी जहां हम कहते हैं ये मेरा शौक है। तो उसे शौक मत रहने दीजिए दोस्तों, उसे आप ऊंचे स्तर पर ले जाइए और मेहनत कीजिए। तो अब हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक।

0: just chill.
1: तो दोस्तों अब अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और जैसे मैंने आपको जाने से पहले कहा था ना कि हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं, कुछ नया कुछ खास, तो आज हम लेकर आए एक वार्ता। वार्ता का जो विषय है वो है सामाजिक और पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश। और हमारे जो आज के वार्ताकार हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है कुलदीप पांडे। आइए उनकी आवाज में सुनते हैं उनके कुछ खास विचार।
2: अरुणाचल प्रदेश भारत का एक महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर राज्य है। अरुणाचल

का हिंदी में अर्थ उगते सूर्य का पर्वत है। इस प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती हैं। भौगोलिक दृष्टि से पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की तरह इस प्रदेश के लोग भी तिब्बती बर्मी मूल के हैं। वर्तमान समय में भारत के अन्य भागों से बहुत से लोग आकर यहाँ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। यद्यपि अरुणाचल प्रदेश एक भारतीय राज्य है, लेकिन चीन राज्य के एक हिस्से पर अपना दावा दक्षिण तिब्बत के रूप में जताता है। प्रसिद्ध लेडो वर्मा रोड का एक भाग राज्य से होकर गुजरता है। यह कहा जाता है कि प्रकृति ने अरुणाचल प्रदेश को अपने हाथों से सजाया है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से अरुणाचल सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चला रही हैं। अरुणाचल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सब कुछ है, सिर्फ मार्केटिंग की ज़रूरत है। अरुणाचल का शांत माहौल यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए तवांग में बौद्ध महोत्सव आरंभ किया गया है। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा से सटे और हिमालय की गोद में बसे अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। अरुणाचल की बहुरंगी संस्कृति लोगों को आकर्षित करती हैं। अरुणाचल में एक तरफ तो विभिन्न जनजाति समूहों के उत्सव, उनके लोक संगीत की जीवन परंपरा है, तो दूसरी तरफ हरे भरे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और उसके बीच से गुजरने वाली बलखाती सड़कें हैं जो लोगों को बरबस मुग्ध कर देती हैं। पूरे भारत में तवांग में सबसे पहले सूरज निकलता है और इसे निहारने के लिए पर्यटक भी खूब आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए कई स्थान हैं। ऊंचे पर्वतों, हरे भरे जंगल, रंगीन जनजातियाँ और उनके अनोखे रीति रिवाज इस धरती को खूबसूरत बनाते हैं। अनछुई प्राकृतिक संरचना, जनजातियों की रोचक जीवन शैली और पौराणिक कथाएँ सैलानियों को अरुणाचल प्रदेश की ओर खींचती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ पर राज्य के कुछ पर्यटक आकर्षण हैं। ईंटों से बना ऐतिहासिक किला लगभग 14-15 सदी पुराना है, जिससे इस शहर का नाम पड़ा। यहाँ के जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय और मशहूर गंगा झील देखने लायक स्थान हैं। बोमडिला, यहाँ पर मोनपा, शेरदुपेन, अका, मेजी और बेगून जैसी जनजातियाँ रहती हैं। शानदार लैंडस्केप में लगे रंगीन गुम्फस इसे एक आदर्श हिमालय बनाते हैं। तवांग सुरम्य घाटी की ओर जाता यह हाईलैंड पास अपने आप में एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर 400 साल पुराना एक तवांग मठ है, जो कि 6ठे दलाई लामा का जन्म स्थान है। इस मठ में पवित्र बौद्ध लेखों वाली सुनहरे अक्षरों वाली प्रतियां भी हैं। परशुराम कुंड, भारतीय पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन भारत के महान संत परशुराम अपने मातृहत्या के पाप को यहाँ की ही लोहित नदी में धोया था। बाद में इसका नाम परशुराम कुंड पड़ा। मलिनीथम में 7-8 सदी पुराने मंदिर के अवशेष हैं। कई चरणों में खुदाई में मंदिर के सजे हुए तहखाने, देवताओं की मूर्तियों, पशुओं के प्रतिरूपों, फूलों के डिजाइन और नक्काशी किए खंभों का भी पता चलता है। आकाशी गंगा यहाँ भी पौराणिक कथा का महत्व है। जब भगवान शिव गुस्से में अपनी पत्नी सती के शव को लेकर घूम रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शव को टुकड़ों में काट दिया था। उस शव का एक टुकड़ा इस इलाके में भी गिरा था। इस जगह से दूर ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग आकार के 7 वन्यजीव अभयारण्य और 4 नेशनल पार्क हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य वन्यजीव अभयारण्य पखुई वन्यजीव अभयारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य, डॉक्टर डी इरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य पासीघाट, मिहाओ वन्यजीव अभयारण्य, कामलांग वन्यजीव अभयारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य मियाओ, केन वन्यजीव अभयारण्य अलोंग, अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क नामधापा नेशनल पार्क मियाओ, मोलिंग नेशनल पार्क जेगिंग, सेसा आर्किड अभयारण्य टीपी, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व दिबांग घाटी। यहाँ आप विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर देख सकते हैं, जिसमें हाथी, बाघ, गौर, बार्किंग हिरण, काला भालू, रेड पांडा आदि शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, जो असम के निकटवर्ती भाग के समतल मैदान की एक संकरी पट्टी पर बसा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के 2/3 भाग पर वन है। चीन के अरुणाचल प्रदेश के पूरे राज्य का दावा करने पर चीन की अतीत और समकालीन कठोरता के रूप में चीन क्षेत्र चीन के संबंध में इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व का भी उभरता है। चीन और भारत दोनों ही सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। चीन और भारत ने 1962 में एक सीमावर्ती युद्ध लड़ा और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित मुद्दे आगे बढ़ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की बढ़ती दिलचस्पी और विशेष रूप से तवांग क्षेत्र में इसके चारों ओर सवाल उठता है, चीन अरुणाचल प्रदेश का दावा करने में रुचि क्यों रखता है?
इसके पीछे चीन का गलत उद्देश्य क्या है? इन सवालों के लिए विभिन्न अटकलें हो सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश का दावा करने के लिए चीन के एजेंडे के पीछे बहुत से राजनीतिक और

0: रणनीतिक कारणों को प्रारंभिक बिंदु हो सकता है। सबसे पहले यह तिब्बत कारक है। तवांग के ऊपरी सियांग जिले में एक दृश्यमान और मजबूत तिब्बती उपस्थिति है और चीन को भारत सीमा के पार से एक पैन तिब्बती आंदोलन द्वारा धमकाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दलाई लामा और तिब्बती सरकार की उपस्थिति ने इस भय को सही साबित किया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और विशेष रूप से तवांग क्षेत्र चीनी संदर्भ में प्रमुख रणनीतिक महत्व रखता है। भौगोलिक संयोग से अरुणाचल प्रदेश अपनी संपूर्ण पूर्वी भाग में भूटान के राज्य को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर तवांग को चीन द्वारा अवशोषित किया जाता है तो भूटान चीन की ओर से अपने दोनों पक्षों से घिरा होगा, जो कि भारत की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल और चीन के लिए बहुत आकर्षक होगा। फिर यदि चीन के साथ किसी भी भविष्य का विरोध उठता है तो अरुणाचल प्रदेश चीन का सबसे छोटा मार्ग है, इसलिए इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व का स्थान बनाते हैं, जो चीन के लिए अत्यधिक हानिकारक है। अगर चीन किसी भी वायु संचालन की योजना बना रहा है तो अरुणाचल प्रदेश भारत को बहुस्तरीय वायु रक्षा की तैनाती के रूप में जमीन पर प्रतिरोध प्रदान करेगा, जो चीन के लिए हानिकारक होगा। मुख्य महत्व का एक अन्य क्षेत्र यह है कि अगर तवांग पर चीन को अतिक्रमण करना है या चीन को सिलीगुड़ी गलियारे या भारत की चिकन की गर्दन तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, जो कि आवश्यक रणनीतिक महत्व का स्थान है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भूमि का एक संपूर्ण मार्ग है जो भारत को अपने पूर्वोत्तर के विभिन्न उग्रवाद समूहों के वित्त पोषण में शामिल है, जो कि भविष्य में चीन की सहायता कर सकते हैं। ये विद्रोह समूह वैसे भी भारत सरकार के खिलाफ विभिन्न कारणों से लड़ रहे हैं, यह भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इन राजनीतिक और सामरिक इरादों को चीन के लिए अरुणाचल प्रदेश का अधिग्रहण करने के लिए पर्याप्त रूप से कारण प्रदान किया है। भारत अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में चीन द्वारा इस तरह के बड़े विवाद को अनदेखा नहीं कर सकता। सुरक्षा उपायों के संदर्भ में भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए सबसे अच्छा संभव रक्षा स्थापित करना है, जो कि सबसे अस्थिर स्थानों में से एक है। भारतीय तोपखाने को पूरे चुंबी घाटी में हावी होना चाहिए, जहाँ सिलीगुड़ी गलियारा होता है, और चीन द्वारा हवाई हमले का मुकाबला करने के लिए हर समय भारतीय वायुसेना तैयार होनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचे के संदर्भ में अपनी जीर्ण स्थिति में सुधार के लिए योजना लागू की जानी है। अरुणाचल में सीमा सड़कें अबाधित हैं, इसलिए अगर वहां तैनात सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो सड़कों को रसद और आपूर्ति लाइन बनाते हैं, जो बनाए रखना कठिन है। राज्य में दयनीय ढांचा क्षेत्र के लोगों के बीच उपेक्षा की भावना पैदा करता है। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश भारत का न सिर्फ अभिन्न अंग है, बल्कि पर्यटन और सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है।
1: तो दोस्तों सुन रहे थे हम अभी वार्ता। वार्ता का विषय था सामाजिक और पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश, और हमारे वार्ताकार थे कुलदीप पांडे। और अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत। तो दोस्तों हम अभी सुनाएंगे आपको अपने प्रोग्राम का ये अगला गीत, लेकिन आपने जो ये सुना अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, और हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आइए सुनते हैं।

तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में आगे और अब बात करेंगे हम अपने कार्यक्रम में अगले सेगमेंट की यानी प्रेरणा पुंज की। कहते हैं किसी व्यक्ति की महानता इस बात से नहीं मापी जाती कि उसे कितनी ऊंचाइयां हासिल हुई हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती हैं कि उसने अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे किया। विट्ठल भाई पटेल का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर के एक महत्वपूर्ण नेता, प्रखर वकील और केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष थे। उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व के साथ साथ संवैधानिक संस्थानों के प्रति गहरी समझ भी दिखाई देती थी। विट्ठल भाई पटेल का जन्म 27 सितंबर 1873 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। शुरुआती जीवन से ही उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का जज्बा था और सार्वजनिक जीवन के प्रति रुचि उन्हें दिखाई देती थी। उनमें उन्होंने कानून की पढ़ाई की और आगे चलकर सफल वकील बने, लेकिन उनके लिए व्यक्तिगत सफलता की अंतिम ये लक्ष्य नहीं था। सार्वजनिक जीवन और देश के राजनीतिक भविष्य को लेकर उनकी अपनी स्पष्ट सोच थी। विट्ठल भाई पटेल का जीवन राजनीतिक जीवन उस दौर में आगे बढ़ा जब भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ राजनीतिक चेतना लगातार मजबूत हो रही थी। वे मानते थे कि भारतीयों का जो शासन संस्थान है वो उतना प्रबल नहीं है कि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो सके। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक थी केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्षों के रूप में उनका कार्यकाल। 1925 में वे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। उस समय ये पद बहुत महत्वपूर्ण था और विट्ठल भाई पटेल ने इस जिम्मेदारी को केवल एक औपचारिक पद की तरह नहीं देखा, उन्होंने अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष तरीके से संचालित करने और अध्यक्ष पद की स्वतंत्र गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया। यही उनके व्यक्तित्व की खासियत थी। वे जिस जिम्मेदारी को स्वीकार करते थे उसे पूरी गंभीरता के साथ निभाते थे। उनका मानना था कि विधानसभा केवल बहस करने की जगह नहीं है, बल्कि जनता की आवाज को सामने रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विट्ठल भाई पटेल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों यही है कि हमें उनके जीवन से यह सीख लेनी चाहिए कि जिम्मेदारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसे ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाना होगा। आज के युवाओं के लिए उनका जीवन खास तौर पर प्रेरणादायक है। हम जिस दौर में जी रहे हैं ना दोस्तों, उसमें नए दिन नए अवसर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके साथ चुनौतियां भी मिलती हैं। करियर में प्रतिस्पर्धा, अपनी पहचान को बनाए रखने की कोशिश और कई बार अपने फैसलों को लेकर असमंजस भी होता है। ऐसे समय में विट्ठल भाई पटेल का जीवन हमें याद दिलाता है कि अपनी पहचान बनाए रखने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को मजबूत करना जरूरी है। तो दोस्तों हम अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं, लेकिन लेते हैं एक म्यूजिकल यू टर्न।

तो दोस्तों इसी गीत के साथ अब समाप्त होता है हमारा प्रोग्राम। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं हमारी ईमेल आईडी के ज़रिए, जो कि है yuvvanialdi@gmail.com, यानी yuvvanialdi@gmail.com, और 8004926250 पर। इसी के साथ मैं दिव्या लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा

0: कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजर ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वॉश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथॉनल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्री स्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमो को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। आज रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रविवार सरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। रात 10 बजे आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां। माफ कीजिएगा, समय है कहकशां कार्यक्रम का रात्रि

9:30। पंचायत घर में शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई लोकगीत के अलावा डॉक्टर शैलेंद्र देव दुबे से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत सुनेंगे, नए बागों की देखभाल। साथ ही एक और बातचीत सुनवाई जाएगी अर्थव्यवस्था और पर्यटन विषय पर विनोवर शर्मा से दिनेश कुमार पांडे की। रात 7:45 बजे सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा। कलाकार होंगी मुक्ति शर्मा। चिट्ठी आई है पत्रों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8 बजे। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा साप्ताहिक कार्यक्रम आज इतवार है। इसमें हम लेकर आएंगे दिनेश भारती की लिखी झलकी संडे की सैर। फिल्म संगीत शाम 7:31 पर और चित्रपट संगीत रात्रि 8:15 पर। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलक। कृषि जगत सवेरे 6:35 पर। इसमें आप डॉक्टर कमलेश सिंह से की गई बातचीत सुनेंगे। बातचीत का विषय होगा मुर्गी और बटेर में लगने वाली बीमारियां और उनसे बचाव। प्रातः 6:45 पर रोज की तरह स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम होगा। इसमें डॉक्टर साद उस्मानी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, ब्रेन स्ट्रोक कारण लक्षण और उपचार। सवेरे 7 बजे सुनिएगा श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 7:30 पर आप किशोरी अमोनकर का ख्याल गायन सुनेंगे और दिन में 12:15 पर रात्रि 10:30 पर आप पंडित जसराज का ख्याल गायन सुनेंगे। वॉइस ऑफ प्रयागराज, इसमें सवेरे 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे ब्रेन फॉग विषय पर डॉक्टर ऋचा पाठक वैज्ञानिक से नेहा गुप्ता और अभय कांत तिवारी की बातचीत का दूसरा भाग। फोन इन कार्यक्रम आपकी पसंद दिन में 12:30 पर। गृहलक्ष्मी में 7:15 बजे बहन रूपक सुनेंगी। रूपक केंद्रित होगा सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पर। नन्नो मुन्नो का कार्यक्रम नन्ही दुनिया शाम 5 बजे। युववाणी में शाम 5:15 पर युवा साथी अर्चना शर्मा की वार्ता सुनेंगे, एआई के इस दौर में रचनात्मकता पर पड़ता प्रभाव। लोकगीत सुनिएगा सवेरे 10:30 बजे कलाकार होंगे प्रद्युम्न कुमार, संगीता मिश्रा, सुभाष चंद्र यादव और साथी। शाम 6:30 बजे पंचायत घर में कलाकार होंगे रंजीत कुमार और साथी। हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर आप प्रोफेसर राजेंद्र कुमार की वार्ता सुनेंगे। वार्ता का विषय होगा समकालीन कथा साहित्य में लालित्य की कमी। सुगम संगीत के अंतर्गत सवेरे 9:50 पर आप अमृता मालवी के स्वर में गीत और भजन सुनेंगे और रात्रि 7:45 बजे सुगम संगीत के कलाकार होंगे भूपेंद्र कुमार। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां आप सुन सकते हैं रात 9:30 बजे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। पहली सूचना है थाना हाथीगवा प्रतापगढ़ से। रूपा सरोज, पुत्री गणेश सरोज, निवासी ग्राम वरना कल्याणगढ़, जनपद प्रतापगढ़ से। इनकी उम्र है 22 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच, बदन एकहरा, चेहरा गोल है।

के शरीर में विशिष्ट जो पहचान है वो है पीठ पर तिल का निशान। ये दिनांक 10 अगस्त 2026 से सुबह लगभग 8 बजे से अपने निवास स्थान वरना कल्याणगढ़ से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना हाथीगवां जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें। यह सूचना है ग्राम पुरे इच्छा थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ से सौम्या पटेल पुत्री वीरेंद्र पटेल उम्र 10 वर्ष कद 4 फीट चेहरा गोल रंग सांवला है। ये दिनांक 27 जुलाई 2026 से दोपहर लगभग 2 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम पुरे इच्छा से लापता हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें। श्रीमती प्रीति पुत्री संतोष कुमार उम्र 23 वर्ष कद 5 फीट रंग गोरा चेहरा लंबा है। ये दिनांक 19 अगस्त 2026 से शाम लगभग 4 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम सराय सुजान थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ से लापता हैं। लापता होने के दिन इन्होंने काले रंग की लैगी और सामान्य ग्रे कलर की कुर्ती और सफ़ेद रंग की चप्पल पहनी हुई है। इनके बारे में किसी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें।

ये सूचना है थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से, अंशिका दुबे, उम्र 17 वर्ष, कद 5 फीट 5 इंच, रंग गेहूँ, चेहरा लंबा और शरीर की बनावट इकहरी है। ये दिनांक 16 अगस्त 2026 से रात लगभग 8 बजे से अपने निवास स्थान ग्राम मौलानापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ से लापता है। लापता होने के दिन इन्होंने सलवार और सूट पहना हुआ है। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया मोबाइल नंबर नोट कर लें, इस पर दें। मोबाइल नंबर है 8948236266। मोबाइल नंबर के अलावा इनके बारे में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को सूचित करें। अभी आप खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए समूह स्वर में देश गान।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। शल्यप्रहारः सिन्दूराभियानं च भारतस्य नूतनायाः उग्रवादविरोधीनीतेः अमोघम् उदाहरणमिति मनोगतकार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा सप्रश्रयं प्रोदीरितम्।

0: सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च जनगणनाभियानस्य प्रथमचरणं पूर्णताम् अगात् इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितम्। सामरिकस्वायत्ततायाः सुरक्षायाः च उपरि आघाते सति भारतं स्वात्मरक्षां विधास्यति एवेति रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन सबलं प्रख्यापितम्। गुजरातस्य साबरमती क्षेत्रे 15,00,000,000,000 रेल विकास परियोजनाः गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन समुद्घाटिताः। अपि च नागोया एशियाई क्रीडासु स्क्वैश स्पर्धायाम् अभयसिंहेन अनाहतसिंहेन च रजतपदके विजिते महिलानां 200 मीटर धावने च हरिता भद्रा कांस्यपदकं विजितवती। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आकाशवाण्याः मनोगतम् इति कार्यक्रमस्य सम्बोधनक्रमे राष्ट्रम् उद्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतीयसैन्यबलेन पाकिस्ताने आतंकवादीनां निगूढ आश्रयेषु कृतः सर्जिकल स्ट्राइक इति शल्यप्रहारः भारतस्य आतंकवादविरोधी नीतेः नव्यम् उदाहरणम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा निगदितं यत् श्वः भारतवर्षम् अस्य ऐतिहासिक शल्यप्रहारस्य दशमवर्षपूर्तिम् अभिनन्दिष्यति। नियन्त्रणरेखां लङ्घयित्वा वीरभारतीयसैनिकाः येन शौर्येण आतंकवादविरुद्धं कठोरां प्रतिक्रियाम् अकुर्वन् तद्वीक्ष्य समग्रं विश्वम् आश्चर्यचकितम् अभवत्। सः सबलम् अवोचत् यत् एषः शल्यप्रहारः दीर्घकालात् आतंकवादी आक्रमणैः सन्तप्तस्य राष्ट्रस्य एकः निर्णायकः प्रत्युत्तरप्रहारः आसीत्। विगते दशके बालाकोट वैमानिकप्रहारात् आरभ्य सिन्दूराभियानं यावत् भारतेन मुहुर्मुहुः एषः स्पष्टः सन्देशः प्रसारितः यत् आतंकवादी दुश्चेष्टानां प्रत्युत्तरं यथोचित दंडेन एव दीयते।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: सः उदघोषयत् यत् वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थानके हतेषु अमेरिकी नागरिकान् विहाय सर्वाधिकं संख्या भारतीय नागरिकाणाम् आसीत्। 2014-2000 वर्षे प्रधानमन्त्री पदभारग्रहणात् परम् अमेरिकायात्रावधौ तेभ्यः निरपराधनागरिकेभ्यः स्वकीयं श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान् इति सः अस्मरत्। प्रधानमन्त्री कोटिशः भारतीय नागरिकाणां पक्षतः शोकसन्तप्त परिवारेभ्यः पुनरपि एकदा संवेदनां प्राकटयत्। अपरं च जनगणना प्रक्रियाम् अधिकृत्य श्रीमोदी अवोचत् यत् अस्य राष्ट्रिय अभियानस्य प्रथमः चरणः देशस्य सर्वेषु अपि राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च प्रायः सम्पन्नः अभवत्, यत्राधुना यावत् 32,00,000,000+ विवरणं समालेखितम्। सम्प्रति लद्दाख हिमाचलप्रदेश जम्मूकश्मीर उत्तराखण्ड राज्यानां दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु क्षेत्रेषु अपि कार्यमिदम् अविरतं प्रचलति। एतेभ्यः सीमान्तक्षेत्रेभ्यः अनेके प्रेरकाः अनुभवाः प्राप्ताः इति उल्लेखयन् असौ अवोचत् यत् उत्तराखण्डराज्ये देशस्य प्रथमग्रामरूपेण प्रसिद्धात् चमोलीमण्डलस्य माणाग्रामात् मतगणनाकार्यस्य शुभोत्कर्षः अभवत्।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाले। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: अद्य विश्व हिंदू परिषदः भूतपूर्वस्य अन्ताराष्ट्रिय कार्याध्यक्षस्य श्रद्धेयस्य स्वर्गीय अशोक सिंघलस्य जन्मशताब्दी जयन्ती वर्तते इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तम्। सः अशोक सिंघलम् एतादृशं महान्तं व्यक्तित्वम् अभिहितवान् येन

0: स्वकीयम् अखिलमपि जीवनं संस्कृतेः समाजस्य राष्ट्रस्य च सेवायै समर्पितम्। प्रधानमन्त्रिणा अक्टूबर मासस्य द्वितीये दिनांके आयोज्यमानायाः महात्मा गांधी जयन्त्याः सन्दर्भे अभिहितं यत् बापू इत्यस्य जीवनमूल्येषु स्वच्छता अभियानस्य स्थानम् अनन्यमस्ति। सः न्यगादीत् यत् व्यक्तिगतस्तरात् आरब्धाः प्रयासाः अनन्तरं लोकसहभागेन व्यापकरूपं धारयन्ति। स्वच्छतैव राष्ट्रस्य पक्षतः महात्मा गांधिने दीयमानः सर्वोत्कृष्टः श्रद्धाञ्जलिः वर्तते इति मोदिना सबलम् उक्तम्।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: मादक द्रव्य व्यसन मुक्त्यै संचालितस्य मादक मुक्त युवा अभियानस्य प्रसंगे प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् लक्षाधिकैः युवकैः दुर्व्यसनात् दूरस्थाने सम्भूय अन्यान् जागरयितुं महती प्रतिज्ञा गृहीता। शतसप्ताहव्यापि अस्मिन् राष्ट्रिय यज्ञे युवकाः स्वकीयाम् अभिव्यक्ति कलां प्रयुञ्जीरन् इति मोदिना आह्वानं विहितम्। क्रीडा संवर्धनम् अधिकृत्य तेन प्रोक्तं यत् दर्ग रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् उद्घोषितायाः क्रीडा प्रतिभा अन्वेषण योजनायाः मूल लक्ष्यं सुदूर ग्रामेषु निगूढ सामर्थ्यस्य अन्वेषणम् अस्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य साबरमती स्थाने 15,00,000,00,000 रूप्यकाणां रेल परियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासं च अकरोत्। तेन गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा सह देशस्य प्रथमा LNG चालिता रेलसेवा च समारब्धा। एषा द्विइन्धनप्रणाली 40% यावत् डीजल उपभोगं न्यूनीकरिष्यति। भारतवर्षं कस्यापि राष्ट्रस्य भूखण्डम् आक्रमयितुं नैव वाञ्छति, परञ्च राष्ट्रीय सुरक्षायाः स्वायत्ततायाश्च उल्लङ्घने सति प्रतिघातं निश्चप्रचं करिष्यति इति नवदिल्ल्यां रक्षासम्मेलने भाषमाणः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः प्रतिपादितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् आतंकवादपोषकैः सह वार्तायाः कोऽपि विकल्पः नैवास्ति। सः अवदत् यत् राष्ट्रसुरक्षा केवलं सैन्यबलानां नास्ति, प्रत्युत सर्वेषामपि नागरिकाणां सामूहिकम् उत्तरदायित्वं वर्तते। रक्षा उत्पादनक्षेत्रे आत्मनिर्भरतायाः उल्लेखं कुर्वन् रक्षामन्त्रिणा निगदितं यत् अस्यां दिशि भारतेन महती उपलब्धिः अर्जिता। जापानदेशस्य आइची नागोया मण्डले प्रवर्तमाने एशियाई क्रीडा महोत्सवे अद्य स्क्वैश स्पर्धायाम् अभयसिंह अनाहतसिंहभ्यां यथाक्रमं पुरुष महिला एकलवर्गयोः 2 रजतपदके स्वायत्तीकृते। एतदतिरिच्य महिलानां 200 मीटर धावन प्रतियोगितायां हरिता भद्रा तृतीयं स्थानं प्राप्य कांस्यपदकम् अलभत। सम्प्रति भारतवर्षं 4 स्वर्ण 14 रजत 15 कांस्य पदकैः सह आहत्य 33 पदकानि सम्प्राप्य पदकतालिकायाम् 11 स्थानं भजते इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक

0: स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम।
1: हम कहे मोहन भैया,
0: भैया चन्ना
1: भैया, देखा हो आज विशेष दिन बाकी विश्व पर्यटन दिवस।
0: भैया बिल्कुल
1: भाई, देखा पर्यटन के क्षेत्र में, भाई देखा अपने देश में भी ढेर काम।

0: पंचो राम राम, राम।
1: हम कहें मोहन भैया,
0: भैया चन्ना
1: भैया देखा हो आज विशेष दिन बाकी विश्व पर्यटन दिवस।
0: भैया बिल्कुल
1: भाई देखा पर्यटन के क्षेत्र में, भाई देखा अपने देश में भी ढेर काम भर ढेर में प्रगति भे भैया और लोग एकर फायदा भी लेत बाटे।
0: बिल्कुल भाई हम तक कही एक बात कहा, हम कही भाई देखा पर्यटन के क्षेत्र से जौन है ना भाई, जब से एक चलन बढ़ा बाटे अपन सरकार भी इस तरफ ध्यान केंद्रित करेगा तो ऐसे भैया उद्योग जगत में खास कर पर्यटन उद्योग में भी बढ़ावा मिलत बाटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया ढेर लोगन को रोजगार ऐसी मिल गया।
0: बिल्कुल भाई तमाम तरह के देखा भाई पाठ्यक्रम भी आए उसे पढ़ पढ़ के लोग भाई जो बाहर से आवत है उनका दिखावे खातिर जौन है एक तरीके से मार्गदर्शक रूप में काम करत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: भाई अलग अलग तरह के भाषा भी सीखत है लोग जौन है तो कहे मतलब भाई पर्यटन सिर्फ एक तरीके से अपने उद्योग तक रोजगार तक सीमित नहीं ना, बल्कि भाई हम कहीं देखा एक दूसरे के भाषा संस्कृति रीति रिवाज के भी एक जाने के बहुत बड़ा माध्यम बा भैया।
1: बिल्कुल भैया और एकरे द्वारा अपने देश के भैया दूसरे देशन में भैया ऐसी भी ढेर भाई विकास पर।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई एक चीज है कहा ना भैया भाई देखा कहथिन कि भाई भांत भांत के लोग भाई हैं दुनिया में है और अलग अलग तरह के देश भाई जहाँ पे अलग अलग तरह के कलाकृति यहाँ है तो भाई एका हम सभी तबे जाना जब हुआ तक पहुँचब जौन है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो भाई ई पर्यटन के जौन एक माध्यम है हम तो कहे भैया तमाम तरह के संस्था हैं जो इस तरह के कार्य में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और व्यक्ति के भी भैया हमेशा एक जगह तक सीमित न रह चाहिए।
1: नहीं नहीं
0: भाई हम कहीं खेतन किसानी के भैया बात कर रहे हैं भाई हम तो धान बोत हैं इस सीजन में अब हमारे भाई अलग प्रांत में इस समय कौन सी अलग खेती किस विविधीकरण करता है अगर यहाँ जाए के देखता है भैया यह पर्यटन ही बाटे।
1: बिल्कुल पर्यटन में भैया उसी सीखता बाटे और भाई उनका मन भी बहल जाते बाटे।
0: बिल्कुल भाई एक यू कहा ना भैया अपने कृषि विभाग में भी भैया किसानन के पर्यटन के भी सुविधा बा।
1: बिल्कुल
0: जेमा अलग अलग स्थानन पे जाए के उनका वहाँ पे खेती किसानी के बारे में जानकारी प्रशिक्षण के भाई जानकारी अलग अलग जलवायु में कौन से खेती कीन जाए बाटे इस तरह के भाई जानकारी उनका जाने के मौका मिलत बाटे।
1: मोहन हो देखा अपने यहाँ जो कृषि विश्वविद्यालय बाटे भैया ना उस समय पे समय समय पे ऐसन कार्यक्रम ऐसन प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानन के लिए चलावत हैं कि भाई लोग दूर दूर तक वही विश्वविद्यालय के परिसर में जाए के सीखत हैं भी और भाई पर्यटन के क्षेत्र में भी जौन विकास हो वो का जानत हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल भाई हम तो कहीं भाई देखा पर्यटन के मतलब सिर्फ ये ना है न कि भी जाए के कहीं के भाई किला बाटे तो का देखा मंदिर
1: नहीं,
0: देखा
1: नहीं
0: वहाँ के स्थानीय का भाई खान पान बा का रीति रिवाज बा का कृषि के क्षेत्र बाटे अब भाई अपन किसान भाई को मान के चला कि भाई अलग भाई उत्तर प्रदेश छोड़ के बिहार गए तब वहाँ मखाना खेती कैसे होती बा
1: सही कहे
0: बंगाल गए तो वहाँ के भाई चावल कैसन होत बाटे
1: कम से कम देखा था जाना था
0: जाना था
1: सीख मिला था।
0: और भाई और दूसरे तरफ चला जाए हम कही भाई अपने प्रदेश में अगर अलग अलग जनपद में घूमे चला जाता है ये भी एक पर्यटन के रूप है भैया तो ऐसे कहा है कि भाई खेती किसानी के भाई तौर तरीका भी लोग सीखता है पर्यटन के उद्देश्य भी पूरा होत बाटे और साथे साथे देखा आज जौन कहने कि विश्व पर्यटन दिवस बाटे तो भाई विश्व पर्यटन दिवस से भाई औचारिकता यह है कि एकर भाई एक दूसरे के देश के भाषा संस्कृति के बारे में लोग जाने और अच्छा भाई और अपने जौन विचार रहा है जौन अपन रीति रिवाज व आदान प्रदान हो तो हम कही भाई यह एक उद्देश्य एक मूल है।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल अब देखा बात कही तो होते रहे सोचते ही कि भाई जौन पर्यटन की बात होत ना तो ही संबंधित भैया के बात है कि पर्यटन उद्योग और हमारी अर्थव्यवस्था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा भैया
1: तो भैया यही पे बातचीत बाटे ना कि यही बाटे विनोद शर्मा भैया से
0: विनोद शर्मा से भैया दिनेश पांडे की बात कही सुना जाए साथे साथे आज तो भाई एक नए बागों के भाई देखभाल विषय पर भी एक वार्ता सुनी जाए भैया जो नया बोला उससे पहले हम कही भाई खेती किसानी से कही के भाई किसान भाई बैठा है उनके बिना भाई गीत गौने थोड़ा स्वागत की जाए जो है।
1: बिल्कुल भैया उनको जो हरियर हो जाए।
0: बिल्कुल भाई तो राम कृपाल संघातन के गाई गौने बा आवाज सुना जाए।
1: बिल्कुल सुना

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: चन्नो भैया हमको देखा सनेसो हो गया गौनाई भी हो गया। एक बात यह भैया हम कहीं देखा हो आजकल भाई कौनो भी काम शुरू करे के बाद तो हम कहीं ओके लिए अगर आपके पास भाई बढ़िया हुनर बा अच्छी ओकर समझ बा हम कहीं वो काम में बड़ी तरक्की हो था भैया।
2: लेकिन मोहन ही समझे भैया वो हुनर के ज्ञान कैसे हुए।
1: ए भैया हम कहीं कह के हम कहीं देखा भाई अपन देश आत्मनिर्भर बने और अपन जो युवा पीढ़ी बा भैया वो रोजगार भी प्राप्त करे तो ऐसा काम करे भाई जैसे भाई वो अपन अपन जीविका भी चला सके दूसरे के भी काम कैसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक बिना भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरुआत की तो भाई एक माध्यम से हम कहीं अपने भाई जितने भी युवक युवती हैं भैया बहनी है रे सबके जो भी कोनो काम अगर सीखे चाहता है तो मैं तरह तरह के भाई प्रशिक्षण शामिल किया गया बाटे
2: और निःशुल्क भैया।
1: बिल्कुल भाई हम तो कई भाई का जगह जगह प्रशिक्षण जहाँ केंद्र बना है वहाँ तेरे भाई आपके जाए के सिर्फ प्रवेश ले के बाद बाकी हुमा भाई आपके जो है पूरी पढ़ाई बाटे ऊपर एक पैसा भाई लागत नहीं जो
2: नहीं भैया नहीं।
1: और हम तो कई भाई चाहे प्रशिक्षण में तो हम कही भाई आजकल देखा तमाम चाहे टीवी बनावे के बाद भाई बाजा बनावे के बाद भाई भाई खेती किसानी के उपकरण बनावे के बाद
2: भाई बिल्कुल
1: भाई घरेलू जो आपके भाई खान पान के सामान बा हर चीज भाई कौशल विकास में शामिल की आगा बाटे जो
2: हम समझते हैं भैया। अगर प्रशिक्षण ले ली मोहन ने तो भाई ओकर ऐसन वो गढ़ी ऐसन बनही कि बाजार भाव भी ओकर अच्छा मिले।
1: बिल्कुल भाई एक बात यह कहा भैया हम कहीं जे भी अपन भैया बहनी हरे प्रधानमंत्री कौशल विकास के प्रशिक्षण लेता है ओकर प्रमाण पत्र हासिल कराता है तो भाई अगर कोनो उद्योग शुरू करे चाहता है तो सरकार के बहुत सी योजना ऐसे बाटे कि जेहमा उन्हें भाई ऋण में भी सुविधा मिलती।
2: बिल्कुल भैया ऋण मिले और जब ऋण मिल जाए ओकरे कारण अगर नहीं कह पावत रहे उद्योग के अपन व्यवसाय तो भैया करही और दो पैसा के कमाबो करही और ऋण के समय से वापस।
1: हम तक कही भाई जब से कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू भ बटे ना भैया बहुत से भाई अपन भैया बहनी हरे अपन निजी काम शुरू करके भैया करता ही है साथे साथे दूसरे को भी काम दे के लायक बना है।
2: बिल्कुल भैया तो इस तरह के जो योजना बाटी ओकर लाभ लेके जरूरत।
1: बिल्कुल भाई सबके भाई एक जाए के जानकारी लें भाई और एक अपने को आत्मनिर्भर बनाए और देश के भी भैया हम कहीं देखा जो एक संकल्प बाटे विकसित भारत की योजना वो हम अपन भागीदारी सुनिश्चित करें जो ना।
2: बिल्कुल,
1: तो हम कहे भाई देखा तो होता ही मुलायक बात रही हम कहीं देखा आज पर्यटन दिवस पे एक वार्ता बाटे भाई पर्यटन उद्योग और हमारी अर्थव्यवस्था पर बातचीत है दिनेश पांडे से भैया और विनोद शर्मा के कही बटे और सुनवा दिया।
2: बिल्कुल भैया सुनावा।
3: भैया विनोद शर्मा जी आप विशेषज्ञ हैं जानकार हैं तो एक बात ही सुने में आवत है भैया कि अर्थव्यवस्था और पर्यटन एक के माध्यम से देश के विकास हो सकता है और देश के लोग आगे बढ़ सकते हैं तो अब दोनों अलग अलग बात बा कि एक अर्थव्यवस्था है दूसरा पर्यटन बा तो अर्थव्यवस्था का है और पर्यटन का है और दोनों का संबंध कैसे बा।
4: अर्थव्यवस्था स्थानीय क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय समुदाय में उत्पादक वितरक और उपभोक्ता के माल या सौदा के संपूर्ण जाल को अर्थव्यवस्था कहते हैं।
3: अच्छा अच्छा।
4: या इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं आर्थिक उत्पादन और उपभोक्ता के क्रियाओं का बृहद अंतर संबंध का निर्धारण जो आंशिक संसाधनों को निर्धारित करता है।
3: अच्छा, अच्छा।
4: इसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं।
3: और पर्यटन भैया।
4: और पर्यटन आज के परिवेश में अवकाश में मनोरंजन मन बहलावन विश्राम धार्मिक परिवार के लिए अथवा व्यापारिक उद्देश्य से निश्चित या सीमित समय के लिए यात्रा करना पर्यटन है।
3: अच्छा अच्छा। काय का मतलब ये भैया कि अगर कहीं आदमी घूमे जात बा कुछ देखे जाता है तो वो पर्यटन के अंतर्गत बा।
4: जी जी जी।
3: और अगर उत्पादन बा उसे

0: व्यवसाय हो तो ये अर्थव्यवस्था से संबंधित
1: बात। जी जी बिल्कुल।
0: तो हमारा अर्थव्यवस्था और पर्यटन दोनों में संबंध सामंजस्य कैसे बने कि
1: जी,
0: देश का भी विकास हो और देश में रहने वालों का भी विकास हो।
1: देखा इसमें ये वर्तमान जो अनुभव है इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का पर्यटन क्षेत्र में बृहद विकास हुआ है।
0: अच्छा अच्छा।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था का पर्यटन क्षेत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था एक मुख्य औद्योगिक क्षेत्र बन चुका है। पर्यटन उद्योग से भारत को 21,828 करोड़ का विदेशी विनिमय मूल्य अर्जित हुआ है। इस पूर्व वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का पर्यटन क्षेत्र से 13.3% वृद्धि दर प्राप्त हुई थी।
0: का मतलब यह जो विदेश के लोग अपने देश के जो प्रसिद्ध जगह बा ओकर देखे के लिए ओकर घूमे के लिए या धार्मिक रूप से दर्शन पूजा करे के लिए आए हैं।
1: जी, इसमें पर्यटन उद्योग में वृद्धि का कारण अधिक से अधिक विदेशी और घरेलू पर्यटक की संख्या में वृद्धि होना है। प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटक भारत के भ्रमण हेतु अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, दक्षिण एशिया आदि देशों से आते हैं। भारतीय पर्यटक के लिए विभिन्न संस्कृति, व्यवसाय, त्यौहार और मनोरंजन स्थल आकर्षित करता है।
0: जी जी।
1: पर्यटक हेतु बहुत विकल्प है। भारत सांस्कृतिक और व्यवसाय की विविधता का देश है और पर्यटन का यह रूप पर्यटक को प्रभावित करता है।
0: जी जी भैया, यह हमने रोजगार का भी कुछ माध्यम होते कि पर्यटन से या अर्थव्यवस्था से रोजगार कैसे रोजगार लेकर का आदमी लाभ प्राप्त कर सकते
1: हैं। जी, भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र से लगभग 7 तरह के लाभ होते हैं।
0: जी जी।
1: पहला रोजगार है। हम पर्यटन से सरल रूप से में लाभप्रद नौकरी को तलाशा जा सकता है।
0: जी।
1: जैसे टूर गाइड है, होटल स्टाफ, कोच सर्विस और रेस्टोरेंट आदि।
0: अच्छा।
1: सभी व्यवसाय से कर्मचारी को केवल मजदूरी नहीं बल्कि सामग्री के स्रोत, स्थानीय उत्पाद, स्थानीय उद्योग को बढ़ावा मिलता है।
0: जी जी।
1: दूसरा जो लाभ है, स्थानीय समुदाय के खर्च में वृद्धि होती है, यह दुगुना आता है। पहले अर्थव्यवस्था से में पर्यटक सीधा पैसा खर्च करता है, यह पर्यटन पर शीघ्र नहीं बल्कि मानवीय आधार पर बृहद क्षेत्र में आवश्यकताओं की खरीदारी होती है।
0: जी।
1: जैसे खाद्य, कपड़ा, हेयर ड्रेसिंग, चिकित्सा सेवा, परिवहन आवश्यकताओं ने यादगार मनोरंजन के साथ पर्यटन विश्व व्यापार को आधार प्रदान करता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तीसरा जो लाभ है विविधता का, इसमें इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का फलना फूलना या अर्थव्यवस्था का विकास और नए रूप में आमदनी का स्रोत बनाना है। विषम समय के लिए जीवन बीमा पॉलिसी, क्योंकि सहायक आमदनी वित्तीय दबाव में व्यावसायिक उद्योग को सहयोग कर सकती है। यह समाज के लिए विशेष महत्व का है और यह लगातार एकल उद्योग के रूप में चलता है जो ग्रामीण समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है।
0: जी।
1: जो अर्थस्वरूपी जोखिम के आधार पर विश्व व्यापक सामुदायिक मूल्य की खेती करते हैं।
0: जी जी।
1: और चौथा जो आपका लाभ है इसमें, आधारभूत सुविधाएं या मूलभूत सुविधाएं कह सकते हैं, जैसे संयुक्त राजस्व का समुदाय में आना भी शासन को फायदा है, जिसका अर्थ अधिक कर जो जन परियोजना का विकास या प्रारंभ कर सकते हैं, जिससे आधारभूत सुविधाएं जैसे नई सड़क का निर्माण, पार्क का विकास, जन स्थान को सुधारना, भ्रमण करने वालों में अच्छी सुविधा का उपयोग करना, स्थानीय आवास को ज्यादा लाभ, विशेष रूप से जब राजस्व अधिक आते हैं तो हवाई अड्डे, स्कूल, अस्पताल आदि के लिए शीघ्र आर्थिक विकास होता है।
0: जी।
1: बिना मूलभूत सुविधाओं के अच्छी सेवा संभव नहीं है।
0: जी।
1: पांचवा लाभ है सामाजिक लाभ।
0: जी।
1: राजस्व वृद्धि के साथ साथ पर्यटन से सांस्कृतिक लाभ भी होता है।
0: जी।
1: जिससे अस्थायी समुदाय के अच्छे स्रोत हो सकते हैं, जिससे इतिहास, सांस्कृतिक और सामुदायिक विकास की पहचान हो सकती है।
0: जी।
1: छठा लाभ है आपका पर्यावरण लाभ।
0: जी।
1: पर्यटन में बहुत से पर्यटक अपने अनुकूल भ्रमण माध्यम को चुनते हैं, जिससे स्थानीय क्षेत्र और पर्यटन संरक्षण होता है। सातवां, अवसर मिलता है। पर्यटक स्थानीय समुदाय से आकर नए जीवन स्टाइल सीखा जाते हैं, जिससे नई सेवा व उत्पादक सुविधा का जन्म होता है। जहाँ केवल स्थानीय जनसंख्या के आधार पर पर्यटक संभावित ग्राहक होते हैं, जिसके लिए रणनीति युक्त व्यवस्था का अवसर प्राप्त होता है।
0: एक बात और भैया शर्मा जी, कि ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था बा इका पर्यटन क्षेत्र कहाँ तक प्रभावित करत
1: है? इसके मूल रूप से तीन कारक होते हैं, जो जनसाधारण के सामान्य आमदनी के स्तर में वृद्धि करता है। दूसरा, पर्यटक स्थल को आक्रामक प्रचार अभियान द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। और तीसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था का शीघ्र वृद्धि करना।
0: जी जी
1: जी जी।
0: एक बात और भैया, कि जो राष्ट्रीय क्रियात्मक योजना है इनका क्या उद्देश्य है एक बार?
1: इसके लिए नेशनल एक्टिविटी प्लान जो भारत सरकार

0: ने बनाई है, इसमें सात उद्देश्य आते हैं। पहला, क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास है। दूसरा उद्देश्य इसका रोजगार के अवसर को बढ़ाती है। तीसरा उद्देश्य है मध्यम वर्गीय समाज के लिए घरेलू पर्यटन का विकास होता है। और चौथा, राष्ट्रीय विरासत और पर्यावरण का संरक्षण और पुनर्भंडारण होता है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास होता है।
1: जी जी।
0: छठा, विविधीकरण उत्पादन के आधार पर पर्यटन का प्रोत्साहन होता है।
1: अच्छा।
0: और सातवां, विश्वव्यापक पर्यटन में भारतीय हिस्सा को बढ़ाना होता है।
1: अच्छा अच्छा, एक बात ये बताएं भैया कि ये जो अपने देश में ही पर्यटन स्थल कहाँ कहाँ पे हैं मुख्य रूप से?
0: जी, भारतीय भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भारत में चार क्षेत्रों में बटा हुआ है।
1: जी।
0: जैसे पहला उत्तर भारत है, अब इसमें नई दिल्ली है। नई दिल्ली को ये तो भारत की राजधानी है और संस्कृति की धनी मानी जाती है। दूसरा आपका आगरा, ताजमहल का शहर है और भारत में पर्यटन के मुख्य आकर्षण का कारण है। शिमला हिमालय से में शानदार हिल स्टेशन के कारण प्रसिद्ध है। देहरादून यह उत्तराखंड की राजधानी और विलक्षण दृश्य के लिए प्रसिद्ध है, जैसे नैनीताल है, झील है, जलकुंड है। दूसरा आपका पूर्वी भारत आता है, जिसमें जो पर्यटक स्थल कलकत्ता, भारत की सांस्कृतिक राजधानी और इसको टैगोर और सत्यजीत राय का शहर कहते हैं। गुवाहाटी क्षेत्र में पर्यटन के मुख्य आधार हैं। शिलांग मेघालय की राजधानी तथा रसभरी हरियाली के प्राकृतिक दृश्य हेतु प्रसिद्ध है। पटना भारत में पुराना शहर और ऐतिहासिक स्मृति चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है। जमशेदपुर महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर और टाटा उद्योग का घर है, जिसके कारण ये पर्यटक स्थल प्रसिद्ध हैं। इसके साथ साथ ये आपका जो तीसरा केंद्रीय भारत है, जिसमें इलाहाबाद है, ये प्रयाग शहर और कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी हिंदू का पवित्र शहर और प्रसिद्ध घाट तथा मंदिर उपस्थित हैं। तीसरा आपका भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी और पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। और चौथा है पश्चिम भारत, जिसमें मुंबई भारत की व्यावसायिक राजधानी और शहर जो कभी सोती नहीं है। पणजी गोवा का मुख्य शहर, सुनहरे समुद्री तट तथा प्राचीन जल के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा आपका उदयपुर, महलों का शहर और झील पिचियोला के मध्य झील महल स्थित प्रसिद्ध है।
1: हम कहीं तो भैया विनोबर शर्मा जी, आप बहुत अच्छी जानकारी दें। निश्चित रूप से जानकारी से किसान भैया लाभ उठे। ये जानकारी देख लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ चंदन भैया, हम कहीं देखा पर्यटन के और अर्थव्यवस्था के लेके का तालमेल बा भैया। ये पर विनोद शर्मा भैया कितना फरिया के बताएं जाऊना है। निश्चय रूप से भाई देखा ये वार्ता जौन बाटे भाई लाभप्रद साबित हो जाऊना है अपने जो भी लोग हैं क्षेत्र से जुड़े चाहता।
3: बिल्कुल। एक बात और
2: बता भैया, बता
3: भाई। देखा जौन नए बाग बाटे न, मैं उनकर भी समय समय पे देखभाल करत रहा, बहुत जरूरत होत है।
2: बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हम कहीं देखा है समय भाई बारिश में जो पहले पेड़ लगे भाई, भाई ये समय उनकर देखभाल कैसे की जाए भाई, और कैसे और उनका बेहतर जो ना है कहे के मतलब ओकर सेवा की जाए जो भाई। देखा वैज्ञानिक तौर तरीका भी बाटे भैया जो ना है।
3: जरूर हा? जरूर।
2: तो भाई बताओ का बाटे है विषय
3: भाई। देखा डॉक्टर शैलेंद्र देव दुबे से जौन भैया बतियान बाटे ना, तो वहीं तो सोचते है कि एका पंचन को सुनवा दे।
2: सुनवा दे भैया। किसान भाई, हमें खेती किसानी में देखा तरह तरह के खेती की जाता है, वही में बहुत समय किसान भाई देखा बाग बागवानी भी लगावत हैं। तो नए बाग के देखभाल कैसे की जाए, कैसे अच्छे कर पौधे का निर्माण होए और आगे चल के लाभ कैसे मिले के बारे में जानकारी दे के खातिर आज हमारे बीच में हैं श्री शैलेंद्र दुबे जी। आप जिला उद्यान अधिकारी मिर्जापुर से हैं भैया। आपके कार्यक्रम में हमारे बहुत बहुत स्वागत बाटे। आप बतावें सबसे पहले कि जो नए बाग आए उनका बचावे के सबसे अच्छा तरीका काया है?
4: किसान भाइयों, आपने माह जुलाई अगस्त के महीने में पौधा रोपित कर दिए होंगे। बाग लगाने के बाद इनको निरंतर पानी देना, निराई गुड़ाई करना, खरपतवारों को निकालते रहना, गर्मी सर्दी से बचाना एवं अन्य शस्त्रक्रियाएँ करना बहुत आवश्यक है। नए रोपित बागों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल। आप बताएं कि मतलब सिंचाई नए बागन में कब कब की जाए, उसके बारे में।
4: नए रोपित बागों को थोड़े थोड़े दिनों के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए, इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। गर्मी में 4-5 दिन में तथा सर्दियों में 8-10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। किसान भाइयों को यहाँ हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पर डाप मोर क्राप कंपोनेंट में 80-90% अनुदान पर नवरोपित बागों में ड्रिप संयंत्र की स्थापना हो रही है। जिसके अंतर्गत

0: लघु तथा सीमांत कृषकों को 80% तथा सामान्य कृषक को 90% अनुदान मिल रहा है।
1: तो भैया एक चीज बताऊं भैया कि जैसे नया बाग बांटे तो पौधा बहुत छोटा होता है उस समय, इसमें घास फूस और खरपतवार भी अधिकता होता है और हानिकारक होता है, तो एक नियंत्रण कैसे करें बाग बगीचा?
0: खरपतवार नियंत्रण एक महत्वपूर्ण सस्य प्रक्रिया है। खरपतवार समय समय से खुरपी की सहायता से निकालते रहना चाहिए। यदि ज्यादा मजदूर लग रहे हैं तो मेड़ों पर या बीच बीच में दवाओं का भी छिड़काव करके खरपतवार को जला देना चाहिए।
1: तो बहुत बढ़िया बताएं कि खरपतवार कैसे आसानी से निकाला जाए। एक चीज बताऊं भैया कि देखे जैसे कोई भी पौधा, जैसे बारिश के मौसम में तो भैया पानी भी हल्की धूप भी मिलता रहता तो अच्छे से उग जाता, लेकिन मौसम जब बदलता है चाहे सर्दी को हो चाहे गर्मी का मौसम हो, तो इन ऋतु में जो नए बाग हैं उनका देखभाल कैसे की जाए?
0: किसान भाइयों, नवरोपित बागों में बड़े पौधों की अपेक्षा छोटे पौधों पर शीतलहर या गर्मी का प्रकोप अधिक होता है। इसमें पौधों को तीन तरफ से सरकंडे या बाजरे की झोपड़ी बना करके पौधों को ढक देना चाहिए और उत्तर पश्चिम दिशा में पौधों को धूप के लिए खुला छोड़ दें। सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए बागों पर समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बाग के पश्चिम तरफ वायुरोधक जिसे विंडब्रेक कहते हैं, पौधों का रोपण करके गर्मी या सर्दी से बचाया जा सकता है। वायुरोधक पौधे होते हैं जैसे देसी आम, जामुन, शहतूत या बबूल का पौधा आप रोपण कर सकते हैं, तो पश्चिम तरफ से जो लू हवाएं आती हैं या सर्द हवाएं आती हैं तो उससे हमारा नवरोपित पौधे बचे रहेंगे।
1: खेती किसानी में भी देखा खाद उर्वरक की आवश्यकता पड़ा था, जैसे पौधे भी दूर दूर रहा थे, तो एमा कैसे खाद उर्वरक दिया जाए, कितनी मात्रा में दिया जाए कि उनका विकास अच्छे से हो?
0: जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि पौधों के वृद्धि और विकास के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। खाद एवं उर्वरक को साल भर में 2 बार देते हैं, 1 फरवरी मार्च के महीने में, 1 जुलाई अगस्त के महीने में। तो 100 ग्राम नत्रजन, 80 ग्राम फॉस्फोरस तथा 60 ग्राम पोटास प्रति वृक्ष प्रति वर्ष की दर से देना चाहिए। इसकी आधी मात्रा फरवरी मार्च के महीने में तथा आधी मात्रा जुलाई अगस्त के महीने में देनी चाहिए। साथ में 3 टोकरी गोबर की सड़ी खाद अथवा 1 टोकरी केचुए की खाद का भी प्रयोग करने से उसको अन्य जो तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को मिल जाती है।
1: देखा ही जाता था कि चाहे जो भी पौधा हो जब शुरू शुरू में लागत भी थोड़ा सा बढ़वार गए तो कहीं आड़ा तिरछा हो जाता है तो कहूँ नीचे ही फैलने लागत है, तो ऐसी अवस्था में पौधा के वृद्धि अच्छी हो ऊंचाई तक जाए एक ही लोग आकार देने के लिए भी काका उपाय बा जो किसान भाई कर सकते हैं?
0: किसान भाइयों, जैसा आप पौधा रोपित करते हैं जब तक वो एक आदर्श उचित आकार नहीं होगा उसमें अच्छी फलत नहीं होगी, क्योंकि एक आदर्श पौधा हमारा एक छाते की तरह होना चाहिए। जब तक हर शाखाओं में धूप और प्रकाश तथा हवा नहीं पहुंचेगा उसमें अच्छी फलत नहीं होती है। तो जो भी आप फलदार पौधे लगाए हैं पहले शुरू में उसको 3 फीट की ऊंचाई तक सीधा जाने दीजिए, उसके बाद उसमें चारों दिशाओं में एक स्वस्थ कल्ला ले लीजिए, मतलब ऊपर से 3 फीट की ऊंचाई पर उसको काट देते हैं, फिर कई कल्ले निकलते हैं, तो केवल हमको चारों दिशाओं में 4 स्वस्थ कल्ले ही लेना चाहिए, शेष कल्लों को काट देना चाहिए। यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हमारा कलमी बड बधा हुआ है उसके नीचे तमाम अन्य कल्ले देसी कल्ले निकालते हैं उनको भी समय समय पर हटाते रहना चाहिए, काटना चाहिए, नहीं तो हमारा जो कलमी पौधा है वो सूख जाता है और उसके स्थान पर देसी पौधे उगाते हैं। तो इसलिए ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा कलमी पौधा ही चले और देसी में से जो भी कल्ले निकले उसको तोड़ देना चाहिए।
1: तो बहुत बढ़िया बात बताएं कि जो कलमी पौधा भैया के जो प्रजाति भी नीचे के देसी भाव का हटाई दे चाहिए। ये बताएं कि जैसे बारिश अब खत्म हो बाटे तो इस समय पे दीमक की समस्या बहुत आवत है पौधन में, तो एक से कैसे बचें?
0: जो नवरोपित बागे हैं उसमें इस समय दीमक का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। नई रेतीली या बरानी इलाकों में दीमक का प्रकोप सबसे ज्यादा है। इसका लक्षण यह है कि यह कीट जमीन के अंदर रह करके पौधों की जड़ों को खाने के साथ तने के अंदर भी खोखला कर देता है। कई बार तने के ऊपर मिट्टी की सुरंग बनाकर अंदर से छाल को खाता है। रोकथाम के लिए अब वर्तमान समय में बागों की गहरी जुताई कर दें अथवा फोरेटेंजी एक दवा आती है

0: टेंजी गुड़ाई करने के बाद जड़ के आसपास डाल देना चाहिए।
1: बाग में भी अगर जल्दी फल आ गया या पौधा में या फूल आ गया तो बड़ा खुशी होती है कि दिखाई अच्छी प्रजाति का रहा। एके पीछे कौन सी भ्रांति बाटे, अगर ऐसी अवस्था होत बाटे तो किसान भाई का उपाय करें ओके बारे में बताएं।
0: अगर 3 साल के पहले कलमी पौधों में या किसी पौधों में फूल आता है तो उसको हम बंगरा फूल कहते हैं। किसी भी हालत में किसान भाइयों 3 साल से पहले पौधों में फूल या उत्पादन लेने का प्रयास न करें। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा जो फल पौधा है वो कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे सूख जाता है। किसान भाइयों अगले फरवरी मार्च के महीने में उसमें जब फूल आना शुरू हो तो उसको आप काट दें और 3 साल के बाद ही उसमें फूल लें और फल लें।
1: बागवानी में जो मृदा परीक्षण का कार्य बाटे, जैसे नया बाग लगत मत एक मृदा परीक्षण का लगाए के बादो किया जा सकत है या उसके पहले ही?
0: जो किसान भाई बाग रोपित कर दिए हैं और मृदा परीक्षण नहीं कराए हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो मृदा परीक्षण कराएं। पौधों के वृद्धि और विकास के लिए 17 तत्व की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आपके खेत में सूक्ष्म तत्व की कमी है और आप DAP यूरिया डालते चले जा रहे हैं तो इससे हमारा उस तत्व की पूर्ति नहीं हो रही है। अगर आप मृदा परीक्षण करा लेते हैं तो इससे ये पता चल जाएगा कि हमारे जमीन में हमारे मृदा में किस तत्व की कमी है और हम उस तत्व को पूरा करके अपना पौधा स्वस्थ कर सकते हैं।
1: अंतःशस्त्र क्रिया भी का ये पौधों में संभव बाटे कि जो किया
0: जी
1: जा
0: हाँ,
1: सकता?
0: जो नवरोपित बागे हैं उनमें पौधे दूरी दूरी पर होते हैं। जैसे आम 10 x 10 मीटर की दूरी पर लगाए हैं, अमरूद 6 x 6 मीटर की दूरी पर लगाए हैं। 3 साल तक जब तक पौधा बड़ा नहीं हो रहा है तब तक उसके बीच बीच में हम सब्जी की खेती कर सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं, औषधीय फसलों की खेती कर सकते हैं। ना कुछ हो तो पपीता लगा करके हम अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दुबे जी, आप हमें कार्यक्रम में आए और नए बाग की देखभाल कैसे की गई कहीं कीन जाए एक के बारे में बढ़िया से जानकारी दें। निश्चय रूप से हमारे किसान भाई लाभान्वित तो ही जानकारी दे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया,
1: भैया
2: देखा जो नए बाग बागवान भाई लगाए बाटे ओकर देखभाल कैसे करें। देखा डॉक्टर शैलेंद्र देव दुबे भैया कितना बात फरियाई के बताए ना, फरियाई फरियाई तू पूछ ही लिया भैया।
1: बिल्कुल भाई, हमें देखा एक महत्वपूर्ण बात ही रही कि डॉक्टर साहब बताएं के ढंग से
2: हाँ
1: कि अगर कोनो भी किसान कोनो भी बाग लगावता है,
2: हाँ
1: अगर यह सोच के लगावता है कि हम जल्दी से जल्दी फल ले ले
2: हाँ
1: तो उससे भाई देखा किस तरह से नुकसान किसान भाई को हो सकता है, खास करके भाई वो पौधा जो ना है वो भाई कमजोर पड़ जाए।
2: बिल्कुल
1: हाँ,
2: बढ़िया भैया
1: यही मेरा
2: बिल्कुल
1: मैंने कहा था ना कि भाई पहले नींव मजबूत करा। तो
2: हाँ
1: भाई किसान भाई देखा कोनो भी चीज़ में भाई जल्दबाजी नहीं किन जाते हो
2: भैया,
1: ना।
2: वो कहा जाता ना कि भाई देखा जोन फलत लेग वाला काम बा ना वो एक पौधा के निश्चित आयु भय के बाद ही। भाई हम ही कहता है कि हमें फूल आवे लागे,
1: बिल्कुल।
2: हमें बौर आवे लागे, तो एक मतलब ही ना है कि उसी तू फलत ले ले भैया। वो देखा वो कहा था बताएं भैया ना कि भाई वो फूल बा या बौर बा भैया ओका तोड़ दे, उसी अगर फल न लेबे 3 साल बाद ही लेबे फल तो निश्चित तौर पर उसी पौधा के भी विकास पर्याप्त हो जाए। अब बाद में जब फल लेबे तो उसी फल भी ज़्यादा मिले।
1: बिल्कुल भाई, हम कहीं अगर इस तरह से किसान भाई अगर कार्य करें तो निश्चय रूप से उनको बगीचा बांटे भैया वो बहुत बढ़िया रहे। एक बात यह हो भाई, देखा आजकल भाई कृषि विविधीकरण में भैया जाना है भाई, सिर्फ परंपरागत खेती किसानी पर नहीं जोड़ दिया
2: ना
1: जाता
2: ही ना ही भैया
1: भाई,
2: ना ही
1: ओके साथे साथे बागवानी बाटे, साग सब्जी खेती बा भाई, फूल के भी खेती बाटे।
2: हाँ हाँ
1: जैसे भाई एक समय समय पे जो आर्थिक जरूरत बाटे ओका पूरा कीन जा सकत है। तो हम कहे किसान भाई यहूँ तरफ भी ध्यान केंद्रित करें जो ना है, हम कहे।
2: बिल्कुल भाई, कहा जाता ना कि भाई लीक से हट के थोड़ा सा काम करें, कुछ नया करें।
1: बिल्कुल।
2: भैया घिसा पिटा वही ना है कि धान लगाए दें भैया, गेहूं बोए दें, तो भाई देखा ये कुल में तो चला भाई तो खाइन भरे खोए ना।
1: बिल्कुल
2: लेकिन
1: बिल्कुल।
2: अगर नकदी फसल के रूप में सब्जियन के खेती हर मौसम में कर लें, कुछ भैया अगर क्षेत्र ऐसा बा जहाँ गन्ना की बुआई हो सके तो गन्ना बो दें,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: आलू की बुआई कह दें, मटर की बुआई कह दें, तो भाई इन्हें फसल ऐसा है कि थोड़े समय में इतना पैसा दे दें कि तू आज़ाद हो जाबे, आबाद हो जाबे, और भाई उसी तुम्हार घरेलू खर्च के साथ साथ लड़कियन बच्चन की पढ़ाई खर्च भी चल जाए।
1: बिल्कुल भाई बढ़िया कहें हम कही भाई देखा बात बात कही होत रही गीत गाने सुना दिया
2: जाए। राम कृपाल यादव संघाती गावा भैया आवा एक देवी गीत सुन लिया।

0: भैया राम कृपाल यादव संघातिन का एक भाई गमरई तो होगी। अब भैया एक चीज और कहा बाटे
1: बताओ भैया बताओ
0: कि भाई देखा हमसे तरह तरह के कार्यक्रम के विशेषज्ञ भैया के माध्यम से भाई देखा खेती संबंधित पशुपालन संबंधित बागवानी संबंधित भाई सुनावा जात रहा था।
1: हाँ हाँ।
0: लेकिन किसान भाई इस तरह के कार्यक्रम के सुन के का कुछ गुणत बाटे कितना ओका अपने पशुपालन खेती बाड़ी में अपनावत बाटे भाई देखा ये भी महत्व रखत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भैया।
0: अब भाई देखा कबो कबो होते ना कि किसान भाई सोचते हैं कि यह कार्यक्रम में थोड़ा सी ई बात और होते तो और अच्छा होता है।
1: तो बिल्कुल भाई यही बिना तो हम कहीं उनका सुझाव हमेशा लीन जाते हैं। हाँ
0: सही
1: तो भाई देखा एक नंबर बा पहले अपने किसान भाई का बतावें और अपने सबके कार्यक्रम के बारे में का राय बा और का सुझाव दे सकते हैं उसका जानकारी दे सकते हैं।
0: तो भैया हम एक व्हाट्सएप नंबर बाटे एक बतावत बाटी किसान भाई अपन सुझाव जाना है ये नंबर पे हमें सब तक पहुँचा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: नंबर भैया लिख लें 800-4926250।
1: ये भैया एक बार और बता दे नंबर
0: नंबर देखा बतावत बाटी 800-4926250।
1: भैया ये तो बात भाई नंबर पे भाई अपने जो भाई फोन बा व्हाट्सएप से आप दे सकते हैं अपन जो प्रतिक्रिया बाटे साथे हाँ। साथे अपन सुझाव भी दे सकते हैं। एक बात यो कह भाई हम कह भाई आकाशवाणी प्रयागराज के जो भाई फेसबुक पेज बाटे वहाँ पे भी जाए के अपन सुझाव जो है दे सकते हैं जो
0: अच्छा, हाँ? अच्छा, अच्छा, अच्छा।
1: हम तो कही भाई देखा खेती किसानी हमेशा एक बात पर निर्भर बा हम कही मौसम पे।
0: सही कह भैया
1: भाई अगर मौसम तो अनुकूल बा तो किसान के जीव बड़ा हरियर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो भाई देखा जैसे हदाई खरीफ करो धान का है भैया
0: ना
1: तो भाई जब से किसान भाई लगाएं थोड़ा सा इंतजार के बाद जो हिसाब से बरसा भाई
0: लगातार बरसा
1: लगातार भैया बरसा भाई
0: जब जरूरत पड़ी तब भाई बरसा।
1: बिल्कुल बिल्कुल जहाँ निगाह गए भैया हरियरिन दिखा दिए।
0: सही सही कह
1: बिल्कुल भाई अगर तरह से अगर मौसम भाई खेती किसानी के लिए अनुकूल रहत है तो भाई किसान भाई के लिए जीव और हरियर रहते
0: हैं भैया हो ऐसी लागत खर्च कम हो जाता।
1: बिल्कुल भाई
0: अब तो धान के सिंचाई में समझा कितना पानी लागत है और वो पानी जो ना है जैसे कम अगर देख पड़े तो भाई लागत कम हो जाए।
1: बिल्कुल भाई किसान भाई अपन मौसम के देख खेती बाड़ी करे अपने स्वास्थ्य के देखभाल करे अब घड़ी कहत भैया विदा लीजिए।
0: बिल्कुल
1: पंचो
0: राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। प्रसारण आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से किया जा रहा था। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। एक आवश्यक सूचना सुनिए। दिनांक 29 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में आपकी थाली से पोषण की खुशहाली विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ प्रत्यक्षा कटियार। श्रोतागण मोटापा, खून की कमी

में मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों में उचित आहार विहार के बारे में अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फ़ोन नंबर 0532297462 और दूसरा नंबर है 0532243649 पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532297046 और हमारा दूसरा नंबर 0532242364 आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। ध्यान रहे, व्हाट्सएप पर सवाल के पहले हेलो पनघट अवश्य लिखें। सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से की मिलकर काम करने की अपील। आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर SIR को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को किया जा रहा है कमजोर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए शामिल। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बताया राज्य की नई पहचान। और प्रदेश में पिछले दो दिनों में हुई भारी बारिश से 56 लोगों ने गवाई जान। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा

0: कि देश कल 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है। ऐसा ही एक समूह है सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह, जिससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस समेत कई उत्पाद तैयार कर रही हैं।
1: साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है।
0: सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह का जिक्र मन की बात कार्यक्रम में किए जाने पर समूह की अध्यक्ष कमलेश कुमारी ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है।
2: प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे समूह को चुने और हम लोग मेहनत किए हैं, सावित्री फुले स्वयं सहायता समूह बनाए हैं पहले और आंवला का लड्डू, मुरब्बा, जूस, बर्फी भी यही हमारा प्रोडक्ट बनता है। बहुत खुश है हमारे समूह की महिलाएं भी खुश है क्योंकि दुनिया जानेगी।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। एसआईआर को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस वार्ता में कहा कि एसआईआर के बारे में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। श्री योगी ने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की ये प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर कर रही है।
3: आश्चर्यजनक है कि देश का मुख्य विपक्षी दल और यूपीए गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों की वर्तमान हरकतें और उनकी बयानबाजी अत्यंत ही गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचाने जैसा है। इस बार की एसआईआर की कार्रवाई को लेकर के जिस प्रकार का हायतोबा दलों ने मचाई है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे दिन आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में विशेष व्यावसायिक सत्र आयोजित हुआ, जिसका विषय वैश्विक व्यापार वृद्धि के लिए भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना रहा। सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विश्व में अपनी खास पहचान बना रहा है।
4: विश्व में आज उत्तर प्रदेश पहचाना जा रहा है। 3000 करोड़ से अधिक एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से।

0: मैं समझता हूँ अब उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की बुलेट ट्रेन चल गई है और बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाने वाली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लोगों के जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए इलाज को सुलभ बनाया है।
3: सरकार का प्रयास है कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो, इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं।
2: वाराणसी में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी अशोक यादव ने बताया कि यह योजना गरीब परिवारों के लिए बहुत मददगार है।
4: आयुष्मान कार्ड से घुटनों का प्रत्यारोपण हुआ है, वो फ्री में हुआ है, और इस अस्पताल और डॉक्टर के लिए धन्यवाद, और सरकार के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इस योजना के लाभ का दायरा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया गया है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: प्रदेश में पिछले 48 घंटों से ज्यादा समय से जारी भारी वर्षा और खराब मौसम को देखते हुए प्रभावित जनपदों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी हैं। राहत आयुक्त डॉक्टर हृषिकेश भास्कर यशोद ने आज राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। पेश है एक रिपोर्ट।
5: प्रदेश में पिछले 60 घंटों के दौरान लगातार बारिश और आधी तूफान से राज्य में 56 जनहानि, 107 पशुहानि और 1,000 से ज्यादा मकानों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। 25 सितंबर से 27 सितंबर की सुबह तक प्रदेश में 66.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के 56 जनपदों में अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई है। इस क्रम में प्रदेश के राहत आयुक्त ने आज समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए और प्रभावित परिवारों की दिक्कतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। राहत आयुक्त ने जिलाधिकारियों को अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी लेने और तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों और आपदा विशेषज्ञों को फील्ड में रहकर राहत और बचाव कार्यों की प्रभावी निगरानी करने, प्राथमिकता के आधार पर राहत सामग्री और सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त ने फसल क्षति का तत्काल सर्वेक्षण और आकलन कर नियमानुसार मुआवजा प्रदान करने की कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता पर करने के निर्देश भी दिए हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से की मिलकर काम करने की अपील। आंवला उद्योग में प्रतापगढ़ के योगदान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर SIR को लेकर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को किया जा रहा है कमजोर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में हुए शामिल। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को बताया राज्य की नई पहचान। और प्रदेश में पिछले 2 दिनों में हुई भारी बारिश से 56 लोगों ने गंवाई जान। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज में ये गीत हमने लिया है फिल्म गाइड से। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार एस टी।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गाना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम तो रास्ते। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर की, और इस बार फिल्म का नाम है जब जब फूल खिलें।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सुगम संगीत।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी प्रयागराज है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज की कलाकार हैं मुक्ति शर्मा। आइए पहले सुनते हैं इनके स्वर में ललित किशोरी का भजन।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं मुक्ति शर्मा। आइए अब सुनते हैं इनके स्वर में मदन शास्त्री का लिखा गीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, कलाकार थी मुक्ति शर्मा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिट्ठी आई है।

0: चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को। वंदना राठौर का नमस्कार। श्रोताओं, आपके खूबसूरत से संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और आपके संदेशों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रमुख नेहा गुप्ता जी। नेहा जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन है आपका।
1: वंदना जी नमस्कार और सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार, अभिनंदन। कार्यक्रम चिट्ठी आई है में।
0: और नेहा जी
1: जी,
0: बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं बहुत सारा प्यार दिखाई पड़ रहा है श्रोताओं का
1: जी।
0: तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं।
1: जरूर।
0: और ये पहला संदेश हमें भेज रहे हैं मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन जी और साथ ही उनके फातिमा सोगरा जी।
1: जी।
0: और ये कहते हैं कि हमें आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायी लगते हैं। मनोरंजन तो होता ही है, रोचक जानकारियाँ मिलती हैं और ज्ञानवर्धक यहाँ से जो प्रस्तुतियाँ होती हैं वो होती हैं। और दिनांक 16 सितंबर को आपके केंद्र से प्रसारित अभयकांत तिवारी जी से जब हमने बातें सुनी ओजोन पर
1: जी,
0: तो बहुत

0: अच्छी जानकारी हमें मिली। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी प्रयागराज केंद्र को हार्दिक बधाई।
1: बहुत शुक्रिया दिलशाद हुसैन जी। प्रयागराज और आजमगढ़ देखिए कितने पास पास हैं, और जब चिट्ठी आती है तो बहुत अच्छा लगता है। बाल संघ कार्यक्रम के अंतर्गत और नन्ही दुनिया कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ओजोन पर बातें की थी, क्योंकि ओजोन दिवस था। शुक्रिया, कार्यक्रम अच्छा लगा। हमारे केंद्र से जुड़िए और ऐप पर भी कार्यक्रम सुनिए, तो शुक्रिया।
0: और नेहा जी, बहुत दिनों के बाद आज हमें संदेश मिला है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से
1: वारिस अली खान साहब का।
0: जी हाँ, तो वारिस अली खान साहब ने कहा है ये कि सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह हैं, सलाम अपनी जगह।
1: मतलब क्या बात है, आपने तो दिन ही बना दिया और शामें भी।
0: और वारिस अली खान साहब आगे कहते हैं कि आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम एक से बढ़कर एक है। मैं लगभग 5 से 6 घंटे बड़ी शिद्दत से सुनता हूँ, और नेहा जी आपकी आवाज़ और प्रश्नों के जवाब देने का अंदाज़ बहुत प्यारा है, और साथ ही मेरे बेजुबान मैसेजेस कि जो वंदना जी अपनी मीठी आवाज़ देकर उसे जीवंत करती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं वेब्स OTT पर सुनता हूँ, कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो नेटवर्क की होती है, और 23 सितंबर और 24 सितंबर की बात है, प्रसारण ना मिलने के कारण मैं अपना पसंदीदा शो बोलते नगमे नहीं सुन पाया, जो कि मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। आपसे गुजारिश मेरी ये है कि कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को आप YouTube पर डाल दें, ताकि हम लोग सुन सकें। खास तौर पर चिट्ठी आई है और बोलते नगमे, ये दोनों कार्यक्रम ज़रूर आप YouTube पर डालें। अब हम कार्यक्रम संबंधी प्रतिक्रिया पर आते हैं। 20 सितंबर का कार्यक्रम गजलों की कहकशा में बेहतरीन गजलें सुनाई गई। 20 सितंबर का फिल्म संगीत, जिसे संतोष श्रीवास्तव जी ने महेश भट्ट पर जो केंद्रित था उसे पेश किया, बेहतरीन कार्यक्रम था। महेश भट्ट जी की फिल्मों के मनमोहक गीत सुनने को मिले, सारे गीत दिल में उतर गए। उसी दिन का कार्यक्रम आज इतवार में जीवनलाल गुप्त जी की लिखी झलकी गलत समझा आपने, ये भी सुना, मजा आ गया। कृपया आप मेरी जो शिकायत है उस पर ध्यान दीजिएगा। उम्मीद है कि 27 सितंबर के एपिसोड में मेरे पत्र को जरूर शामिल करेंगी। पिछले 2 सप्ताह से मेरे पत्र शामिल नहीं हो रहे हैं, इसका मुझे दुख भी है। खुदा हाफिज।
1: वारिस अली खान साहब, सच कहूँ तो आपकी कुशल क्षेम हमने लेनी भी चाहिए और पत्र भी तलाशे। हो सकता है पत्रों की संख्या अधिक रही हो तो रह गया हो, लेकिन जहन में आप रहे उस वक्त भी, और वंदना जी तो साक्षी हैं इस बात की। क्यों वंदना जी?
0: पिछले हो सकता है कि मैच के कारण जो 2 बार नहीं गया था,
1: अच्छा
0: शायद ये कारण रहा हो पत्र शामिल ना होने का।
1: तो वारिस अली खान साहब, आप वेब्स OTT पर सुनते हैं, ये जान के बड़ा अच्छा लगा। और रंजीत सिंह जी भी, जो गोरखपुर से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, अच्छा लगता है सुधी श्रोताओं जब आप दूर बैठे हमारे केंद्र को सुनते हैं। अगर ये दिक्कत आ रही है लखनऊ में भी, गोरखपुर में भी और कई जगहों पर, इस बात की चर्चा हमने अपने इंजीनियरिंग विभाग से की है, फिर से करेंगे, क्योंकि जब तक समस्या सुलझ नहीं जाएगी पूरी तरह से, तब तक तो हम इस पर काम करेंगे। और आपको झलकी बढ़िया लगी, कहकशा प्रोग्राम और फिल्म संगीत जो कि संतोष श्रीवास्तव जी, अतुल यादव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पसंद आया। आपका ये जो साधुवाद है, सभी पैनलिस्ट तक ज़रूर पहुंचाया जाएगा। आपने कहा कुछ कार्यक्रम YouTube पर ज़रूर डाल दें, तो सुधी श्रोताओं जो बातचीत है उसे तो हम डाल देते हैं, चूँकि बोलते नगमे का कार्यक्रम बिल्कुल फिल्म संगीत पर ही आधारित होता है, और गानों की रॉयल्टी YouTube से हम लोगों ने अभी तक, हमारे ऑफिस ने नहीं लिया है। तो आप कहेंगे तो समीक्षा तो डाली जा सकती है, लेकिन गानों का बहुत छोटा अंश ही हम डाल सकते हैं। इस पर भी विचार करेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो शुक्रिया। वैसे बोलते नगमे कार्यक्रम अगर बुधवार को ना सुन पाए तो बृहस्पतिवार को 11:30 बजे दिन में प्रसारित किया जाता है, आप वहाँ भी सुन सकते हैं। तो वारिस अली खान साहब, इसी तरह हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनिए, अच्छा लग रहा है।
0: और नेहा जी, कहकशा कार्यक्रम की बात हो रही थी, तो बहुत सारे संदेश हमें मिले हैं
1: जी,
0: जिसमें रूही शीजा जी इलाहाबाद से लिख रही हैं, और इनका कहना है कि संतोष जी ने जो इस सप्ताह प्रस्तुति दी कहकशा कार्यक्रम की, वो हमें बहुत बहुत खूबसूरत लगी है। साथ ही हमसे जुड़ रहे

0: हैं आमोद श्रीवास्तव जी, भुलाई का पूरा गोविंदपुर प्रयागराज से, और ये कहते हैं कि सोमवार को 9:30 बजे आकाशवाणी प्रयागराज से कार्यक्रम सुना कहकशा बहुत ही मनोहारी, भावपूर्ण एवं सरस रहा। कार्यक्रम की प्रस्तुति ने न केवल मन को आनंदित किया बल्कि अपनी साहित्यिक गरिमा एवं भावनात्मक गहराई से हृदय को भी स्पर्श किया। विशेष रूप से कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संतोष श्रीवास्तव जी का प्रस्तुतिकरण अत्यंत प्रभावशाली, सहज, सजीव एवं आकर्षक रहा। उनकी आवाज की मधुरता, शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति तथा प्रस्तुति की प्रभावशीलता ने कार्यक्रम को विशेष ऊंचाई प्रदान की। ऐसा लगा मानो शब्द केवल सुनाई नहीं दे रहे हों बल्कि सीधे हृदय में उतर रहे हों। तो आकाशवाणी प्रयागराज को और संतोष श्रीवास्तव जी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: श्रीजा रूही और आमोद जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कहकशा को पसंद किया है। आपका ये जो साधुवाद है संतोष जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। देखिए, वारिस अली खान साहब ने भी ये बात कही, रूही जी और सजा जी हैं और आमोद जी, इन्होंने भी ये बात कही। तो हमारी ये जो पैनलिस्ट हैं, सावित्री जी हों, शिप्रा जी हों, वंदना श्रीवास्तव जी हों, शुभ्रा हों, संतोष श्रीवास्तव जी, बहुत मेहनत करते हैं मोना जी। तो आप सभी का ये जो साधुवाद है, हम सारे पैनलिस्ट जो लोग हैं उनका हौसला अफजाई करते हैं और आगे तरक्की में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो शुक्रिया आप सभी का।
0: और नेहा जी, ये हैं रणजीत सिंह जी गोरखपुर से, और ये कहते हैं कि इन्हें आकाशवाणी प्रयागराज के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं और सिलसिलेवार इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रमों की समीक्षा भी लिखी है
1: जी।
0: और इनका कहना है कि चिट्ठी आई है, कृषि जगत कार्यक्रम, स्वास्थ्य चर्चा में जो बच्चों में निमोनिया बीमारी पर चर्चा की गई थी, और कृषि जगत कार्यक्रम में मृदा अपरदन के कारण और समाधान, इस विषय पर जानकारी सुनी, बहुत पसंद आई है। हमारे संग्रहालय से जो कार्यक्रम था उसमें प्रख्यात कवि सुमित्रा नंदन पंत जी से जो सुप्रसिद्ध उपन्यासकार इलाचंद जोशी जी की जो भेंट वार्ता थी वो बहुत खूबसूरत लगी। बीते दिनों की यादों के साथ फिराक गोरखपुरी जी से जुड़े, ये अच्छा लगा। लोक संगीत बीना रानी श्रीवास्तव जी का, राजा राम यादव जी का और सूर्य प्रताप पटेल जी के जो अवधि लोकगीत थे वो बहुत पसंद आए हैं। सुगम संगीत चिट्ठी आई है कार्यक्रम सुना, पसंद आया है। तो इनका ये कहना है कि ये सारे जो कार्यक्रम हैं, लोक माधुरी, कृषि जगत, ये हमें बहुत पसंद आते हैं। यानी दिन भर से लेकर रात भर का जो सफर हमारा होता है आकाशवाणी का, उसके साथ साथ रणजीत सिंह जी हमारे साथ रहते हैं।
1: रणजीत सिंह जी, देखिए जरा, आपका नाम हमने वारिस अली खान साहब का जब पत्र पढ़ रहे थे तो भी लिया था, पता नहीं था मुझे कि आपका पत्र वंदना जी पढ़ने वाली हैं। तो ये कहें कि आप सभी की जो बातें जो आप लिख भेजते हैं जहन में कहीं ना कहीं रहती हैं और उसको हम अमल में 100% लाने का प्रयास भी करते हैं। कहीं कोई बात रह जाती है तो दोबारा याद दिलाया करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी कही बातों को पूर्ण करें, उसको देखें। तो अच्छा लगता है कि जब हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम जो सवेरे का कृषि जगत है आपको अच्छा लगता है, लोक माधुरी बढ़िया लगती है, सूर्य प्रताप जी का गायन अच्छा लगता है, चिट्ठी आई है बोलते नगमे पसंद आया। तो भाई, ये जो बातें हैं हम ऐसे यूं ही करते रहेंगे और आपकी कही हुई बात पूरी भी करेंगे। शुक्रिया आपका।
0: ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे और पूरे परिवार के सभी सदस्य हमें कह रहे हैं कि आकाशवाणी प्रयागराज के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। कार्यक्रम हम मोबाइल ऐप पर सुनते हैं। कार्यक्रम चिट्ठी आई गृहलक्ष्मी पनघट, तो मुझे बहुत पसंद आया। वॉइस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत जो नेत्रदान भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी, इसके अंतर्गत जो डॉक्टर मुकेश खरे जी से अभिनव प्रज्ञ पांडे जी की बातचीत थी वो बहुत अच्छी रही। और किस्सा गोई के अंतर्गत सआदत हसन मंटो साहब की कहानी खोल दो बहुत अच्छी लगी। प्रेजेंटर नेहा गुप्ता जी और वंदना राठौर जी को हार्दिक बधाई, साधुवाद।
1: दुर्गेश नागनपुरे जी और आपका पूरा परिवार, आप ग्राम जसवाड़ी से लिख रहे हैं, शुक्रिया आपका, आभार। कहूँ कि डॉक्टर मुकेश खरे आए थे और उन्होंने आँखों पर बहुत अच्छी बातचीत की थी कि ये जो दो आँखें हमें ईश्वर ने दिया है इसको बहुत संभाल के रखना होता है ताकि हम अपने काम कर सकें और दुनिया को देख सकें। और हाँ, अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो अपने नेत्र को दान ज़रूर करें ताकि जो ज़रूरतमंद हो, जो देख सकता है लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं देख पा रहे हैं, हो सकता है कि वो देखने लग जाएं हमारे दान की वजह से। तो भाई, मैंने तो उनकी बात गांठ बांध ली है।

0: और ऐसा करना भी है। आपको अक्सा गोई कार्यक्रम के अंतर्गत कहानी खोल दो पसंद आई, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोगों ने एक कहानी और पढ़ी है कृष्णचंद्र साहब की, उसको भी अगर आपने सुना होगा तो आपको दिल की गहराई में वो कहानी उतरेगी। तो इसी तरह से जुड़े रहिए कार्यक्रम चिट्ठी आई है के संग और केंद्र के साथ भी।
1: और दशरथ सेन, श्रीमती रानू सेन जी हमें सीतामऊ रोड नाटा राम जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से संदेश भेज रही हैं और कहती हैं कि पहली बार इस केंद्र से जुड़ रहे हैं, हमें आपके यहाँ के कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। और साथ ही नेहा जी एक ऑडियो मैसेज भी हमें मिल रहा है
0: जी,
1: और ये है विकास जी
0: जी,
1: जो क्या कहते हैं वो सुन लीजिए आप
0: जी।
2: सबसे पहले नेहा जी और वंदना जी को विकास का प्यार भरा नमस्कार। और नेहा जी, वंदना जी, हम आपका कार्यक्रम सुनते हैं जो आता है बोलते नगमे, वो कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मधु जी एक कार्यक्रम करती हैं आपकी पसंद और वॉइस ऑफ प्रयागराज, इनका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। और इनका तीन का कार्यक्रम एक आया था आपकी पसंद, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इनका कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो आता है हेलो गिर लक्ष्मी, इसमें खासकर जो फोन इन कार्यक्रम होता है ये बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: विकास जी, जब आपका वॉइस मैसेज आता है या जब हेलो गृह लक्ष्मी या हेलो पनघट हम कर रहे होते हैं और आप सभी का जो आपके दोस्त हैं तीन और फोन करते हैं, तो मैं कहूँ कि पूरा स्टूडियो शायद आपके फोन का इंतजार कर रहा होता है कि विकास जी का फोन अब आएगा अब आएगा। तो जिन कार्यक्रमों को आपने पसंद किया है, मधु जी को और अभय जी, अभिनव जी और वंदना जी जो अभी यहीं पर हमारे संग ही बैठी हुई है, तो भाई आपका जो साधुवाद है सब तक जरूर पहुँचाएंगे। अच्छा लगता है जब आप अपने काम से थोड़ा सा समय निकालकर हमारे केंद्र को देते हैं। आप लोग चिट्ठियां भेजते हैं, मैंने उनके चेहरे देखे हैं सुधी श्रोताओं, मैं कहूं कि हीमोग्लोबिन पॉइंट्स में बढ़ जाते हैं। तो जरूर भेजा करिए पत्र।
1: तो देखिए नेहा जी, हीमोग्लोबिन और हम लोग का बढ़ता रहे और संदेश का जो ये जुड़ाव है हम लोगों का
0: जी,
1: ये संवाद का जो एक माध्यम है वो यूं ही लगातार इसी तरह से प्रेम पूर्वक बना रहे हमारा और श्रोताओं का। श्रोताओं को इसके लिए करना होगा यही कि वो हमें संदेश भेजे और संदेश के लिए उन्हें जानना है हमारा पता। तो श्रोताओं लिखिए हमारा पता, कार्यक्रम चिट्ठी आई है, द्वारा केंद्र निदेशक 7-9 दयानंद मार्ग आकाशवाणी प्रयागराज, हमारा पिन कोड नंबर है 211001 और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो श्रोताओं, हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार और अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी आई है। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के थे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनवा रहे हैं बॉबी फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल एक मंदिर से। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं संजय जयकिशन।

अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। फिल्म का नाम है स्वाति, आशा भोसले एवं मनहर उदास की आवाज। गीतकार हैं आनंद बख्शी तथा सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम, आज इतवार है। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं दिनेश भारती की झलकी, संडे की सैर।

0: अरे भाई शर्मा जी घर पर होते हैं क्या?
1: अखा वर्मा जी,
2: चश्मे बद्दूस, आज आप सूट बूट टाई में बाकायदा शेव बनाकर सुबह सुबह कहाँ? किसी तिलक बारात में जाना है क्या?
3: क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं शर्मा जी? वैसे तो वाकई हम मिडिल क्लास वालों को सजने धजने का सुअवसर तो यदा कदा सहालक वहालक में ही मिलता है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज हम किसी न्योते बारात में नहीं, सिर्फ नए साल का पहला संडे मनाने आउटिंग पर जा रहे हैं।
2: नए साल का पहला संडे मनाने? कमाल है वर्मा जी। भाई आपको तो मैंने होली दिवाली भी इतने शानदार तरीके से मनाते नहीं देखा, फिर आज ये संडे सेलिब्रेशन। लगता है इस संडे में कोई खास बात है।
3: ऐसा कुछ खास बात नहीं है, बस मूड हुआ कि आज मिसेस को कहीं आउटिंग करा लाऊं।
2: अरे तो इसमें इतना झेपने की क्या बात है भाई, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे आउटिंग पर मिसेस को नहीं किसी प्राइवेट कंपनी को ले जा रहे हैं। अरे भाई जाइए जाइए, श्योर जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप दोनों को तो साथ निकलते मैंने मुद्दतों से नहीं देखा, इसी बहाने भाभी का भी चेंज हो जाएगा।
3: दरअसल इसी सिलसिले में आपकी थोड़ी मदद चाहता था शर्मा जी।
2: हाँ हाँ, शौक से, बहुत शौक से। हाँ, बड़ी खुशी होगी मुझे आपकी मदद करके।
3: दरअसल मैं आपसे ये गुजारिश करने आया था कि शाम तक के लिए अगर आप हमारे बच्चों को अपने घर में रख लें तो।
2: क्या मैं आपके बच्चों को?
3: आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे मैं घर में रखने के लिए बच्चे नहीं AK-56 राइफल दे रहा हूँ।
2: अरे तौबा कीजिए जनाब, आपके सातों बच्चे AK-56 राइफल से ज्यादा खतरनाक हैं।
3: आप मजाक कर रहे हैं शर्मा जी?
2: मजाक और आपसे? अजी वर्मा जी, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, माफी चाहता हूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है।
3: ये आप क्या कह रहे हैं शर्मा जी, अभी अभी तो आप हमारी मदद करने को कह रहे थे।
2: अरे मैं आपकी मदद करने

0: को कह रहा था वर्मा जी, आपके शैतान बच्चों से अपने घर की दुर्गति करवाने की बात थोड़ी ही कर रहा था।
1: देखिए शर्मा जी, मैं भी तो पड़ोसी होने के नाते आपसे थोड़ी सी मदद लेने आया था, लेकिन आप तो खाम खाम बनियाई से बाहर हुए जा रहे हैं। अरे बच्चों को नहीं रखना तो मत रखिए, लेकिन मेरे बच्चों को ऐसा कहने का आपको क्या हक है?
0: हक? ये खिड़की के टूटे छिटके शीशे देख रहे हैं आप? ये आपके उन्हीं बच्चों के गेंद खेलकर तोड़ने का नतीजा है। मुझे क्या हक है उन्हें शैतान कहने का? अरे शैतान तो उन्हें सारा मोहल्ला कहता है।
1: अरे आप अपनी बात करिए, मोहल्ले का ठेका नहीं ले रखा है आपने? अरे खिड़की का शीशा ही तो तोड़ा है, कोई आपका सिर तो नहीं तोड़ दिया जो आप इस तरह चीख चीख कर मोहल्ला सरपन उठाए ले रहे हैं? है? तनख्वाह मिलने पर हरजाना ले लीजिएगा।
0: हाँ हाँ, दे दीजिएगा और बख्शे मुझे।
1: हाँ ठीक है, आप भी रामलीला कमेटी के चंदे का पूरा हिसाब दे दीजिएगा।
0: अजी हिसाब ही नहीं, जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी दे दूंगा। बड़े आए रामलीला कमेटी के संगठन मंत्री बनने, अपने बच्चों को तो संभाल नहीं सकते, चले हैं रामलीला कमेटी का संगठन मंत्री बनने।
1: देखिए शर्मा जी, इट इज टू मच।
0: इट इज नॉट टू मच। योर

0: यहाँ ले लीजिएगा।
1: हाँ हाँ दे दीजिएगा, अब बख्शिए मुझे।
0: हाँ ठीक है, आप भी रामलीला कमेटी के चंदे का पूरा हिसाब दे दीजिएगा।
1: अजी हिसाब ही नहीं, जरूरत पड़ी तो इस्तीफा भी दे दूंगा। बड़े आए रामलीला कमेटी के संगठन मंत्री बनने, अपने बच्चों को तो संभाल नहीं सकते, चले हैं रामलीला कमेटी का संगठन मंत्री बनने।
0: देखिए शर्मा जी, इट इज टू मच।
1: इट इज नॉट टू मच, योर चिल्ड्रन आर टू मच। अकेले घूमने फिरने का इतना शौक था तो इतने बच्चों को सालाना कैलेंडर की तरह क्यों छाप देते हैं? आपके बच्चे शैतान के औलाद हैं, कौन संभालेगा इन्हें?
0: अरे जबान संभाल कर बात कीजिए शर्मा जी।
1: अरे घर जाकर अपने बच्चों को संभालिए वर्मा जी, हमने ठेका ले रखा आपके बच्चों को संभालने का।
0: अरे तो मत संभालिए, आप क्या समझते अपने आप को, मोहल्ले में एक आप ही है, शरीफ और भले लोग भी हैं, वो अपने पास रखकर आपके घटियापन के गाल पर तमाचा लगा देंगे।
1: अपना भी गाल सामने कर दीजिएगा, पूरा पूरा मजा मिल जाएगा शरीफ और भले लोगों की शराफत का।
0: सरपुटे जी, ओ सरपुटे जी, अब है चुप, शरीफ आदमी भी नहीं पहचानता।
2: टाइगर,
0: बाप रे, कमाल का सुरक्षा संतरी रखा है, न मोहल्ले वालों का ख्याल करता है, न शरीफ आदमी पहचानता है।
2: ऐसी कोई बात नहीं है वर्मा जी, शरीफ आदमियों को खूब पहचानता है, उन पर कभी नहीं भोगता।
0: जी
2: कोई बात नहीं, कहिए किस प्रॉब्लम की वजह से उपस्थित हुए?
0: असल में मैं और मेरी पत्नी।
2: डोंट दोहराइए एनी बात, स्टार्ट इन फुल स्पीच विदाउट एनी भूमिका कॉमा एंड फुल स्टॉप, स्टार्ट।
0: कई सालों से मैं अपनी पत्नी को जच्चा बच्चा अस्पताल छोड़कर कहीं और घुमाने नहीं ले जा सका। उस अपराध बोध से पीड़ित नए वर्ष के उत्साह में मैंने अपनी प्राचीन पत्नी के साथ नवीन वर्ष के इस रविवार को यानी आज शहर घूमने का भीष्म निश्चय किया है, ताकि 1950 के मॉडल वाली अपनी पत्नी को 1994 के प्रकाश में जगमगाते इस शहर का दर्शन करा सकूं। बात यह है सरपटे जी कि प्राचीन काल की मेरी पत्नी ने नई रोशनी का नव वर्ष कभी नहीं देखा, लेकिन अपने सातों बच्चों को साथ लेकर जाने में खर्च और मुसीबत दोनों बढ़ जाएगी और आनंद उत्साह तथा एकांत तीनों घट जाएंगे। इस विचार से एक सच्चे समाज सेवक की तरह मेरी समस्या का निराकरण कीजिए और अब से रात तक के लिए मेरे सातों बच्चों को शरण दीजिए।
2: व्हाट व्हाट टोल्ड, यानी योर मतलब है कि यू हस्बैंड एंड वाइफ बोथ अकेले हैंड में हैंड डालकर शहर में घूमे एंड आई आपके 7 लौंडों को गोद में लेकर हाउस में टहलूं?
0: ये आप क्या मजाक कर रहे हैं सरपुटे जी?
2: जनाब मजाक माइसेल्फ नहीं कर रहा हूँ, मजाक योर सेल्फ के 7 लौंडे करते हैं मोहल्ले वालों के साथ। वेरी अगली मजाक, वेरी क्रूअल मजाक, मेरे इस मासूम टाइगर के साथ कैसा भद्दा मजाक किया है जानते हैं? लुक लुक माई कुत्ता पूंछ मिस्टर।
0: अच्छा जी,
2: इसके पूछ देखो, बिफोर दिवाली ये कितनी प्रेस्टिजियस टेल, आई मीन शानदार दुम थी, और आफ्टर दिवाली ये जलकर आपकी मूछ की तरह हो गई है। जानते हो हाउ? दिवाली के दिन योर 7 लौंडो ने इसके लेग्स बांधकर इस पुअर की दुम में बम और पटाखे बांधकर दाग दिए। एंड यू आर सेइंग आई आपके उन 7 टेररिस्ट को अपने होम में शरण दे दूं, ताकि तुम्हारो मैं खुद रिफ्यूजी यानी शरणार्थी बन जाऊं? नो, कतई नो। अपने होम में 7 कुत्ते रख सकता हूं, 17 गधे रख सकता हूं, 100 उल्लूज रख सकता हूं, बट आपके 7 तो क्या एक भी लड़का नहीं रख सकता, समझे? मेहरबानी करके माइक गेट से आउट हो जाइए, वरना माइक कुत्ता मुझसे ज्यादा एंग्री है आपसे।
0: मगर मैंने क्या किया है सरपुटे जी, मेरा क्या कसूर है?
2: बिकॉज आप उन गधों के बाप हैं जिन्होंने इसकी दुम दागी है।
0: क्या कहा आपने, मैं गधों का बाप हूँ? अरे मैं आपका फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लिहाज कर रहा हूँ सरपुटे जी, और आप शुरू से ही मेरी बेइज्जती किया जा रहे हैं।
2: व्हाट व्हाट बोले आप? अजी मिस्टर सात पिग यानी सात सुअरों के बाप, इफ माई सेल्फ ने मोहल्लेदारी का लिहाज नहीं किया होता तो अब तक आपके 700 बदमाश लौंडों की रिपोर्ट पुलिस में लिखा चुका होता।
0: क्या आप मुझे पुलिस की धमकी दे रहे हैं मिस्टर नासपीटे?
2: नासपीटे? होल्ड योर जवान मिस्टर, एट वंस मेरे होम से गधे के सींग की तरह डिसअपीयर हो जाइए, अदरवाइज मैं अपने टाइगर

0: ऊपर आप मुझे अपने कुत्ते से कटवाने की धमकी दे रहे हैं। अरे मैंने भी आपके कटहे कुत्ते की रिपोर्ट थाने में न की तो मेरा नाम MPDP वर्मा नहीं, देख लूंगा।
1: ये बोलचंद बाबा, हम आपका लड़का लोग को अपना बाड़ी में रखेगा? अरे बिल,
0: आप तो मजाक कर रहे हैं मुखर्जी बाबू।
1: मजाक? यू मीन जोक? आमी इतना सीरियस टोन में बोलता है और आप बोलता है जी हम जोक करता है। आपका लड़का लोग को देख के हमको दूर से डर लगता है। कि हॉरिबल क्रिचर बाबा, मने एकेबारे भयंकर है, भयंकर।
0: एक पड़ोसी होकर दूसरे पड़ोसी से ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए मुखर्जी बाबू।
1: मने रेलवे का भाड़ा माफी अपना फैमिली हर साल आप बढ़ाता जाता है और शर्म हमको करने को बोलता है।
0: अरे मेरी फैमिली भरती है तो क्या आप उसका टैक्स भरते हैं?
1: टैक्स ना मगर नुकसान तो भरता है। ये हमारे बागान को देखा है आप? आपका सेविन लड़का लोग चोरी से बागान में घुसकर आम अमरूद का कांचा बाका फल तोड़ डालता है, फूल फ्लावर बर्बाद करता है, पत्ती तोड़ता है और आप बोलता है जी हम क्या आपका टैक्स भरता है? ये टैक्स ना तो क्या इनकम टैक्स है?
0: आप झूठ बोलते हैं मुखर्जी बाबू।
1: की बोले? आमी मिथ्या कथा बोलछी है, आमी झूठा है?
0: आप झूठे नहीं, पक्के झूठे हैं।
1: की बोले? आमी पक्का झूठा, मानी मैच्योर लायर।
0: आप पक्के झूठे हैं।
1: देखो देखो, ये फर्स्ट टाइम बोला तो बोला, ये बाकी सेकंड टाइम बोला तो ठीक नहीं होगा।
0: अरे मैं सेकंड टाइम तो क्या 100 टाइम बोलूंगा, आप पक्के झूठे हैं। हाँ, एहसान फरामोश, बेमुरव्वत हैं, फटे अखबार हैं, सड़े आलू हैं।
1: ठीक है, अब हम आपका ऊपर अपना बगान का हर जाना का नालिश पुलिस में करेगा।
0: हाँ, जाइए पुलिस में। हाँ, मैंने भी आप पर मानहान का मुकदमा नहीं चलाया तो मैं भी MPDP यानी कि मायापति दयापति वर्मा नहीं।
1: तुम अपना फैमिली नहीं चलाने को सकता, ये मुकदमा क्या चलाएगा जी?
0: अरे मैं कहता हूँ चुप हो जाइए मुखर्जी बाबू, बस बहुत हो जाएगा।
1: आप यू मीन तुम हमारा सो मेनी थिंग कर देगा, हमारा बाड़ी में आए के हमको टेररिस्ट के माँ की धमकी देगा, आमी पुलिस को रिपोर्ट करेगा, एट वंस करेगा।
0: अरे मैं भी तुम्हारी बदतमीजी की रिपोर्ट करूंगा, चलो थाने चलो।
2: अकेले मुखर्जी बाबू ही नहीं, हम सब चलेंगे। हाँ, आपके अगेंस्ट हम ज्वाइंट रिपोर्ट करेंगे।
3: आपने समझा क्या है हम लोगों को?
1: अभी बोलता है कि अपना जवान को लगाम दीजिए वर्मा जी।
0: है? अरे अरे मेरा बस चले तो मैं आपको लगाम देकर इक्के में जोक दू जी।
1: इक्के में? माने हम टट्टू है? ठीक है।
4: ओफो, ये थाना है कि पागल खाना है? चुप हो जाइए, साइलेंट। आपस में लड़ना बंद कीजिए वरना सबको बंद कर दूंगा। अजीब आदमी है, मेरे सामने ही 2 घंटे से कुत्ते समेत लड़े जा रहे। वन बाई वन बोलिए।
2: आपने तो सब कुछ सुन लिया है थानेदार जी, हमारे साथ इंसाफ कीजिए।
4: क्यों वर्मा जी, लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए खेत में अनाज पैदा करते हैं और आप आबादी बढ़ाने के लिए घर में बच्चे पर बच्चा पैदा किए जा रहे। ना आपको बर्थ कंट्रोल से मतलब है, ना बच्चों पर कंट्रोल करने से। करते क्या है आप?
3: ओनली बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और मोहल्ले वालों को अब्यूज करते हैं।
1: इनको दंडित कीजिए थानेदार जी, दंडित कीजिए।
0: अरे अब और क्या दंड देंगे थानेदार जी, इन सातों के चक्कर में नए साल का पहला इतवार शहर में मनाने के बजाय थाने में मनाना पड़ रहा है।
4: शुक्र कीजिए हवालात में नहीं मनाना पड़ रहा है वर्मा जी, होश में आइए, घर जाकर नए साल में कुछ देश के लिए काम कीजिए जिसकी धरती पर आप जी रहे हैं। बच्चों की पैदावार बढ़ाकर देश और देश की धरती पर संकट लाने के बजाय पेड़ पौधे लगाकर उनकी संख्या बढ़ाइए जो पर्यावरण की सुरक्षा करते हैं। देश को बच्चों से अधिक पेड़ पौधों की जरूरत। जाइए, विश यू ऑल द वेरी ग्रीन एंड ग्रैंड न्यू ईयर। जाइए, आप लोग भी जाइए, मगर झगड़ा करके कभी भी थाने मत आइएगा।

आज इतवार है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे दिनेश भारती की झलकी, संडे की सैर। प्रतिभागी कलाकार थे कौशल बिहारी पांडे, माफ़ कीजिएगा, कौशल बिहारी लाल, श्री प्रकाश।

वाजपेयी, राजेंद्र तिवारी, अश्विनी अग्रवाल और शिबू दास, प्रस्तुति मधुर श्रीवास्तव की थी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। दिनांक 29 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में आपकी थाली से पोषण की खुशहाली विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगी प्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ प्रत्यक्षा कटियार। श्रोतागण मोटापा, खून की कमी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा अन्य बीमारियों में उचित आहार विहार के बारे में अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए दोपहर दिन में 1:15 से 2 बजे तक फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0532-2970468। दूसरा नंबर है 0532-2423649। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 8004926250। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम भी 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई

0: की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
0: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और

0: शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
2: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth. Technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure, and take the responsibility.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
3: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
4: भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
3: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
5: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और UP के इतिहास।
3: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का।

0: एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200 meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
3: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंक

0: आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
0: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
0: Kuch hi dino baad 2 October hai. Pujya Bapu ki jayanti ka din. Bapu ne hame jeevan ke bahut se mantra diye hain. Swachhata bhi unme se ek hai. हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. He said the initiative aims to take local products to national and global markets and urge people to promote the vocal for local message during the upcoming festive season. Defence Minister Rajnath Singh has said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi today. He said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy if threatened. He said as long as a neighbouring country continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it.
2: भारत शांति चाहता है।
3: इंडिया वांट्स पीस बट इट विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स सिक्योरिटी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इंडिया बिलीव्स इन डायलॉग बट इफ एनी कंट्री प्रमोट्स टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग विद दैट कंट्री। कंट्रीज दैट यूज टेररिज्म एज अ टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड सपोर्ट टू टेररिस्ट्स मस्ट बी सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट टेररिज्म कैन नेवर बी अ स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर एनीवन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस।
2: एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: दिस इज आकाशवाणी गिविंग यू द न्यूज।
4: स्टे अपडेटेड, स्टे अहेड। फॉलो अस ऑन एक्स at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
1: Welcome back to the news at 9. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah flagged off the country's first LNG-powered train from Sabarmati Station in Gujarat today, marking railway's shift towards cleaner energy. The train uses a dual-fuel system powered by diesel and liquefied natural gas. The initiative is being seen as a step towards greener rail transport and India's net zero carbon goals. Mr. Shah also launched a series of railway development projects worth more than 1,500 crore rupees. Addressing the gathering on the occasion, Mr. Shah said, Indian Railways has undergone major transformation over the past 12 years.
5: In 2015-16, the railways used diesel worth 293 crore rupees. By 2024-25, this had come down to 108 crore rupees. Our aim is to bring diesel consumption down to zero by 2030 and save Indian currency. Moreover, 99.6% of the railway network has already been electrified. We will also complete the remaining 0.3% very soon.
6: 0.3% jo baki hai wo bhi hum pura kar lenge.
1: Prime Minister

0: Spotlight.
1: Ahead.
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फजाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदाद व शुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुद मुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खां है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर साबरमती से एलएनजी से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो माहौल के लिए साजगार तवानाई के मकसद से रेलवे में की गई एक बड़ी कामयाबी है। एशियन गेम्स में भारत ने खवातीन की लंबी छलांग और मर्दों की ऊंची छलांग नेज मर्दों और खवातीन के स्क्वैश सिंगल्स में चांदी के तमगे हासिल किए हैं और डेकेथलॉन खवातीन की स्टेपल चेज नेज 200 मीटर के मुकाबले में कांसे के तमगे जीते हैं और भारत ने उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंदाश्विली ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। उसने ओपन जुमरे में चांदी और खवातीन के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट फजाई हमला और 2025 में किया गया ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज़ बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कौम से खिताब कर रहे थे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत कल सरहद पार सर्जिकल हमले के 10 साल पूरे होने की याद ताज़ा करेगा। भारत ने 2016 में 28 और 29 सितंबर की रात ये हमले किए थे, जिनमें उस महीने के आगाज में उड़ी में किए गए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि

0: दुनिया भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को देखकर हैरान, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर लिया था। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को दहशतगर्दाना हमलों की वजह से पैदा देरीना दर्द का भारत का एक फैसला कुन जवाब करार दिया। जनाब मोदी ने कहा कि पिछली दहाई में 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट फजाई हमलों से 2025 के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार एक वाजह पैगाम दिया कि दहशतगर्दाना हमलों का तोड़ जवाब दिया जाएगा।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: जनाब मोदी ने उस वक्त को याद किया जब सिलसिलेवार बम धमाके मुल्क में अक्सर होते थे। उन्होंने 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में किए गए सिलसिलावार बम धमाकों का जिक्र किया जिनमें बहुत से लोग हलाक हो गए थे, जिसके कुछ ही हफ्ते बाद मुंबई में 26/11 के दहशतगर्दाना हमले हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत आज दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए है और अपने इस तरीक़ेकार का समरा भी देख रहा है। 2027 की मर्दमशुमारी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि इस अमल का पहला मरहला तकरीबन सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने कहा कि 32 करोड़ से ज़्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मर्दमशुमारी का यह काम लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दूर दराज और बर्फ से ढके हुए इलाकों में भी जारी है, जहाँ बहुत से तहरीक देने वाले तजुर्बात हासिल हुए हैं।
1: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी एक कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खुदशुमारी की सहूलत से ये अमल आसान हो गया है। लोग अपने और अपने कुनबों के बारे में जानकारी अपने मोबाइल फोन के जरिए दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह सहूलत हिंदी और दीगर 16 जबानों में मौजूद है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का इख्तिताम करते हुए लोगों को मुबारकबाद दी और आइंदा त्योहारों के दिनों में खुशी और खुशहाली की नेक ख्वाहिशात पेश की। जनाब मोदी ने 2 अक्टूबर को बाबाए कौम महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में लोगों की और ज्यादा शिरकत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क भर में सफाई सुथराई के लिए किए गए इकदाम की मिसालें दी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत किसी मुल्क के किसी इलाके पर कब्जा करना नहीं चाहता, अलबत्ता अगर उसे धमकी दी जाएगी तो वह अपनी सलामती और दिफाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस की तरफ से मुनक़िदा दिफा से मुतअल्लिक एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि भारत आलमी इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपनी दिफाई खुद मुख्तारी की कीमत पर नहीं। वजीर मौसूफ ने खास तौर पर कहा कि किसी ऐसे मुल्क के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती जो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा दे।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: कौमी इत्तेहाद को कौमी सलामती का एक अहम सतून करार देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क की सलामती अकेले मुसल्लह फौजों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हर शहरी की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों से जोर देकर कहा कि वो मजहब, जात पात, जबान, खित्ते और दीगर तरह की शनाख्त की बुनियाद पर की जाने वाली तफरीक से ऊपर उठें और कौमी मफाद को जाती और छोटे मफादात से ऊपर रखें। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने साबरमती में आज कई बड़े रेलवे तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, संग बुनियाद रखा और आगाज किया। इन प्रोजेक्टों की लागत 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर मौसूफ ने गुजरात के वजीर आला भूप

0: उपेंद्र पटेल की मौजूदगी में मुल्क की पहली एलएनजी से चलने वाली ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन साबरमती स्टेशन से रवाना की गई। इस ट्रेन में डीजल और रकीक बनाई गई कुदरती गैस के दोहरे ईंधन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके इंजन में तकरीबन 40% रवायती ईंधन डीजल की जगह 1400 हॉर्स पावर का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मौके पर एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले 12 साल में भारतीय रेलवेज की काबिले ज़िक्र तब्दीली को उजागर किया।
1: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7000 किलोमीटर की छलांग। 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी किसी डॉक्टर के इंसानी हमदर्दी के जज्बे की जगह नहीं ले सकती। उन्होंने मसनूई जहानत, एआई और डिजिटल सेहत के शोबे में तेजी से पेशरफ्त के दौर में डॉक्टरों के अंदर हमदर्दी के जज्बे की अहमियत को उजागर किया। जनाब राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जलसे तकसीम असनाद से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवान डॉक्टरों पर जोर दिया कि वो अपनी बात वाजह और जामे अंदाज में पेश करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अंथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि नमो भारत के जरिए इस नजरिए को किस तरह बरूए-कार लाया जा रहा है।
2: नमो भारत मुल्क के पहले इलाकाई तेज रफ्तार सफर का निजाम है। ये 82.15 किलोमीटर की एक नीम तेज रफ्तार राहदारी है, जिसे 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर के लिए तामीर किया गया है। इस पर 30,274 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका आगाज इस साल फरवरी में किया गया था और इसकी वजह से दिल्ली से मेरठ तक का सफर महज 1 घंटे से कम वक्त में पूरा हो जाता है। हर एक ट्रेन में खवातीन के लिए एक कोच रिजर्व है। इस तेज रफ्तार रेलगाड़ी को रवाना करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नमो भारत जदीद नौइयत की एक हैरतअंगेज तेज रफ्तार ट्रेन है।
3: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
2: नमो भारत के एक मुसाफिर ने इस ट्रेन के बारे में कहा कि इससे उन मुलाजिमीन और तलाबा को फायदा होगा जो सड़क के रास्ते गाड़ियों से सफर करते थे।
4: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है।
2: इस प्रोजेक्ट से शहरी नकल व हमल के वज़ीर-ए-आज़म के विजन को अमली जामा पहनाने की रफ्तार में तेजी आएगी और शहरियों की जिंदगी में मजीद सहूलत पैदा होगी। न्यूज डेस्क से अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन मुस्तकबिल में इलाज को ज्यादा जदीद, मुअस्सर और हर मरीज की जरूरत के मुताबिक बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड कांग्रेस ऑन नैनो मेडिसिन 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी का महकमा नैनो मेडिसिन के शोबे में 2010 तहकीकी और तरक्याती मनसूबों के लिए 174 करोड़ रुपये की माली मुआवनत फराहम कर रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि विश्व हिंदू परिषद के साबिक सदर अशोक सिंघल ने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व, मुल्क और समाजी खिदमात के लिए वक्फ कर दी। आजहानी अशोक सिंघल के यौम पैदाइश की सदसाला इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अशोक सिंघल की जिंदगी कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, मजहबी जज्बे, नज्म जब्त और अज़्म की अक्कास है। भारत ने अफगानिस्तान को जारी अपनी इंसानी इमदाद के तहत काबुल के सरकारी अस्पताल के लिए जान बचाने वाली अद्वियात और तिब्बी इस्तेमाल की अशिया की एक खेप रवाना की है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत की इंसानी इमदाद मरकजी हैसियत रखती है। जापान में जारी एशियन गेम्स 2026

0: जिसमें आज आईची नागोया में खवातीन की लंबी छलांग के मुकाबले में एनसी सोजन एडिपेल्ली ने चांदी का तमगा जीता। एनसी 6 मीटर 53 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ दूसरे मकाम पर रहीं। मर्दों की ऊंची छलांग में भारत के सर्वेश कुशारे ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर की अपनी बेहतरीन कोशिश के साथ चांदी का तमगा जीता। भारतीय एथलीट हरिता भद्रा ने खवातीन की 200 मीटर दौड़ के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलान मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। खवातीन के 3000 मीटर स्टेपल चेज मुकाबले में भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने कांसे का तमगा जीता। फिलहाल तमगों की फहरिस्त में भारत 12वें मकाम पर है और सोने के 4, चांदी के 16 और कांसे के 17 तमगों के साथ मजमुई तौर पर 37 तमगे जीत चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की है। भारत ने आज उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में 2026 के शतरंज ओलंपियाड में नोना गैप्रिंड शेल्वी ट्रॉफी अपने पास बरकरार रखी है। भारत ने ओपन जुमरे में बेहतरीन मजमुई कारकर्दगी वाले मुल्क के तौर पर अपनी मुहिम मुकम्मल की और खवातीन के मुकाबले में उसने चांदी का तमगा हासिल किया। भारत की मर्दों की टीम ने हंगरी के साथ खेलते हुए अपना मुकाबला बराबरी पर पूरा किया। मर्दों की क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की तरफ से दिए गए 296 रन के निशाने का पीछा करते हुए भारत ने अब से कुछ देर पहले तक 41 ओवर्स में 2 विकेट पर 282 रन बना लिए हैं। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट फदाई हमले और ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी को हरगिज बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की दिलेराना मिसालें हैं। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी ने 2027 की मर्दमशुमारी में की गई पेशरफ्त को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 करोड़ से ज्यादा कुनबों के आदादोशुमार रिकॉर्ड किए गए हैं। उन्होंने महात्मा गांधी के यौम पैदाइश के मौके से पहले सफाई सुथराई की मुहिम में और ज्यादा लोगों की शिरकत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत अपनी दिफाई खुदमुख्तारी से समझौता किए बगैर आलमी इस्तेहकाम का खाहां है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं को नमस्कार। सुरों की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां शब्दों को एहसास मिलता है, खामोशी को आवाज और दिल की धड़कनों को एक मधुर तराना। तो जी हां, आज का ये कहकशा कार्यक्रम समर्पित है उस महान स्वर साधिका को, जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों के सपनों को आवाज दी, जिनके सुरों ने कभी प्रेम की कोमलता दर्शाई तो कभी विरह की टीस, कभी भक्ति की निर्मलता तो कभी जिंदगी का गहरा दर्शन। जी हाँ, कल जन्मदिन है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का, तो आइए उनकी यादों और उनके सुरों की रोशनी में आज की कहकशां की महफिल का आगाज करते हैं।

कुछ आवाजें केवल कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे दिल में उतरती हैं। लता जी की आवाज भी ऐसी ही आवाज थी। उसमें उम्र की सीमाएं नहीं थी, समय की कोई दीवार नहीं थी। एक ही स्वर में मासूमियत भी थी, मोहब्बत भी, और दर्द की वो गहराई भी जिसे अल्फाज देना मुश्किल है। उनकी आवाज सुनते हुए अक्सर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अपना व्यक्ति दिल की बात कह रहा हो।

किसी कलाकार की महानता केवल उसकी लोकप्रियता से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि वह समय बीत जाने के बाद भी लोगों के दिलों में कितना जीवित रहता है। लता मंगेशकर जी के सुर आज भी उतने ही ताज़ा हैं। उनकी आवाज़ में प्रेम करने वालों को एक अपनापन मिलता है, बिछड़ने वालों को अपना दर्द और यादों में खोए लोगों को अपने बीते हुए पल। यही तो किसी महान कलाकार की पहचान है। वह चला जाता है लेकिन उसकी आवाज़ हमारे साथ रह जाती है, और जब भी शाम ढलती है तो अक्सर पुरानी यादें अपने दरवाज़ों को खोलने लगती हैं। किसी गीत की एक पंक्ति, किसी धुन का एक टुकड़ा और अचानक बीता हुआ कोई चेहरा सामने आ जाता है। लता जी की आवाज़ ऐसी ही यादों की आवाज़ है।

लता जी की गायकी में एक विशेष बात थी, वे सिर्फ गीत नहीं गाती थी बल्कि किरदार को जीती थी। चाहे वो प्रेम हो, विरह हो या इंतजार।

लता जी की गायकी हमेशा लोगों के दिलों में बसी रहती थी। उनकी आवाज में भाव इतने स्वाभाविक लगते थे कि श्रोता स्वयं उस कहानी का हिस्सा बन जाता था। शायद यही वजह है कि उनके गीत सुनते हुए हमें लगता है कि ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हमारे अपने दिल की कहानी है। और इसी एहसास के साथ अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली पेशकश।

आज अगर हम लता मंगेशकर जी को याद कर रहे हैं तो केवल इसलिए नहीं कि कल उनका जन्मदिन है या फिर वो बहुत ही महान गायिका के रूप में हैं, बल्कि उस संगीत परंपरा के रूप में जिसने भारतीय संगीत को दुनिया भर में पहचान दिलाई। उनकी आवाज़ ने हिंदी सिनेमा के अनगिनत दृश्यों को अमर बनाया, लेकिन इन सबके बीच सबसे ख़ास बात रही उनकी आवाज़ की सादगी। ना कोई दिखावा, ना कोई बनावट, बस सुर, भावना और रूहानी आवाज़।

दिले नादान, ऐ दिले नादान, आरजू क्या है, जुफ्तजू क्या है। बहुत ही उम्दा पंक्तियां जानिसार अख्तर की और उस पर लता मंगेशकर की आवाज। जी हाँ दोस्तों, कहकशां कार्यक्रम में अब हम अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं, लेकिन गजलों के इस सफर में लता जी की आवाज का सफर कभी खत्म नहीं होगा। जब तक प्रेम रहेगा उनके गीत सुने जाएंगे, जब तक यादें रहेंगी उनके सुर गूंजेंगे, और जब तक संगीत रहेगा लता जी की आवाज हमारे बीच गूंजती रहेगी। हम नमन करते हैं उस महान स्वर सम्राज्ञी को, और बस इतना कहेंगे कि सुरों की दुनिया में कुछ नाम इतिहास बन जाते हैं और कुछ आवाज़ें इतिहास से भी आगे जाकर दिलों में बस जाती हैं। ऐसी ही कुछ आवाज़ थी लता मंगेशकर की।

इस खूबसूरत एहसास के साथ आज के इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाजत। कल लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है, शत शत नमन। मैं हूँ इस सफर में आपके साथी एकता शुक्ला। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और सुर, किसी और एहसास के साथ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। नमस्कार, शब्बा खैर, और संगीत सुनते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 14.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारतीय संगीत सभा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। एस सुप्रदीप एक प्रतिभाशाली एवं सिद्धहस्त बांसुरी वादक हैं और संगीत की एक प्रतिष्ठित परंपरा से जुड़े परिवार से आते हैं। आप सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक एस ए शशिधर के सुपुत्र एवं शिष्य हैं। आपने अपने पिता के मार्गदर्शन में शास्त्रीय संगीत की बारीकियों और समृद्ध संगीत परंपरा को आत्मसात किया है। सुप्रदीप ने छोटी उम्र से ही संगीत के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का परिचय दिया है। आपने राज्य स्तरीय जूनियर और सीनियर संगीत परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की हैं और दोनों में रैंक प्राप्त की है। आपकी संगीत प्रतिभा और संभावनाओं को सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रतिष्ठित छात्रवृत्तियों के माध्यम से भी मान्यता मिली है। आप आकाशवाणी बेंगलुरु के ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी कला प्रस्तुति के माध्यम से आपने विविध श्रोताओं तक शास्त्रीय संगीत पहुंचाने तथा उसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। आपकी कला यात्रा भारत तक ही सीमित नहीं है, आपने अपने पिता के साथ विदेशों की संगीत यात्राओं में भाग लिया है जहां आपने बांसुरी की युगल प्रस्तुति दी। प्रसारण और डिजिटल माध्यमों में भी सुप्रदीप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। वी ब्रिंग यू फ्लूट रिसाइटल बाई यस सुप्रदीप। यस सुप्रदीप इज अ टैलेंटेड एंड एकम्प्लिश्ड फ्लूटिस्ट who belongs to a distinguished family of musicians. He is the son and disciple of renowned flautist S. A. Shashidhar and has imbibed the nuances of classical music through the rich tradition and guidance of his father. Supradeep has demonstrated his dedication and commitment to music from an early age. He successfully completed the state junior and senior music examinations, securing ranks in both. His musical talent and promise have been recognized through prestigious scholarships from the Center for Cultural Resources and Training and the Ministry of Human Resource Development. He is an A-grade artist of Akashwani Bengaluru. Through his musical performances, he has reached diverse audiences and contributed to the promotion and propagation of Indian classical music. His artistic journey extends beyond the Indian stage. Supradeep has accompanied his father on musical tours to the abroad where they presented flute duet concerts. Supradeep has also made his

0: अगली प्रस्तुति है मरिवेरे दिक्केवरु। यह पटनम सुब्रमण्य अय्यर की लोकप्रिय रचना है, जिसे राग लतांगी और खंड चापुताल में प्रस्तुत किया जा रहा है।
1: द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज मरिवेरे दिक्केवरु, अ पॉपुलर कॉम्पोजिशन ऑफ पटनम सुब्रमण्य अय्यर, सेट इन राग लतांगी एंड खंड चापुताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित केएम। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एस सुप्रदीप अब प्रस्तुत कर रहे हैं रा रा राजीव लोचना। यह मैसूर वासुदेवाचार्य की मधुर रचना है जो राग मोहनम और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इंद रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, ऑन मृदंगम केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित केएम। कंटिन्यूइंग हिज परफॉर्मेंस यस सुप्रदीप नाउ प्रेजेंट्स रा रा राजीव लोचना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, सेट इन राग मोहना एंड आदिताला।

0: अभी आपने तनी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोर सिंह पर लिखित केएम ने प्रस्तुत किया।
1: That was Tani Avartanam presented on Mridangam by K.V. Ravishankar Sharma and on Mor Singh by Likhit K.M.
0: S. Supradeep अपने बांसुरी वादन का समापन कन्नड़ भक्ति रचना तंबूरी मीठी दवा से कर रहे हैं। यह महान संत कवि पुरंदर दास की रचना है और राग सिंधु भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: Yes, Supradeep concludes his flute recital with a timeless Kannada devotional composition, Tamburi Metidava, composed by the great saint poet Purandaradasa, set in Raga Sindhu Bhairavi and Aditala.

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे थे एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर के वी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदी रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही वाज एकॉम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम बाय के वी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोरसिंग लिखित के एम। This program is a contribution of Akashvani Bengaluru, brought to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: Namaskar, Akashvani Samachar ke saath main Ashutosh Mishra. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
4: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC जोस सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला

एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिनडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।